FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन, ध्यान का महत्व। वाचन स्वर सुशील त्यागी का है।
3: अपना अधिकांश समय मात्र सोचते हुए व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्त गतिविधियां हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित होती हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप अपने सब काम बंद कर दीजिए और अपने दिमाग से परिचय प्राप्त कीजिए। दिमाग से संपर्क करने का मतलब है हम अपने सब काम बंद कर दें और शांतिपूर्वक उसके पास बैठ जाएं। सचेतन होकर मस्तिष्क से संपर्क को ध्यान लगाना या मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिविधि का विपरीत या विलोम ध्यान लगाना है। मस्तिष्क बड़ा चंचल है, हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे शरीर के अंगों के संकल्प के अलावा उहा पोहो उखाड़ पछाड़ करता रहता है। इसकी चंचलता की ओर इंगित करते हुए गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। उत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बाहरी गतिविधियों को रोकना वैराग्य का प्रथम सोपान है। आपने इस सोपान को पार किया है, अब आप इस स्थिति में हैं कि विश्वास कर सके कि हमारे पास मस्तिष्क या दिमाग नाम की वस्तु है। मस्तिष्क से परिचय होने की स्थिति में हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वरना हमारा दिमाग हमें चाहे जिधर ले जाता है और चाहे जिस कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराता रहता है। इसको आप सुनामी लहरों का भाई बंधु समझ लीजिए। हम जब ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारे मन में बसने वाले विचार प्रकट होने लगते हैं। हमको विदित होता है कि हमारे पास मानसिक विकारों का कितना बड़ा खजाना है, परंतु धीरे धीरे उनका आवेग कम होने लगता है। यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मस्तिष्क हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक निश्चित समय पर ध्यान द्वारा उत्पन्न कंपन अपने स्वभावानुसार पुनरावृत्ति करते हैं और अनुकूल वातावरण का सृजन कर देते हैं। समय और अभ्यास के साथ ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, हमारा मस्तिष्क मनमानी करना कम कर देता है। ध्यान की प्रक्रिया दिमाग के साथ हमारी मित्रता करा देती है, वो आवेग मुक्त हो जाता है, हम भी आवेग मुक्त हो जाते हैं, लगाम की जरूरत नहीं रह जाती, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, परंतु इसका निर्वाह सरल नहीं है। ये हमारे सामने हमारा विकृत रूप प्रस्तुत करती है, जिससे दो चार होने के लिए हमें साहस बटोरना पड़ता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से करते हुए केवल अपने दिमाग से दोस्ती करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करना है। याद रखिए, सच्ची दोस्ती की पहचान है दोनों के मध्य सुखद शांति।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ध्यान का महत्व। वाचन स्वर सुशील त्यागी का था। आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं मातृ वंदना से। आइए सुनते हैं मन्ना डे और साथियों के स्वर में ये देशगान।

देशगान के बाद श्रोताओं भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं सुमिरन विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का। ये गणेश वंदना को स्वर दिया है उदित नारायण ने।

जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनके भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आइए अब आनंद लेते हैं जैन भजन का।

जैन भजन के साथ ही श्रोताओं भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस गान।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिनांक 29 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: प्रातःकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र रागिनी। समय रहेगा सुबह 7:10। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:20 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर और शाम 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा शाम 6:50 पर और कुमावनी में आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत में सुबह 7:30 पर सुनिएगा उप्रेती सिस्टर्स, ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती के स्वर में कुमावनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रस्तुत करेंगे सुबह के 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीत सुनिएगा सुबह के 9:00। सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:45 पर आज आप सुनेंगे आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या, इस विषय पर डॉक्टर शालिनी कोठियाल से भेंटवार्ता। AIR न्यूज हेडलाइंस का समय रहेगा सुबह 10:00, दोपहर 12:10, अपराह्न 3:00 और शाम 4:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह के 10:02 पर, दोपहर 1:15 पर, रात 8:30 पर और रात 9:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आज आप सुनेंगे रजनी टोंक के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रस्तुत किया जाएगा सुबह के 11:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज दोपहर 12:12 पर आप सुनेंगे शैलेंद्र सिंह रावत के स्वर में भजन। हमारी बहनों का कार्यक्रम घर गृहस्थी सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। आज के अंक में होगी आधुनिक कृषि और AI, इस विषय पर डॉक्टर किरण पंत से भेंटवार्ता। दोपहर 1:30 पर प्रसारित करेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम गाने नए तराने सुनिएगा अपराह्न 3:02 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाम 4:02 पर आज आप आनंद ले सकेंगे रामजी लाल शर्मा द्वारा पखावज वादन का, ये प्रस्तुत करेंगे रुद्रताल और शूलताल। शाम 4:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे पार्श्व गायक नितिन मुकेश। शाम 5:10 पर सुनिएगा हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम के 5:45 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत होगी श्री जयंती वल्लभ मलासी द्वारा काव्य पाठ। श्रोताओं, ये जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्री मोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बंधनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
3: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी।

0: अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Naveen Chandram Gulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi will inaugurate 2 major solar power parks in Madhya Pradesh's Neemuch and Shajapur today. Mr. Joshi, along with Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav, will launch a 500-megawatt solar park in Neemuch and a 450-megawatt solar park in Shajapur. State New and Renewable Energy Minister Rakesh Shukla will also be present at the event. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampoorn Deghbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. It added that the program will provide integrated home and community-based healthcare for children from birth to 3 years by merging the existing home-based newborn care and home-based care for young child programs. In Gujarat, the 4th Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh

0: ये गीत आपने सुना मुगले आजम फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। गीत को बोल दिए थे शकील बदायूनी ने और संगीत था नौशाद का।
1: Classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: Prove your value with UPES up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. Applications close 29 April. Apply now at upes.ac.in. Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application closed 29 April. Apply now at upes.ac.in.
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्ररागिणी आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन शुरू किया गया। योजना से स्वरोजगार और आय बढ़ने की उम्मीद। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 आवासों का जल्द लोकार्पण कर लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सहकारिता सप्ताह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों के प्रभावी और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि, देवभूमि की प्रगति विषय पर आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पैक्स, जिला सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान सहकारी चौपाल, जन जागरूकता शिविर, कृषि, उद्यान, दुग्ध एवं मत्स्य से संबंधित कार्यशालाएं तथा महिला और युवा सहकारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण, ई पैक्स, सामाजिक सहभागिता और हरित एवं सतत कृषि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों और विकास खंडों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
4: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवा शक्ति ही विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिभा देश के विकास की सबसे बड़ी शक्ति है तथा राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रुड़की में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी दर्ज की गई है।
6: हमारा विजन बिल्कुल साफ है कि हम एक ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं जहां हमारे युवाओं को अवसर मिले, उनको पलायन न करना पड़े, बल्कि अपने घरों में रह के ही वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सके, यानी कि अपने घर पर ही उनको रोजगार मिले, काम का अवसर मिले। इसके लिए हमने राज्य में स्टार्टअप कल्चर, उसको हम रफ्तार दे रहे हैं, नई रफ्तार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो आप जैसे युवाओं के हुनर को नई दिशा देने का प्रयास इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। और ये सभी योजनाएं नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं और हमारी इन्हीं नीतियों का और प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
4: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद भी किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर प्रभावी निगरानी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित लोहिया डेह वाटर बाईपास का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए लोहिया डेह वाटर बाईपास को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा कॉरिडोर और शारदा रिवर फ्रंट परियोजना के माध्यम से भी क्षेत्र के विकास को गति दी जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय व्यवसायों और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोहिया डे वाटर बाईपास के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों में गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
4: केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसी क्रम में चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन की शुरुआत की गई है। योजना के तहत बाराकोट और पाटी विकासखंड के 100 किसानों को रेशम कीट और शहतूत के पौधे उपलब्ध कराए गए। लगभग 10 माह के में किसानों ने 52 किलोग्राम रेशम कोकुन का उत्पादन किया है, जिससे भविष्य में आय बढ़ने की उम्मीद है। रेशम विभाग के प्रभारी अधिकारी विनोद महारा ने बताया कि सिल्क समग्र 2 योजना के तहत पाटी विकासखंड के 70 और बाराकोट के 30 किसानों का चयन किया गया है। किसानों को रेशम कीट पालन के लिए किट गृह निर्माण के लिए 1,66,500 रुपये तक की अनुदान सहायता के साथ आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।
8: हम लोग कीट पालन गृह उपलब्ध करवाते हैं, जिसके लिए अनुदान स्वरूप रेशम विभाग द्वारा 1,66,500 की धनराशि किसान को प्रदान की जाती है और उसके साथ साथ ही कीट पालन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। बाराकोट ब्लॉक में 30 और पाटी ब्लॉक में 70 किसानों सहित 100 किसान वर्तमान में कीट पालन रेशम कीट पालन का कार्य कर रहे हैं, और जिससे वर्ष में 3 बार अक्टूबर में और अब मई जून में वर्ष में 3 बार शहतूत उत्पादन कर रेशम उत्पादन करके अपनी आजीविका में बढ़ावा कर सकते हैं।
4: योजना से जुड़े किसान भी इसका लाभ मिलने की बात कह रहे हैं।
9: हम भीम कुमार है, मैं ग्राम त्यारसो से बिलोंग करता हूँ। हमने पिछले साल शिल्प समग्र 2 के तहत सहतूत वृक्षारोपण किया था। उसके 9 माह उपरांत हमने प्रायोगिक तौर पे रेशम का उत्पादन किया, जो 12 किलो है कोकून उत्पादन। हमने जो कोकून उत्पादन किया था वो विभाग द्वारा ही 600 रुपये के हिसाब से हमसे प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया। हमने जो कोकून का उत्पादन किया है इस बार, उसको देख के काफी आसपास के किसान उत्साहित हैं।
4: पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम कीट पालन स्वरोजगार का एक नया विकल्प बनकर उभर रहा है। यदि यह पहल इसी तरह आगे बढ़ती रही तो इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पलायन रोकने में भी मदद मिल सकती है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 156 करोड़ रुपये की लागत से बने 1872 आवासों का जल्द लोकार्पण कर उन्हें लाभार्थियों को आवंटित

0: सिडकुल क्षेत्रीय कार्यालय हेमपुर नेमा फार्म की भूमि काशीपुर रामनगर फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा काशीपुर बाईपास रिंग रोड परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपने काशीपुर भ्रमण के दौरान सिडकुल के विभिन्न विकास परियोजनाओं और सड़क अवसंरचना कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सिडकुल क्षेत्र कार्यालय, हेमपुर नेपा फार्म की भूमि, काशीपुर रामनगर फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा काशीपुर बाईपास रिंग रोड परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 133 एकड़ में विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 56 औद्योगिक भूखंड है, जिनमें से 22 आवंटित किए जा चुके हैं। 177 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए शेष 45 करोड़ रुपए की मांग शासन को भेजी गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से सिमरन बिंजोला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन शुरू किया गया। योजना से स्वरोजगार और आय बढ़ने की उम्मीद। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 का जल्द लोकार्पण कर लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं पर्वतीय लोकगीतों का कार्यक्रम शैल संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए कुमाऊनी लोकगीत। गायक कलाकार हैं उप्रेती सिस्टर्स, ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती।

0: प्यास लगी हो तो बस पानी चाहिए, कैसा भी हो, पैक्ड, अनसेफ, कुछ नहीं देखते, बस पानी चाहिए। बट
1: इट्स डेंजरस, मे बी इट कॉजेज हेल्थ इश्यूज, सो अब जब भी पानी पियो तो पहले चेक करें कि उस पे ISI मार्क है या नहीं। ऑलवेज ड्रिंक ISI मार्क्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बी अवेयर एंड बी सेफ।
0: रविंद्र ये बताओ, सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
2: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में क्या क्या है उसमें?
2: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
3: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
4: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google, and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
5: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से इस समय आप सुन रहे हैं पर्वतीय लोकगीतों का कार्यक्रम शैल संगीत। और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती के स्वर में कुमावनी लोकगीत।

0: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से इस समय आप सुन रहे हैं पर्वतीय लोकगीतों का कार्यक्रम शैल संगीत और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कुमावनी लोकगीत। गायक कलाकार थी उप्रेती सिस्टर्स ज्योति उप्रेती और निर्जा उप्रेती। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
5: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
6: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
7: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
8: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317177 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला।

नमस्कार देहरादून श्रोताओं, सुबह की पहली किरण हो या शाम की सुनहरी धूप, जीवन का हर पल अपने साथ एक नई कहानी, एक नया अनुभव और एक नई सीख लेकर आता है। कभी इतिहास हमें अपने गौरवशाली अतीत से रूबरू कराता है, तो कभी वर्तमान की घटनाएं हमें भविष्य के प्रति जागरूक बनाती हैं। कभी एक प्यारा सा गीत हमारी भूली बिसरी यादों को ताज़ा कर देता है, तो कभी एक छोटी सी कहानी भी हमारे जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा बन जाती है। इन्हीं रंगों, भावनाओं, जानकारियों और अनुभवों को एक खूबसूरत से सूत्र में पिरोकर आज मैं मिताली पुनेठा लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर तय करेंगे एक ऐसे सफर को जिसमें होंगे इतिहास के सुनहरे पन्ने, देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, कुछ अनसुने और रोचक तथ्य, आपके मन को छू लेने वाले गीत, जीवन को नई दिशा देने वाले कुछ प्रेरक विचार और एक छोटी सी एक कहानी जो शायद आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बना दे। तो अगर आप अपने घर की बालकनी में सुबह की चाय का आनंद ले रहे हैं या ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या किसी सफर में हैं या अपने काम में व्यस्त हैं, तो थोड़े से पल निकाल लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा मानना है कि जानकारी तभी सार्थक है जब उसमें संवेदनाओं की मिठास भी हो, और मनोरंजन तभी यादगार भी बनेगा जब उसमें जीवन की सच्चाई का एहसास भी हो। तो चलिए थोड़ा सा मुस्कुराइए, खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए और हम शुरू कर रहे हैं आज का ये खूबसूरत ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सफर। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। जिंदगी ना हमें कई बार मंजिल से ज़्यादा सफ़र में सिखाती है। हम जब भी किसी सफ़र में चलते हैं तो हमें तब पता चलता है कि हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी तब तक पीछे नहीं होता जब तक कि वो रुकता नहीं है। ये हर दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है, इसलिए अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो इतिहास है आज का 29 जून का, वो क्या अपने अंदर समेटे हुए है। तो श्रोताओं, अगर हम बात करें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में

खास आज के दिन रहा है तो 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये दिन महान भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। भारत की आर्थिक योजना और सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके द्वारा विकसित महालनोबिस दूरी इसका उपयोग आज भी विश्वभर में किया जाता है। अगर अगली घटना को देखें तो 1861 में आज के ही दिन प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री का जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदी साहित्य को चंद्रकांता जैसे अमर उपन्यास दिए। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज की ये जो तारीख है 29 जून, इस दिन 1958 को ब्राज़ील ने स्वीडन को हराकर पहली बार फीफा विश्व कप जीता था। इसी विश्व कप में दुनिया को फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का जादू देखने को मिला। 29 जून 2007 को दुनिया के सबसे चर्चित तकनीकी उत्पादों में से एक पहला एप्पल आईफोन अमेरिका में आम जनता के लिए लॉन्च किया गया था, जिसने मोबाइल तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। और 29 जून 1956 को हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मुनरो ने प्रसिद्ध नाटककार आर्थर मिलर से विवाह किया था, जिसे उस समय की सबसे चर्चित शादियों में गिना गया। तो श्रोताओं, 29 जून की ये तारीख हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास केवल तिथियों का ही एक संग्रह नहीं है, बल्कि उपलब्धियों, संघर्षों और परिवर्तन की कहानियों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो अब इतिहास के इन सुनहरे पन्नों से आगे निकलकर बढ़ते हैं एक अगले खूबसूरत से गाने की तरफ। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
2: एक बार फिर से श्रोताओं, आपका स्वागत है सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के आज के अंक में। अब बात करते हैं देश दुनिया की उन प्रमुख खबरों की जो आज विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छाई रही हैं। तो श्रोताओं, ये जो पहली खबर है ये है मन की बात कार्यक्रम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। अगली खबर ये है कि पहाड़ों पर आफत की बारिश है, मैदान गर्मी से बेहाल, उत्तर भारत में जल्द ही पहुंचेगा मानसून। अगली खबर हम ये ले रहे हैं, हिंद महासागरों को अवसरों का महासागर बनाना

हमारा लक्ष्य है, ये कहना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने सेशल्स दौरे में ये संदेश दिया। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं श्रोताओं। ये खबर है, श्रीलंका व इंडोनेशिया की तर्ज पर होगा दालचीनी का उत्पादन, स्वास्थ्य लाभ और प्राकृतिक स्वाद के लिए बढ़ा दालचीनी का वैश्विक बाजार। भारत भी श्रीलंका व इंडोनेशिया से आयात करता है दालचीनी। श्रोताओं, ये अगली खबर है, बिजली घर ऋषिकेश बैराज स्थित बिजली घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और इसमें कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने ये आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा था कारण, अस्थाई ट्रांसफार्मर लगाकर बनाई गई है व्यवस्था। श्रोताओं, अगली खबर है कि केंद्र सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से आरोग्य सेतु 2.0 की शुरुआत कर सकती है, जिससे डिजिटल हेल्थ सेवाओं को और मजबूत बनाने की तैयारी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिससे कई राज्यों में राहत की बारिश होने की संभावना है। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि उच्च न्यायालयों को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 24 घंटे के भीतर आदेश जारी करने का प्रयास करना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय खबर पर जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और आगे की वार्ता को लेकर सहमति बनने की खबर सुर्खियों में है। दोनों देशों के बीच आगामी दौरे की बातचीत कतर में होने की संभावना जताई जा रही है। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां और अब वक्त है एक और खूबसूरत से गीत का, क्योंकि जानकारी के साथ साथ संगीत भी जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद आइए आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक गांव में ना एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। उसका बेटा हमेशा शिकायत करता था कि मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही। एक दिन कुम्हार उसे अपने साथ मिट्टी लेने ले गया। रास्ते में उसने बेटे से कहा कि देखो, ये मिट्टी अभी सिर्फ मिट्टी है, लेकिन जब ये तपेगी, चोट खाएगी, आकार बदलेगी, तभी एक सुंदर सा घड़ा बनेगी। तब उसके बेटे ने पूछा, क्या हर चीज़ अच्छा बनने के लिए उसे तकलीफ को झेलना ज़रूरी होता है क्या? तो कुम्हार ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, क्योंकि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जैसे एक मिट्टी तप के एक बर्तन का आकार लेती है या किसी वस्तु में परिवर्तित होती है, उसी तरह अगर हम तपेंगे तो हम एक बेहतर बदलाव की ओर बढ़ेंगे। तो श्रोताओं, जिंदगी भी ना कुछ ऐसी ही होती है। ये जो मुश्किलें होती हैं, ये हमें हमेशा तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमें बेहतर बनाने के लिए भी आती हैं। तो अगर आप भी किसी संघर्ष भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये भी आपके किसी बेहतर कल की तैयारी हो सकती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं नमस्कार। देहरादून का आज का ये अंक संपन्न करने का समय हो चुका है। आज के इस खूबसूरत सफर में हमने इतिहास के पन्ने पलटे, खबरों की दुनिया में झांका, कुछ खूबसूरत से गीत सुने और कहानी से एक सीख भी ली और कुछ सकारात्मक विचारों को अपने साथ जोड़ा। याद रखिए, हर नया दिन आपके जीवन की किताब का एक नया पन्ना है। इसे इस तरह लिखिए कि पढ़ने में आपको खुद खुशी महसूस हो। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन खुशियों, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, मैं मिताली पुनेठा आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार देहरादून। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और जिंदगी को महसूस करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह नए विचारों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते देहरादून।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीतों का ये सफ़र शुरू हो चुका है और ये गीत लिया गया है फिल्म पूरब और पश्चिम से। आवाज़ है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर और मनहर की। गीत को बोल दिए हैं संतोष आनंद ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ पल ठहर जाएं, कुछ एहसास वहीं रुक जाएं जहां उन्हें हमने सबसे खूबसूरत पाया था। ऐसे ही जज्बातों को सुरों में पिरोता हुआ एक सदाबहार गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म शागिर्द से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, पुराने दौर के गीतों में ना एक अलग ही जादू हुआ करता था। सादगी, शरारत, प्यार और संगीत का ऐसा संगम जो आज भी दिलों में कहीं गहरे उतर जाता है। अगर संगीत में मुस्कुराहट का कोई चेहरा होता तो शायद वो कुछ ऐसा ही होता। जितना प्यारा, जितना शरारत भरा, इसे लता मंगेशकर और कमल बरोट ने गाया है। असद भोपाली का लिखा ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है पारसपणी। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हिमालय की गोद में से ये गीत, जिसे लिखा है इंदीवर ने और सुरों से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि उसे हर बार शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक नज़र, कभी एक मुस्कान और कभी एक इशारा ही दिल की पूरी कहानी कह देता है। और जब मोहब्बत इशारों में बात करे तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। पेश है एक बेहद खूबसूरत और यादगार नगमा फिल्म कश्मीर की कली से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। बोल हैं SH बिहारी के और संगीत OP नैयर का।

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर kg की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ठहर कर हमें उन गीतों को भी सुनना चाहिए जिनमें प्यार की मासूमियत और रिश्तों की गर्माहट आज भी महसूस की जा सकती है। और फिर मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही तो है कि वो हर दौर में एक जैसी महसूस होती है, बस चेहरे बदलते हैं, एहसास नहीं। इन्हीं एहसासों को सुरों में पिरोता है ये बहुत ही प्यारा सा नगमा, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर का एक अत्यंत लोकप्रिय और मधुर गीत जो प्रेम की सहज, सरल और आत्मीय अभिव्यक्ति को स्वर देता है। आइए सुनते हैं फिल्म राम और श्याम से ये सदाबहार नगमा, और इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का है।

श्रोताओं, कहते हैं कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ आते नहीं, बल्कि अपने साथ साथ खुशियों, उम्मीदों और अनगिनत खूबसूरत एहसासों की बहार लेकर आते हैं। और जब प्यार, अपनापन और इंतज़ार की यही भावनाएं सुरों में ढलती हैं, तो ऐसे सदाबहार नगमे जन्म लेते हैं जो पीढ़ियों तक दिलों में बसे रहते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जो ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को समेटे हुए है। ये गीत है फिल्म जीने की राह से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। बोल है आनंद बख्शी की, और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि वो हमारी यादों में, हमारे एहसासों में और हमारी ज़िंदगी में एक अलग हिस्सा बना लेते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज सदाबहार फिल्मी गीतों के सफ़र को हम यहीं पर संपन्न कर रहे हैं।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर प्रवीण मित्तल, जो कि वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हड्डी रोग और उनके समाधान पर ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण मित्तल, जो कि एक वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे हम भेंटवार्ता करेंगे हड्डी रोग और उनके समाधान के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि शरीर के प्रमुख जो हड्डियों के जोड़ हैं और उनमें जो विकार, प्रमुख विकार हैं, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, अगर हम एज के हिसाब से लें तो अगर हम पहले यंग एज से चालू करते हैं तो आजकल जो ज़्यादा, जैसे कि ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में इंडिया का भी कल्चर बढ़ रहा है, और कुछ स्पोर्ट्स इंजरी जो कि नी जॉइंट में बहुत कॉमन होती हैं, घुटने में हमारे स्पोर्ट्स इंजरी के काफ़ी केसेस रहते हैं, और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे देश में घुटनों की आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें कूलों की आर्थराइटिस के बारे में, तो कूलों से हमारे देश में घुटने की आर्थराइटिस कॉमन है, और एज के साथ करीबन 60-70 ईयर्स की एज में सभी के जोड़ों में चेंजेस आ जाते हैं, और किसी के कम, किसी के ज़्यादा, और जिसके लिए हमें तरह तरीके के इलाज की ज़रूरत पड़ती है।
1: आजकल एक कॉन्सेप्ट देखने में आ रहा है कि यंग एज में भी जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम आ रही है, वो किस कारण से आ रही है? क्या वो खान पान है या वो रहन सहन के तौर तरीकों में बदलाव की वजह से है?
2: हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें जो हम यंग पेशेंट्स में देखते हैं, तो आजकल विटामिन डी लेवल्स भी, जैसे जो हम चेक करवाते हैं, तो करीबन 90% केसेस में विटामिन डी लेवल कम होता है, और इसमें जब मरीज हमारे साथ आते हैं तो उनमें वो बताते हैं कि हमारे हर जोड़ में, जैसे या सब मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो मेरी पहली डायग्नोसिस रहती है कि विटामिन डी लेवल कम है, तो काफ़ी सारे 90% मरीजों में वो करीबन कम पाया जाता है। और उसमें कारण ये भी हो सकता है कि जो धूप है वो हम पूरी तरीके से नहीं लेते, या बहुत कम हो गया है, जैसे ज़्यादातर यूज़ एयर कंडीशन का, या एक हमारा कंट्री भी इस तरीके से ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें कि हमें धूप का उतना नहीं मिल पाती है धूप, और उसके कारण विटामिन D3 लेवल्स कम हो जाते हैं और जोड़ों में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं।
1: कई बार हमारे श्रोताओं में देखा गया कि घर पे सामान्य तरीके की चोट लग जाती हैं या कुछ काम करते वक्त चोट लग जाती हैं जिसमें हड्डियों में दर्द महसूस होता है, तो स्प्रेन और फ्रैक्चर में वो कैसे डिफरेंस कर पाएं, या क्या इस केस में सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस बारे में कुछ दिशा दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें कि जैसे अगर कभी भी घर में चोट लग जाए या कहीं अपने वर्क प्लेस पे चोट लग जाए, तो एक तो ये है कि उसमें कोई भी गर्म पानी की सिकाई या वो ना करें, अगर कोई सिकाई करनी है तो ठंडी सिकाई करनी है, जिसमें कि हम बर्फ़ को किसी पॉलीथिन में लेके या कोई आइस पैक से उसे सिकाई कर सकते हैं
1: जी।
2: तथा दूसरी चीज़ है कि लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर उंगलियां चल रही हैं या हमारी हाथ की उंगली चल रही है, पैर की उंगली चल रही है, तो इसका मतलब फ्रैक्चर नहीं है
1: जी।
2: बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रैक्चर का पता जो है एक्सरे के बाद ही किया जा सकता है, तो किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ या जहाँ पे भी एक्सरे की सुविधा हो वहाँ जाके जरूर एक्सरे करवाना चाहिए। और जैसे कोहनी के जोड़ होते हैं या पता चला घुटने के जोड़ में चोट लग गई, तो उसकी मालिश बिल्कुल ना करें
1: जी।
2: मालिश से जोड़ों को काफ़ी नुकसान होता है।
1: अच्छा,
2: तो 2-3 चीज़ें, जैसे कि बर्फ़ की सिकाई हो गया, मालिश ना करें, तथा उसका एक्सरे करवाएं, कोई भी लिम अगर सूजन है तो उसे उठा के तकिए पे रखें, जिससे कि, तो ये 4 ट्रीटमेंट होते हैं जिसे राइस भी कहते हैं, रेस्ट, आइस एंड फोमेंटेशन एंड एलिवेशन।
1: अच्छा, तो कई हमारे युवा साथी हैं जिन्हें हड्डियों के रोग आजकल यंग एज में हो जा रहे हैं, तो कौन कौन से रोग हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हो जा रहे हैं, ना कि उम्र के चलते हो जा रहे हैं, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। और एक आजकल कंसेप्शन आया है कि राइट पोस्चर, इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: तो सबसे पहले तो हम ये लेके चलें किस तरीके के रोग जो हैं यंग पीपल्स में हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्पोर्ट्स इंजरीज रहती हैं, पता चला या कभी हम जिम में जाते हैं तो हमने प्रॉपर वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें कुछ एलिमेंट्री एक्सरसाइज अपने जिम की कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मांसपेशियों में जो है रक्त का प्रवाह चालू हो जाए। अगर वो चालू हो जाएगा तो मसल स्ट्रेचिंग के, जोड़ों को नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ वार्म अप है। दूसरा, अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करें तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करें, एक ट्रेनर को या मदद लेके करें।

0: तथा अगर कोई हम अपनी किसी भी घुटनों के दर्द के लिए या किसी और दर्द के लिए हम कोई भी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में होनी।
1: आजकल फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा रोल निकल करके आ रहा है हड्डी या उनसे जुड़े रोगों के संबंध में। तो क्या किसी मरीज को सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर पहले वो हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिले, उनसे सलाह करने के बाद ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, इस बारे में जरूर हमारे श्रोताओं के लिए प्रकाश डालिए।
0: देखिए, नॉर्मली कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट अगर रहेंगे तो उनका यही वो होता है कि वो डेफिनेटली फिजियो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लें और उसके बाद जो फिजियोथेरेपी बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट अपनी एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी की डिफरेंट मॉडलिटीज लगाते हैं। तो दोनों का ही रोल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि ए बी सी डी अक्षर है तो बी पहले नहीं आ सकता, तो इसी तरीके से पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा और डेफिनेटली अगर उसमें रिक्वायरमेंट है तो फिजियोथेरेपी का रोल उसमें बनता है और फिजियोथेरेपी की हमें काफी मदद मिलती है और उससे काफी मरीज सही होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल जो ज़रूरी बनता है इस समय पूछना कि उम्र से जनित जो रोग हैं हड्डियों के उनके बारे में और जो लाइफस्टाइल से जनित रोग हैं हड्डियों के उनके बारे में क्या डिफरेंशिएशन है, वो हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए।
0: देखिए, जैसे लाइफस्टाइल है, अभी आपने पोस्चर की भी बात करी थी जो शायद उधर रह गया, तो डेफिनेटली जितना कि हम आप जो नेक का काफी सारे पेन्स होते हैं वो हमारे मोबाइल यूज से रिलेटेड रहते हैं। हम काफ़ी समय लैपटॉप पे रहते हैं जिसमें कि हम अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं अब जिनके नेक में कंटिन्यूसली पेन रहता है या शोल्डर्स में कंटिन्यू पेन रहता है। तो जब भी मोबाइल यूज़ करें डेफिनेटली एक तो लेट के मोबाइल यूज़ ना करें, दूसरा जब लैपटॉप यूज़ करें तो प्रॉपरली चेयर पे बैठ के करें जिससे कि कमर के दर्द से बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि और भी जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं कि आप काफ़ी कुछ जैसे बच्चों का भी देखा गया है तो डेफिनेटली अब उनका फिजिकली स्पोर्ट्स ना होके देखते हैं कि वीडियो गेम या मोबाइल पे ही वो लगे हुए हैं, तो जितनी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे एक बचपन के लेवल से ही तो हमारा पोस्चर भी सही रहेगा तथा मसल्स और जॉइंट्स भी अच्छे रहेंगे।
1: जो लाइफस्टाइल हड्डियों के रोग होते हैं उनकी गंभीरता क्या हो सकती है और किस किस तरह के रोग हो सकते हैं, वो हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
0: देखिए, जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, एक तो गर्दन का दर्द हो सकता है, दूसरा ये है कि अगर हम पता चला कि अपनी प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं रेगुलरली तो कमर के दर्द आजकल बहुत कॉमन है। हम देखते हैं 10 पेशेंट्स में से हमारी ओपीडी में 3 पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके ही कमर में दर्द रहता है और कमर के दर्द भी बैड पोस्चर्स के कारण ही होते हैं। पता चला अगर हम कोई चीज़ नीचे से उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें अपने घुटने मोड़ने चाहिए, ना कि कमर पूरी मोड़ के उसे झुक जाना चाहिए। तो ये एक दो पोस्चर्स रहते हैं जिनकी मदद से हम जो है अपना कमर के दर्द से बच सकते हैं। तथा दूसरा आपने पूछा कि एज रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, एज रिलेटेड बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें कि हमारे जॉइंट में स्पेस कम हो जाता है और ये धीरे धीरे जो है करीबन 50-55 की एज से चालू हो जाती है और करीबन 65-70 ईयर्स की एज में जो है काफ़ी हद तक हमारे जोड़ों में स्पेस कम होने के कारण दर्द बना रहने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने आर्थराइटिस वर्ड का यूज़ किया, तो आर्थराइटिस किस तरह की बीमारी है, किस किस कारणों से हो सकती है और क्या इलाज है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: देखिए, मेनली अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीके की आर्थराइटिस है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि सबसे कॉमन है जो कि एज के साथ होती है, दूसरी आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड होती है गठिया बाई की बीमारी जो रहती है जिसमें कि जगह जगह जो है जोड़ों में दर्द होने लगता है, हाथ के जोड़ पैरों के जोड़ों में, और ये मेनली यंग एज में करीबन 30-35 साल की उम्र में चालू हो जाती है और इससे महिलाएं ज़्यादा ग्रसित होती हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि कई हाथों पैरों के जोड़ में दर्द हो रहा है, छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है और यंग एज में हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जिसका पता जो है ब्लड टेस्ट करवा के किया जा सकता है और उसमें दवाएं बहुत कारगर रहती हैं, दवाओं से उसका इलाज संभव है।
1: आपने कहा महिलाएं ज्यादा ग्रसित होती हैं, तो हमारे बहुत सारे महिलाएं आपको सुन रही होगी, इसका कारण क्या होता है ये जरूर बताइए।
0: देखिए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक इंक्लाइनेशन है कि फीमेल्स में वो ज़्यादा डेवलप होता है, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जो है फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं आफ्टर अबाउट 50-55 ईयर्स ऑफ एज, जब मीनोपॉज के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं और उस हार्मोनल चेंजेस में हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहने लगती है तथा बोन में मिनरल्स कम हो जाते हैं और इसीलिए महिलाओं में जो है ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स के चांस ज़्यादा होते हैं अगर हम पुरुषों के मायने में देखें।
1: अच्छा, बहुत सारे युवा श्रोता हमारे आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे युवा श्रोताओं में एक क्रेज़ है जिम जा करके ज़्यादा भार उठाने का, और ज़्यादा भार उठाने का मतलब वो समझते हैं।

0: कि उनकी मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होंगी। ऐसे केसेस में बहुत सारे युवा श्रोता ऐसे होते हैं जो फिर सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह के हड्डी रोग हो जाते हैं, अचानक से लचक लग जाती है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो। आप इसे डॉक्टरी भाषा में ज़रूर समझाएं हमारे श्रोताओं, किस तरह की गंभीर परिणाम हो सकते हैं बिना किसी गाइडेंस के ज़्यादा भार उठाने के, और किस हद तक वो जा सकते हैं।
1: देखिए, जो भी लोग जिम में जाते हैं या डेफिनेटली एक्सरसाइज करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि सर्वप्रथम जब भी हम जाएं तो सबसे पहले हमें वार्म अप करना है। जैसे मैंने बताया कि उससे अगर हम वार्म अप करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो हमारे मसल्स में और जॉइंट्स में ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा और उसमें खराबी होने के चांस या खिंचाव आने के चांस कम हो जाएंगे। दूसरा, जो ट्रेनर हैं उनके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि वो लोग इस बात में ट्रेंड हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज करी जाए और कितनी एक्सरसाइज करी जाए। और बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वजन बहुत जल्दी उठा लेंगे तो हमारे मसल्स की ग्रोथ बेटर हो जाएगी। इनका अपना एक वर्कआउट का एक पैटर्न रहता है, जिसमें कि हम अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों की एक्सरसाइज करके और उसे डेवलप कर सकते हैं। और हर चीज़ को एक टाइम लगता है, उसमें बहुत तेज़ी करने से नहीं होगा। और जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी प्रोटीन शेक्स या जो है स्टेरॉइड के कभी कभी सेवन भी करते हैं उसके लिए, तो उससे बिल्कुल बच के रहें। और नेचुरली हमें फिटनेस चाहिए, ना कि मसल मास चाहिए।
0: अच्छा, बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि बच्चों की आगे चल करके हड्डियों में मजबूती उन्हें मिले, उसके लिए बचपन से ही क्या नेचुरल तौर तरीके होने चाहिए?
1: देखिए, डेफिनेटली जो भी अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं वो नॉन वेज ले सकते हैं, इन सब में और जो भी पीले फल होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनमें कैल्शियम एक प्रचुर मात्रा में होता है। तो हमें एक अच्छे, सबसे प्रथम तो बच्चे को इस तरीके की आदत डालनी है कि वो कैल्शियम रिच सोर्सेज ले और पीले फल हरी सब्जियां खाए, तथा दूसरा उन्हें जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनक्रेज करना है। क्योंकि जैसे जैसे आजकल मोबाइल और वीडियो गेम्स का कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे प्लेग्राउंड्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो हमें बच्चों को बढ़ावा देना है कि वो शाम को जाके बाहर जाएं और खेलें।
0: आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है नी रिप्लेसमेंट का, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, पुराने समय में माना जाता था बहुत महंगी तकनीक है। इसके बारे में प्रकाश डालिए, किस तरह के मरीज नी रिप्लेसमेंट के लिए आ सकते हैं, क्या सरकार भी कोई सुविधाएं दे रही है, नी रिप्लेसमेंट आज के दौर में किस हद तक कारगर है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: बिल्कुल, जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो बहुत ही कारगर सर्जरी है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है एक मिसनोमर है, मतलब कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो शब्द है वो सही नहीं है। बल्कि अगर हम ये कह दें कि हम जॉइंट को सरफेस करते हैं या जॉइंट को जो है जो हिस्सा खराब हो गया उसे रिप्लेस करते हैं, तो वो एक ज़्यादा अच्छा शब्द होगा। जैसे कि जब हमारे दांत में ठंडा गर्म लगने लगता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम टूथ को वहीं रखेंगे लेकिन उसके ऊपर एक कवर लगा देंगे। इसी तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर भी हम एक कवर लगा देते हैं, जिससे कि जॉइंट्स दोबारा से फिर जो है उनका सरफेस ठीक हो जाता है और उसमें दर्द खत्म हो जाता है। दूसरा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत जो है, डेफिनेटली ये देखा गया है कि वो तो एक्सरे के बाद ही कितने सारे चेंजेस आए हैं आपके जॉइंट में तभी पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं, जिसमें कि दोनों घुटने के अगर हमारा पेन चल रहा है तो उसमें मरीज को कहते हैं कि भाई खड़े होके हमें एक एक्सरे चाहिए दोनों घुटने का, जिससे हम पता चला सकें कि जॉइंट में कितने चेंजेस आ गए हैं और क्या मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, या सर्वप्रथम पहले वो एक्सरसाइज या कुछ दवाओं से उन्हें कुछ फ़ायदा दिया जा सकता है। तथा सरकार ने भी ये सोचा, क्योंकि ये तकनीक इतनी ज़रूरी है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में जो है संज्ञान में लिया है इसे। और उन्होंने करीबन अब जॉइंट जो हमारा इम्प्लांट आता था, जो कि बाहर से आता है, उसके प्राइस में काफ़ी कमी करी गई है। करीबन 20 से 30 हज़ार रुपये जॉइंट पे घटाए गए हैं और ये फ़ायदा हम अपने मरीजों को दे रहे हैं। जितने ही मरीज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, अब हमारा पैकेज जो है पहले से काफ़ी कम है, जिससे कि ये सीधा फ़ायदा उन तक पहुँच रहा है।
0: तो जो भी हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, जिन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और काफ़ी उम्र में है, लेकिन बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये बड़ी महंगी तकनीक है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, पुराने समय की बातें हैं, उन्हें आप हमारे साथ आखिरी दौर में क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल, हम रेगुलरली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं और अब ये एक हद में है लोगों की और बहुत ही रिजनेबल लेवल पे अवेलेबल है
0: जी।
1: और हमारे यहाँ लगातार मरीज ये चीज़ें करवा रहे हैं तो, और उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मरीज बहुत इंकरेज करते हैं और काफ़ी फायदा होता है इससे।
0: तो डॉक्टर प्रवीण, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हड्डी रोग और उनसे जुड़े समाधान

0: के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने जानकारी सुनी हड्डी रोग और उनके समाधान पर डॉक्टर प्रवीण मित्तल, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ से। ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहिया हेड वाटर बाईपास को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चंपावत जिले में पहली बार सिल्क समग्र 2 योजना के तहत रेशम कीट पालन शुरू किया गया। योजना से स्वरोजगार और आय बढ़ने की उम्मीद। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 आवासों का जल्द लोकार्पण कर लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में 21 दिनों तक चले जैव विविधता अनुश्रवण अभियान के दौरान हिम तेंदुए सहित कई दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में 3,75,00,000 रुपए की लागत से बने आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया, कहा इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में गरज चमक, तेज बारिश और झोंकेदार हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

फिल्म बागीफोर से ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी जोश ब्रार और परंपरा टंडन की। गीतकार कुमार थे और संगीत था आगाज का। आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म रेड 2 से ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से ये गीत आपने सुना, विशाल मिश्रा की आवाज थी। गीतकार थे कुणाल वर्मा और संगीत था कौशिक गुड्डू का। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के युगल स्वर में फिल्म वॉर टू से ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

ए आर रहमान की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म तेरे इश्क में से। गीत को बोल दिए थे इरशाद कामिल ने और संगीत था ए आर रहमान का। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का आज का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म लूडो से। गीतकार हैं संदीप श्रीवास्तव और संगीतकार हैं प्रीतम।

इसी के साथ फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रोटी न्याय पंचायत के 6 शक्ति केंद्रों और 22 बूथों के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में श्री जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ संचालित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराना तथा लोगों को आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जागरूक करना कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा 3,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर का निरीक्षण कर उपलब्ध खेल सुविधाओं का जायजा लिया और खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में खेल अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिल सके। श्री धामी ने कहा कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हरिद्वार रुड़की और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहां खिलाड़ियों के लिए जिम, बैडमिंटन कोर्ट और अन्य आवश्यक खेल संसाधनों की व्यवस्था भी की गई है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क में 21 दिनों तक चले जैव विविधता अनुश्रवण अभियान के दौरान हीम तेंदुए सहित कई दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अभियान में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों की मदद से उच्च हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन किया। 7 से 28 जून तक चले चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान के दौरान वैज्ञानिकों, वन विभाग, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने लाता गांव से सर सोपाताल बेस कैंप तक उच्च हिमालय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान कैमरा ट्रैप, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों की सहायता से बुग्यालों, हिमनंदों, वनस्पतियों और वन्य जीवों का अध्ययन किया गया। अभियान में हिमालय थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालय भालू, साइबेरियन विजन और पाइका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए, जबकि हीम तेंदुए, हिमालय रेड फॉक्स, सीरो और हिमालय मॉर्टिन की मौजूदगी के अप्रत्यक्ष साक्ष मिले। इसके अलावा हिमालय मोनाल, स्नो कॉक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेकर गायर सहित कई दुर्लभ पक्षियों की भी उपस्थिति दर्ज की गई। अध्ययन के दौरान औषधि पौधों, लाइकेन, कीट पतंगों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी आकलन किया गया। अभियान के समापन पर वैज्ञानिक दल ने लाता गांव में स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और इको टूरिज्म में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब बेहद करीब है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राज्य में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज चमक, आकाशीय बिजली, बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल से 2 जुलाई के बीच कई जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के अधिकांश जिलों में तथा 2 और 3 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। अगले 1 से 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:35 होने को हैं। समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनते हैं रजनी टोंक के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत।

0: The UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
2: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
3: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
5: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
6: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
5: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
6: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
5: और परिणाम?
6: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
5: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
7: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं लोक संगीत के अंतर्गत रजनी टोंक के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
3: The all-new Nissan Revive अब CNG में
4: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
5: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाए शर्तें लागू
6: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
7: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है और आप केंद्र से सुन रहे हैं लोक संगीत के अंतर्गत रुहेलखंडी लोकगीत गायक कलाकार हैं रजनी टोंक

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: अब कुकर में आईएसआई मार्क क्यों देखना?
2: अगर ISI marked प्रेशर कुकर नहीं लोगे तो शायद आपके कुकर की भी सीटी बज जाए। ध्यान रखिए कि प्रेशर कुकर खरीदते वक्त आप ISI mark जरूर चेक करें। Always use ISI marked प्रेशर कुकर। Be aware, be safe.
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: FM 14.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से लोक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं रजनी टोंक के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर लोक संगीत के अंतर्गत रोहिलखंडी लोकगीत। गायक कलाकार थी रजनी टोंक।

एफएम 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं वर्षा पंत आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज हम आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे हैं। 29 जून वर्ष 2017 में स्थापित आकाशवाणी देहरादून ने आज अपने 9 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन वर्षों में आकाशवाणी देहरादून ने अपनी मधुर आवाज, सार्थक कार्यक्रमों और जनहितकारी प्रसारणों के माध्यम से श्रोताओं के साथ एक आत्मीय रिश्ता बनाया है। अपनी सहभागिता, स्नेह और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस शुभ अवसर पर हम अपने सभी सम्मानित श्रोताओं, कलाकारों, कार्यक्रम निर्माताओं और आकाशवाणी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए, इसी प्रेम और विश्वास के साथ हम आगे भी ज्ञान, संस्कृति और मनोरंजन की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। एक बार फिर आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, अब हम अपने फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम वत्स फरमाइश की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप अपने गीतों की फरमाइशों के साथ हमें अपने बधाई संदेश भी लिख भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731, यानी कि 7088-000-731। तो श्रोताओं, जब तक आपकी फरमाइश हम तक पहुंच रही है, तब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसको गाया है सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है खुशी।

0: Built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम ये फरमाइश शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और ज़रीफ साबरी की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान की। इसके साथ ही संदौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी और अयूब खान। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की। अगला मैसेज हमें भेजा है ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है नमक हलाल और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: CES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और सानिका दले की। और साथ ही पुनावले पुणे से अजय सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने की। साथ ही इन्होंने लिखा है कि आपको आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी, आपका धन्यवाद।

मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दलीवर हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा बेगम नाज और शरिता गौतम की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। दादा बापू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत की। ये हमें आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल और पीबी कुलथे की। अगली फरमाइश हमें मिली है उत्तम कुमार भगत, श्रोत श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद की। ये हमें मैसेज भेज रहे हैं पाखुड़ झारखंड से। साथ ही बेहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की। अगला मैसेज हमें लिख भेज रहे हैं आकार हाइट्स बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवर्णकर, श्वेता सुमित गवर्णकर, कुमारनी गवर्णकर की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। गांव झुगड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो बांगड़, गौरव परवीन, युगम वीरेन, मनकीरत मनराज की। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है बाजीगर और इस गीत को गाया है कुमार सानू और सोनाली बाजपेयी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगली फरमाइशों को शामिल करते हैं, जिनमें से एक हम तक पहुंची है ग्राम लसूड़िया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी की। साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सरफराज अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरबाज अब्बासी, अब्बा अब्बासी की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम तक पहुंचा है

यहाँ की। इनका पता है गांव खरिया ढाणी, जिला सिरसा, हरियाणा। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है, पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, टूसी आयशी, अनिरुद्ध और बाबू की। इसके साथ ही मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साहू, बसंत लाल साहू, हीरा मोती और पन्ना लाल साहू की। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और आप अभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली फरमाइशों को शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष की। साथ ही ये हमें लिख भेजते हैं कि आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई। मेरा तो इतना आत्मीय संबंध है आकाशवाणी देहरादून से जिसे शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जिस दिन आकाशवाणी देहरादून के व्हाट्सएप प्रोग्राम नहीं सुन पाता तो मेरा मन व्यग्र हो जाता है, लगता है कुछ बहुमूल्य वस्तु मैंने खो दिया है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है वीर गाम गुजरात से बेगम प्रमिला प्रदीप और बेगम हेमा प्रदीप के। साथ ही बुलंदशहर से नरेंद्र कुमार डोम, सरिता बत्रा, प्रभा बत्रा, डॉली और अंजलि डोम की। इसके साथ ही डोंडी लोहारा बलोत से सुनील कुमार और आशा देवी की। इसके साथ ही चंद्रनगर राजनांदगांव से रविशंकर जयपुरिया और प्रभा फर्जू की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष की ओर से। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें भेजा है करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजीत ने। इसके साथ ही हमें अगला मैसेज भेजा है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल ने। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढिंगिया और कुणाल ढिंगिया ने। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है यस बॉस और इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी की। साथ ही अगली फरमाइश हम तक पहुंची है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाल सुलरकर और कुमकुम गुड़िया की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है सदर बाजार मारवाड़

खिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। कड़कताल हैदराबाद तेलंगाना से कानुगुला गोपाल महेश्वरी प्रवलिका विष्णुवर्धन विघ्नेश की। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है गांव खवरी अवल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवन्या कंचव की। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना भी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान, आरिज रजा खान, फैज़ा नाज, नाजिया खान। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है आप हैं तेलंगाना चोटुपल से कस्तूरी रामडू, उमा देवी, पृथ्वी और नारायणा की। कार्यक्रम उत्सव फरमाइश में अगला मैसेज हमें मिला है शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े की। कार्यक्रम में अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया और सलोनी चौरसिया की। साथ ही संजू लला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक की। अगला मैसेज हमें मिला है पार्थव रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीव राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दिल चाहता है और इस गीत को गाया है शंकर महादेवन और शान ने।

0: ES Classroom, built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की। साथ ही मोहल्ला हलवाई यान शेरकोर ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अपरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी की। इसके साथ ही मदरसा गेट भावपुरा माणियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, आजरा तबस्सुम की। साथ ही रायपुर अनी ज़िला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहाँ की। इसके साथ ही शनि मंदिर चौक खंडवा से अनीता सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी हमें मैसेज लिख भेज रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी देहरादून की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अगला मैसेज हमें मिला है सांगली जिला के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख की। अगला मैसेज हमें मिला है आप हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है साथ ही ये हमें आकाशवाणी देहरादून की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैसेज लिख रहे हैं कि आपको

स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनी, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका और बलवीर सिंह। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते और इस गीत को गाया है कुणाल गांजेवाला ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम वत्स फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रही कि हम अपने कार्यक्रम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशों को शामिल कर सकें। अब हमारे श्रोता सुनेंगे समाचार, जिन्हें हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से

0: दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In Assam, fears of a major flood have intensified in the Himaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hills of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region. The Himaji district administration has issued an urgent public advisory and a warned that the blockage could trigger a sudden flash flood. In Jammu and Kashmir, with the annual Sri Amarnath Yatra set to begin on July the 3rd, all preparations have been completed for the smooth conduct of the pilgrimage. Our correspondent reports that a full-scale dry trial run was conducted today to assess security arrangements, convoy movement and overall preparedness before the official commencement of the pilgrimage. Benchmark domestic equity indices were trading in the negative zone during the forenoon session today. The Sensex fell 152 points to 76,948, while the Nifty dropped 26 points to 24,030 when reports last came in. On the sectoral front, weakness persisted across auto, telecommunication and IT, while healthcare, pharma and metal sectors were bucking the trend. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Steven Estakio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. And with that, we end this news bulletin.
2: देहरादून अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने में लोगों से सहायता की अपील की। टिहरी के घनसाली नगर पंचायत में रजत जयंती पार्क का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 68 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस पार्क में बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम, साइकिलिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश में आज से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह 2026 मनाया जाएगा। सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है।

0: पौड़ी जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन 29,250 बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई गई। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने थलीसैंण में निर्माणाधीन पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को योजना का कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले में दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और पर्यावरण संरक्षण की पहल के तहत गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना, जल्द ही प्रदेश में मानसून पहुंचने का अनुमान। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:12 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शैलेंद्र सिंह रावत के गाए भजन, और इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं हेमंत मोहित कांठा, और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सुनील मुखर्जी।

अभी आपने सुना सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शैलेंद्र सिंह रावत के गाए भजन आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर गृहस्थी।

नमस्कार बहनों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। और आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी बहन सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगी और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रही होंगी। बहनों, आज महिलाएं हर क्षेत्र

महिलाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, समाज उतना ही सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। शिक्षित महिला बहनों केवल जीवन को ही नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बेहतर बनाती है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखती है और परिवार के आर्थिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज सरकार और विभिन्न संस्थानों द्वारा बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियां, कौशल विकास कार्यक्रम और शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इनका लाभ उठाकर हर छोटी बेटी अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती है। अगर आपके घर में भी कोई छोटी बेटी है, कॉलेज जा रही है या विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती है, और तो आपको उनके सपनों को पंख जरूर देना चाहिए। क्योंकि बहनों, याद रखिए, जब एक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा समाज शिक्षित और सशक्त बनता है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है, उन्हें केवल एक अवसर और परिवार का सहयोग चाहिए। उम्मीद है आप भी इस बात को समझेंगे और अपने घर में अपनी बेटी को उनके सपनों को पंख देंगे। चलिए अभी और भी कई सारी बातें आपसे करेंगे कार्यक्रम में, पर थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा लोकगीत।

0: नई नई लाइटें,
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बहनों। आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। बहनों, आज हम हमेशा की तरह आपके लिए भेंटवार्ता लेकर आते हैं और आज भी हम एक भेंटवार्ता लाए हैं जिसका विषय है आधुनिक कृषि और AI। इस विषय पर डॉक्टर किरण पंत से बातचीत कर रहे हैं विकास चमोली। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
5: नमस्कार बहनों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी देहरादून से प्रसार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण पंत। और डॉक्टर साहब से जो आज हमारी बातचीत का विषय है वो विषय रहने वाला है कृषि में AI की भूमिका। जी हाँ, वर्तमान समय की हम बात करें तो कृषि को आसान बनाने में AI काफ़ी मददगार साबित हो रहा है और कैसे हमारे किसान इससे लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
6: धन्यवाद विकास जी।
5: जी मैडम, सबसे पहले जैसे कि AI की बात हो रही है कि कृषि में किस तरह से हमारे किसान AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले AI को जानते हैं कि ये AI तकनीक क्या है।
6: विकास जी, बड़ा समसामयिक विषय है। आजकल हर जगह हम देखते हैं AI एक पूरा एक कब्जा सा कर लिया है AI ने अपना। तो जो AI है, जिसको हम अगर सरल भाषा में कहें तो वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब जो हम ह्यूमन जो बीइंग हैं उनमें एक, क्यों वो विशेष है, क्योंकि उनमें एक इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है, इसमें कृत्रिम रूप से हमने बुद्धिमत्ता को डेवलप किया है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनों के माध्यम से उसको हमने मनुष्यों की तरह सोचने समझने की कला सिखाई है और उसके अनुसार उसको निर्णय लेने की क्षमता दी है या जो सिखाया है। तो ये, इसको हम अगर सरल भाषा में समझें तो ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
5: जी जी। और वर्तमान समय में जैसे खेती किसानी में हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो थोड़ा बताएं कि किस तरह से हमारा जो कृषि है उसमें AI महत्वपूर्ण हो जाता है।
6: हम जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो बहुत कृषि प्रधान देश है और हम लोग इसमें बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं। अब चूंकि AI हर फील्ड पर इसने अपना एक घुसपैठ बना ली है, तो वही तरीका इसने कृषि में भी, हम लोगों ने इसको, जो हमारी वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने इसका कृषि में भी उपयोग किया है। और कृषि में उपयोग करके ये है कि जैसे जो हमारी पारंपरिक जो विधियां थी जो हमारी कृषि की करने की, उनको हमने थोड़ा सा कृत्रिम रूप में या उसमें थोड़ा और एड ऑन करके हमने इसमें कृषि में, जैसे उसका उपजाऊपन बढ़ाना या उसकी उपज बढ़ाना या कीटनाशकों का कैसे प्रयोग करना है, हर क्षेत्र में हमने AI को यूज किया है। अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें हमने AI को, इस समय AI का यूज हो रहा है कृषि में।
5: जी।
6: तो जैसे

0: हम बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग होती है। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब है कि सटीक खेती, जिसमें जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मिनिमम यूज करके कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट लें।
1: जी
0: तो उसमें क्या होता है कि कम पानी, कम मिट्टी, कम जो हमारी मेहनत लगती है उसमें, लेबर जो लगती है, कम पैसा, वो लगा के हम मशीनों की सहायता लेके कैसे हम ऐसी खेती करें, इस पे हम एआई का यूज कर रहे हैं। तो
1: जी
0: इससे इसमें हमें हेल्प मिली है। इसके अलावा जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे हम मिट्टी की जांच कर ली, हम उसमें खाद डाल रहे हैं डाल रहे हैं, बट वो खाद हमारी उस मिट्टी के लिए यूजफुल नहीं है। तो हम एआई क्या करता है वहां पर कि मिट्टी की जांच करेगा कि
1: जी
0: किस चीज की जरूरत है, सिर्फ हम वो चीज डालेंगे, है ना। मृदा को इस समय नाइट्रोजन की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, तो हम वो सिर्फ वो चीज डालेंगे। पानी में कितनी जरूरत है उतना ही पानी डालेंगे। तो क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज उसमें बच जाते हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज हमारे बच रहे हैं और उपज बढ़ रही है। उसके अतिरिक्त जो हमारा कृषि में अगर हम बात करें तो मौसम बहुत बड़ी चीज है, और
1: जी
0: विशेषकर भारत में, क्योंकि हमारी जो यहाँ खेती है वो मौसम आधारित है। हमारी जो जमीनें हैं सिंचित नहीं है सारी, तो हमारी वर्षा पे आधारित है। तो कब बारिश होने वाली है, किस समय शुष्क रहेगा, तो उसके अनुसार कितना पीरियड है जो हमें ड्राई पीरियड मिल रहा है, कितना पीरियड है जिसमें हमें रेनफॉल मिल रहा है, और कितना मिल रहा है,
1: जी
0: किस समय टेम्परेचर डाउन हो रहा है, किस समय टेम्परेचर हाई है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने फार्मर्स को हेल्प कर पाते हैं कि इस समय आप ये वाली बीज बोइए, ये आपको कम पानी में हो जाएंगे, ये आपको ज्यादा पानी चाहिए, बारिश होने वाली है तो आप ये यूज करो। एंड उसके अलावा कि कब आपको उसकी कटाई करनी है, बारिश हो रही है तो आप इतने दिन बाद बारिश है तो आप अभी उसकी हार्वेस्टिंग कर लो। तो इस तरह से जो हमारा पूर्वानुमान, जो हम कहेंगे कि मिट्टी की वो है और जो हमारा मौसम का पूर्वानुमान है, इसमें हमारा एआई बहुत हेल्प कर रहा है, और इससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत हेल्प मिल रही है। तो जैसा आपने देखा होगा कि हमारे इवन देहरादून में भी आजकल अलर्ट आने लगे हैं मौसम के, क्योंकि मौसम विभाग एआई का यूज कर रहा है, और एआई के माध्यम से वो सारे लोगों को अलर्ट कर देता है कि अब बारिश आएगी और अब बारिश नहीं आएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना प्लान बना लेते हैं और अपना काम करते हैं। फिर जैसे हमारे, जब हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो कीट और बीमारियां ये तो नेचुरल हैं, जो
1: बिल्कुल
0: आनी ही है। तो उसमें, और कभी कई बार ऐसा होता है कि एक जो कीट आते हैं वो बहुत सामूहिक रूप से आते हैं, तो उसका हम पूर्वानुमान लगा के अपने फार्मर्स को अलर्ट कर देते हैं कि हो सकता है इस पीरियड में ये कीट आपका नुकसान कर सकता है, तो आप पहले से ये दवाइयों का छिड़काव कर लीजिए और ये प्रिकॉशंस ले लीजिए जिससे आपकी फसल को हम कीट से बचा
1: बचा
0: सकें।
1: सकें।
0: इसके अतिरिक्त आपने आजकल जो देखा होगा कि ड्रोन का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, और वो
1: बिल्कुल
0: भी एआई है। वो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: है,
1: जी
0: वो सिर्फ एआई है। उसमें हमने उसको इतना समझने की क्षमता दे दी है, उसको सिखा दिया है ड्रोन को, कि वो हमारा जहां पर जितने एरिया में एक आदमी अगर 1 हेक्टेयर में अगर 5 घंटे में वहां पर कोई चीज स्प्रे कर सकता है, ड्रोन हमारा 15 मिनट में वहां पूरा दवाई का स्प्रे कर देता है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये जो ड्रोन का उपयोग है, एक वरदान सिद्ध हुआ है, और ये एआई का कमाल है। इसके अतिरिक्त जो है, अब आपने देखे होंगे आज हार्वेस्टिंग में हमारे बड़े बड़े मशीनें यूज हो रही हैं। यहाँ तो अभी इंडिया में इतना हाईटेक नहीं है, बट बाहर अगर हम विदेशों की बात करें तो ग्रेडिंग ग्रेडिंग भी जब हम तोड़ते हैं तुरंत ग्रेडिंग हो जाती है फ्रूट्स की, और वो सब एआई का कमाल है, क्योंकि एआई को टेक्नोलॉजी पता है कि किस साइज का, किस तरह का हमें फ्रूट अलग करना है, किस तरह का अलग करना है, तुरंत हार्वेस्टिंग होती है वहीं वहीं पर साथ साथ में। तो जो रोबोट वाला जो काम है वो एआई
1: यहीं से हो
0: जनरेटेड
1: रहा
0: है।
1: है जी।
0: इसके अलावा जैसे हम, मैंने आपको ड्रोन की बात की, जो रिसोर्स मैनेजमेंट की मैंने आपसे बात की कि मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट, ये एआई का कमाल है। अब जब हम फिर से वही बात आती है विकास जी, जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ लाइव स्टॉक आना ही है साथ में, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना लाइव स्टॉक के हमारी भारतीय कृषि संभव ही नहीं है। तो कृषि, जब हम डेयरी पाल कर रहे हैं या हम कुक्कुट पालन कर रहे हैं, कोई भी हम पशुधन प्रबंधन कर रहे हैं, एनिमल जो भी है लाइव स्टॉक का, तो उसमें उसके स्वास्थ्य की निगरानी में एआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल
1: अच्छा
0: है ना, कि कैसे उसको कौन सी बीमारी हो रही है, उसका कितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। पहले तो बहुत पुराने मेथड्स होते थे और बड़े पेनफुल मेथड होते थे एनिमल्स के लिए, लेकिन अब ऐसे मेथड्स आ गए हैं एआई के थ्रू कि उसका जो बीमारी है, उसको क्या बीमारी है, ये सब एआई के माध्यम से हम बड़ा आसानी से पता लगा लेते हैं, और पशुधन का जो बीमारी का मैनेजमेंट है वो कर पाते हैं।
1: जी
0: जैसे मैं बता रही थी कि इंसेक्ट का प्रकोप होने वाला है, कोई बीमारी का प्रकोप होने वाला है, तो उसकी हम पहले से भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे कि जो हमारे बड़े बड़े पशुपालक हैं उनको नुकसान से हम बचा पाए।
1: जी
0: तो यहाँ पर भी एआई ने क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है।
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कृषि और पशुपालन सब में बताया कि कैसे किसानों को एआई से सहायता मिलेगी, किसी तरह के कुछ ऐप्स हैं डॉक्टर साहब जो हमारे किसान जिससे एआई को इस्तेमाल कर सकें?
0: बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमारी सरकार भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो एआई में पीछे क्यों रहे हैं। तो
1: जी
0: इसलिए जो हमारी सरकार है वो भी, और जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। इसमें जैसे आपने सुना होगा ई नैम, है ना,
1: जी
0: ई नैम इतना फेमस है कि आज उसमें फार्मर्स आराम से एक क्लिक पर अपना सामान बेच रहे हैं। वो एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहां पर फार्मर अपना सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं।
1: यानी कि मार्केटिंग में भी एआई
0: पूरा,
1: पूरा
0: हाँ,
1: मदद कर रहा
0: मार्केटिंग
1: है।
0: का भी पूरा रोल है। उसके अलावा जैसे एग्रो ऐप है, जो जैसे क्या होता है, जब हम कोई कृषि का कार्य करते हैं तो उसमें बिचौलिए बहुत लाभ उठाते हैं
1: जी
0: फार्मर्स
1: जी
0: को और
1: जी
0: बहुत बेवकूफ बनाते हैं। तो उसमें एग्रो ऐप भी इसी तरह का ऐप है, जिसमें दो फार्मर्स को या कंपनी को और फार्मर्स को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है,
1: जी
0: जिससे कि वो डायरेक्ट अपने काम कर पाए और बीच का जो उनका मार्जिन है वो खत्म हो जाए। उसके अलावा एग्री बाजार है, किसान बंदी है, बिग हार्ट किसान एग्री फार्मिंग है, जो एक तरह से हार्ट है जहां पर
1: जी
0: अपना, मतलब वो वर्चुअल हार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको सामान ले जाना है, आप अपना पिक्चर्स के थ्रू अपना सामान वहां पर डिस्प्ले करेंगे और एक क्लिक पे आपका सामान, आप भाव लगाएंगे और उसका सामान आपका बिक जाएगा।
1: जी
0: एग्रो स्टार है, बहुत अच्छा ऐप है। इसके अलावा ई नाम का मैंने आपको बताया, एग मार्क नेट है, ये भी बहुत अच्छा ऐप है, जिसमें ये भी एक तरह से ट्रेडिंग का ही है, जिसमें हम लोग मार्केटिंग वाला जो किसान कर पाते हैं। किसान सुविधा ऐप है, किसान सुविधा ऐप जो है उसमें जो हमारे सरकारी रेट है, जो सरकारी वो सब किसान को पता चल जाते हैं, कहाँ क्या मूल्य पे क्या बिक रहा है ये चीजें पता चल जाती हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पता
1: जी
0: चल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से किसानों को लाभ हो रहा
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि तमाम महिला बहनें हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं और वो भी जान रहे हैं कि किस तरह से खेती किसानी में एआई की मदद ली जा सकती है, और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम देखते हैं ना कि महिलाएं ही ज्यादातर खेती किसानी में देखी जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, महिलाओं के लिए और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एआई किस तरह से मददगार होगा, क्योंकि पहाड़ों में अगर दूर क्षेत्रों में हम इंटरनेट सुविधा की बात करें तो वो भी एक समस्या है।
0: बिल्कुल, पहाड़ों में या जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बात करें, तो जब महिला की बात करते हैं तो स्वास्थ्य बहुत पहले आता है, महिला का स्वास्थ्य। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ऐसे ऐप आज डेवलप्ड हैं या एआई वहां पर बहुत अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है।
1: जी
0: तो उसमें एक है ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण भारत में एआई सक्षम डिजिटल कौशल, जिसको अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो AFEIAS करके एक .com करके एक है, जिसमें कोई भी ग्रामीण महिला अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के जा सकती है और उसका वहां पर समाधान किया जाता है। तो अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, क्योंकि एआई का
1: जी
0: बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। देखिए, आप जब हम एक स्मार्टफोन हर घर में पहुंच चुका है, हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है, तो स्मार्टफोन की मदद से आज महिलाएं अपनी मार्केटिंग कर रही हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा रही हैं, स्वास्थ्य और पोषण में फायदा ले रही हैं। जैसे व्हाट्सएप और जो हमारे ये हैं, इस तरह के जो ऐप हैं, चैट जीपीटी इस तरह के ऐप हैं, गूगल देख के वो लोग अपना क्या कर पा रहे हैं कि अगर उनको कहीं पे इमीडिएट कोई हेल्प नहीं मिल पाती है, वहाँ आसपास कुछ नहीं है, तो वो वहाँ पूछ करके और वहाँ से वो जानकारी लेकर के अपनी मेडिसिन खरीद के या अपना जो इलाज कर, छोटी मोटी चीजों का इलाज कर पा रही हैं या छोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर पा रही हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जैसे वो जो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ठीक है या नहीं, उसको भी वो उसके माध्यम से कर पा रही हैं, मतलब उसको अपना कंफर्म कर पा रही हैं कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता, एक ऐप है, ये एक प्रोग्राम है
1: जी
0: जिसमें एआई के माध्यम से दूर दराज जो हमारी महिलाएं हैं उनके कौशल विकास पे काम किया जाता है।
1: अच्छा
0: तो वो उसमें उनको यही जो मैं अभी AFEIAS का बता रही थी आपको, इसमें इसके अंतर्गत ही वो आता है, और इसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो
1: अच्छा
0: जो जैसे कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आप दूर से, मतलब के स्क्रीन के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, तो उसमें उसके उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाजारा स्वरोजगार जो से पहले था बताया था मैंने आपको, उसमें भी हमारी महिलाएं से लाभान्वित हो रही है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र

0: उसमें हथकरघा का बहुत इम्पोर्टेंट है, हस्तशिल्प का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
1: जी, जी.
0: और वो छोटी छोटी चीजें बनाती हैं, उनको उसका मार्केट नहीं मिलता है. तो एआई के माध्यम से वो आज व्हाट्सएप या जो इस तरह के जो एआई के माध्यम से चल रहे हैं उनके ग्रुप्स के थ्रू अपना सामान बहुत आसानी से बेच पा रही हैं.
1: जी
0: इसके अलावा जो जो हमारे कारीगर काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरदराज क्षेत्रों में, उनको वो पुराने तरीकों पर अटके हुए हैं. लेकिन आज अगर हम एआई का रोल देखें, नए डिजाइन कैसे बनाने हैं, जो बाजार में मांग है उन डिजाइनों को कैसे अपनाना है, है ना, तो ये चीजें हमारी एआई ने बहुत इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. और आज ग्रामीण क्षेत्रों से भी देखिए आप, हस्तशिल्प में ऐसी ऐसी चीजें बन के आ रही हैं जो हमारे विदेशों में जा रही हैं. तो यहाँ पर एआई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. तो बैंकिंग है, आप देखिए कि हमारे हाथ में एक क्लिक में सारी चीजें अवेलेबल है, तो बैंकिंग महिलाओं को बहुत हेल्प कर रही है क्योंकि वो सामान बेच रही है और उनका सामान उनके अकाउंट, पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है. तो डिजिटल बैंकिंग जो जिसकी हम बात करते हैं वो भी एक एआई का ही उदाहरण है
1: जी. निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, स्वरोजगार की बात हो चाहे खेती किसानी में, पशुपालन में, एआई बहुत ज्यादा उपयोगी हो रहा है और वर्तमान दौर क्योंकि एआई का है. तो क्या कहेंगे आप हमारी तमाम महिला बहनों से कि आधुनिक तौर तरीके अगर सीखने हैं, आधुनिक तरीके से अगर खेती किसानी करनी है तो एआई कितना जरूरी है?
0: देखिए, मैं अपनी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अगर आगे बढ़ना है तो समय की जो मांग है उसको हमें देखना पड़ेगा, चाहे वो एआई हो चाहे कोई और टेक्नोलॉजी हो. जब तक हम नई टेक्नोलॉजीज को जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभदायक है, उनको नहीं अपनाएंगे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे और जो बाकी लोग उसको अपनाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे. और किसी भी तकनीकी और बाजार में रहने के लिए कहा जाता है कि जो जितने पहले आगे आएगा वो उतना ज्यादा उसको फायदा होगा. तो महिलाओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है, किसी चीज में शर्माए नहीं. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई नहीं कर सकता. जब आप मोबाइल चला सकते हो आप हर चीज कर सकते हो. तो बैंक्स, आप बैंक उसके मोबाइल बैंकिंग में जुड़िए, आप नई टेक्नोलॉजी को सीखिए और जो आप काम करती हैं उसके नए बाजार को इसमें ढूंढिए, तो आपको जो आपका लाभ है कई गुना उसका ज्यादा लाभ मिलेगा.
1: जी, तो डॉक्टर किरण पंत आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और कृषि में एआई कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इस विषय पर बहुत ही उपयोगी बातचीत आपने हमारी तमाम महिला बहनों के साथ साझा की आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
2: बहनों, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता जिसका विषय था आधुनिक कृषि और एआई. इस विषय पर डॉक्टर किरण पंत से बातचीत कर रहे थे विकास चमोली. उम्मीद है आपने भेंटवार्ता को ध्यान से सुना होगा और दी गई जानकारी का लाभ भी आप जरूर लेंगे. अभी कार्यक्रम में आपसे और भी बातें करेंगे, पर उससे पहले सुनेंगे कुछ जरूरी संदेश.
3: Classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
5: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून. एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in. सफलता के कदम सुभारती के संग.
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स. आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बहनों। बहनों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है हम देख रहे हैं, और महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभा रही है, और संस्कृति के प्रसार में भी महिलाएं अपनी भूमिका हमेशा से निभाती आई हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारियां ही नहीं निभाती, बल्कि अपनी लोक परंपराओं, रीति रिवाजों, लोकगीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक खान पान को भी जीवित रखती है। बचपन से ही बच्चे अपनी माँ और दादी नानी से लोक कथाएं, लोकगीत और संस्कार सीखते हैं। यही परंपरा अब हमारी जो संस्कृति है उसकी पहचान को मजबूत बनाती है। उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व हरेला, फूलदेई, इगास, घी संक्रांति, बगवाल और अनेक धार्मिक उत्सवों की रौनक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही बढ़ती है। पूजा पाठ की तैयारियां हो, पारंपरिक व्यंजन बनाना हो या लोकगीतों की मधुर स्वर लहरियां हो, हर जगह महिलाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोकगीतों की बात करें तो शादी ब्याह के मंगल गीत, ऋतु गीत, जागर और पारंपरिक लोकधुने आज भी महिलाओं की आवाज में जीवित है। इन गीतों में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की झलक भी मिलती है। तो इस तरह से महिलाएं जो हैं हमारी संस्कृति को प्रसार कर रही है, बचा रही है, और ये बहुत अच्छा है। हम सभी को भी ये जागरूक होना चाहिए और अपनी संस्कृति की धरोहर को बचाना चाहिए। और अभी इन्हीं सारी बातों के साथ बहनों, समय भी हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती है ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी, अनुभाग कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी देहरादून। पिन है हमारा 2480001। जगत कृषि gmail.com पर आप हमें अपने ईमेल्स भी भेज सकते हैं। अब अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए। बहनों नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम घर गृहस्थी आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा

0: अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं चंपावत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं बल्कि ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है जो आने वाले दशकों तक चंपावत के विकास की मजबूत नींव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निर्णय ले रही है।

0: श्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में चंपावत जिला चिकित्सालय में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में 7 से 28 जून तक आयोजित चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अभियान के दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने उच्च हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता, वनस्पतियों, वन्य जीवों और हिमनदों का अध्ययन कर महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के दौरान कैमरा ट्रैप, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों की सहायता से बुग्यालों, हिमनदों, दुर्लभ वनस्पतियों तथा वन्य जीवों का आकलन किया गया। अध्ययन में हिमालयी थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, साइबेरियन वीजल और पाइका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी रेड फॉक्स, सीरो और हिमालयी मार्टिन की मौजूदगी के अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले। अभियान के दौरान हिमालयी मोनाल, स्नो कॉक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेमरगायर सहित कई दुर्लभ पक्षियों की भी उपस्थिति की गई। इसके अलावा लाइकेन, औषधीय पौधों, कीट पतंगों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी अध्ययन किया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिले में लगभग 2,42,000 मतदाता हैं जिनके विवरण का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई से मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
4: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000 है, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का ऐसा या फिर डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय फिलहाल डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म्स हैं उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें और 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं इस ऐप के बारे में, और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 1 महीने की रहेगी।
0: अल्मोड़ा में आयोजित 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का समापन कल होगा। महोत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प के साथ ही अन्य राज्यों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कुमाऊं महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना, साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
5: कुमाऊं महोत्सव पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, उनको एक मंच प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको हमने जिंदा रखना है। तो इसके लिए छोटे बच्चों सबको भी हम सिखाते भी हैं, मंच भी देते हैं, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्पण के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं उनके क्षेत्र में हो।
0: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की 23वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि अमर शहीद मेजर कंडारी का बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा तथा उनका त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। वहीं कल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई के लिए देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अपराह्न के 1:15 हो रहा है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एक मधुर से गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता और इस गीत को गाया है अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं ये अगला प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के

0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बुधनी, अरे ओ बुधनी।
1: आ गया बुधवा,
0: हाँ
1: ले आया लकड़ी।
0: अरे
1: आ इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप
1: हाँ
2: भी कर, क्या करूं इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात। अरे मैं क्यों काटूं पेड़, हैं? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती हैं, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी, ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से,
0: हैं?
2: कह देती हूँ। हाँ या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे
2: हाँ
0: अरे रोने लगी। अरे सुन
2: अम्मा,
0: तो,
2: अम्मा।
0: अच्छा, सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़। पुरखों की भी यही रीत है, मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: ये क्या घुल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: नहीं नहीं नहीं
2: हाँ अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
1: अब
2: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं
2: अरे
1: अम्मा
2: चुप,
1: कि।
2: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।
0: अच्छा।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा, है ना चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है, जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी, गहना घरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ
2: चलो
0: चलो आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
3: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
3: ध्यान से बेटा।
1: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। ले लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
2: तू समझ गई ना?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
2: बता?
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चलो
2: सच्ची।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तब तक के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा।

0: कच्छ से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्था

0: को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।

0: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। श्रोताओं, कभी कभी इतिहास कुछ ऐसे नाम लिखता है जिन्हें याद करते समय आंखें नम हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा सैनिक की जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हम बात कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूत कैप्टन सौरव कालिया की। और आज के अपने कार्यक्रम में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं ये देशभक्ति गीत फिल्म रोजा से हरिहरन की आवाज़ में।

29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सौरव कालिया का बचपन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीता। उनके पिता डॉक्टर एनके कालिया एक वैज्ञानिक थे और माता विजया कालिया एक शिक्षिका थी। सौरव एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पालमपुर से पूरी की और बाद में स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना की परीक्षा पास की और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए। 1998 में सौरव कालिया भारतीय सेना में अधिकारी बने और उनकी नियुक्ति चार जाट रेजिमेंट में हुई। उन्होंने वर्दी पहनकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूर्ण कर लिया था। आइए श्रोताओं, अब आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनाते हैं फिल्म स्वदेश से, जिसको गाया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, फिर साल 1991 में भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय आया। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची बर्फीली चोटियों पर दुश्मन देश समर्थित घुसपैठियों के गुप्त रूप से कब्जा शुरू कर दिया था। शुरुआत में किसी को इस घुसपैठ

ये गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था। इसी दौरान लेफ्टिनेंट सौरव कालिया की यूनिट कारगिल के काकसे सेक्टर में तैनात थी। 15 मई 1999 में उन्हें उनके 5 साथियों के साथ गश्त पर भेजा गया। उनके साथ थे सैनिक अर्जुन राम, भानवर लाल बगारिया, भीका राम, मूला राम और नरेश सिंह। इन 6 जवानों को ये पता नहीं था कि ये इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आइए अब आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनाते हैं, फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

साथियों, काकसर सेक्टर की पहाड़ियों में गश्त के दौरान उनकी टीम का सामना बड़ी संख्या में घुसपैठियों से हुआ। भारतीय जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अंत में जब गोला बारूद समाप्त हो गया तो वे दुश्मनों के कब्जे में चले गए। इसके बाद लगभग 22 दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। इन 22 दिनों ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। सेना और परिवार लगातार उनकी जानकारी पाने की कोशिश कर रहे थे। फिर 9 जून 1999 को भारत को एक दुखद समाचार मिला। कैप्टन सौरव कालिया और उनके साथियों के पार्थिव शरीर भारत को लौटाए गए। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन के संदर्भ में उठाया गया। यह खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। सौरव कालिया के पिता एनके कालिया ने वर्षों तक अपने बेटे और उनके साथियों के लिए न्याय की मांग उठाई और पूरी कोशिश की कि दुनिया इस घटना को भूले नहीं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको अगला गीत सुनाते हैं, फिल्म ब्रदर्स से विशाल डडलानी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कैप्टन सौरव कालिया और उनके साथियों की शहादत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। देशभर के लोगों के अंदर देशभक्ति की नई भावना जागी। भारतीय सेना ने अदम्य साहस के साथ अभियान चलाया और अंततः कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। श्रोताओं, कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरे देश के लिए अमर हो जाते हैं, और कैप्टन सौरव कालिया उन्हीं वीरों में से एक थे। आइए अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है 83।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच पर नई भाषा नीति लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और प्रशिक्षित मानव संसाधन से सशक्त बना रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में स्थानीय नागरिकों से क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की तथा अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण के लिए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। 130 इन्फेंट्री बटालियन इको कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए 3 से 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ के देवकटिया ग्राउंड में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जारी। सांस्कृतिक दल नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच कोई भी गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:02 हो रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए तराने, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसको गाया है हेमा सरदेसाई और केके ने। फिल्म का नाम है खुशी।

श्रोताओं, कार्यक्रम गाने नए तराने में अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म जब वी मेट से, जिसको गाया है शान और उस्ताद सुल्तान खान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गाने नए तराने में अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म जाने मन से, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और कृष्णा की आवाज़ों में।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं अगला प्यारा सा गीत सुनिधि चौहान और साहित माल्या की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, हर गीत अपने साथ कुछ यादें और कुछ एहसास लेकर आता है। आइए सुनते हैं आज का अगला खूबसूरत नगमा, जिसको गाया है अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है जिद।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म शेरशाह से बी पराग और जसलीन रॉयल की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म बेशर्म से, जिसको गाया है ममता शर्मा और ऐश्वर्य निगम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गाने नए तराने का अंतिम गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म रॉकस्टार से, जिसको गाया है ए आर रहमान और मोहित चौहान ने।

0: इसी के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। अब हमारे श्रोता सुनेंगे FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रभावी उपाय लागू करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। प्रदेश में SIR के तहत मतदाता विवरण के डिजिटाइजेशन का कार्य 92% से अधिक पूरा हो गया है। देहरादून पुलिस ने राज्य के सभी थानों को बम विस्फोट की धमकी से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच पर नई भाषा नीति लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का आधार है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण के लिए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। 130 इन्फेंट्री बटालियन इको कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए 3 से 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ के देवकटिया ग्राउंड में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जारी। सांस्कृतिक दल नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। शाम के 4:02 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रामजी लाल शर्मा का पखावज वादन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रामजी लाल शर्मा का पखावज वादन, आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 4:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं पार्श्व गायक नितिन मुकेश।

श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास कई महान गायकों की मधुर आवाज़ से सजा हुआ है। इन महान हस्तियों में एक नाम ऐसा भी है जिसने अपने पिता की अमर विरासत को न केवल संभाला बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाई, और ये नाम है पार्श्व गायक नितिन मुकेश। आज के अपने कार्यक्रम में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं ये गीत जिसको गाया है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है क्रांति।

श्रोताओं, जब भी भारतीय संगीत की बात होती है तो महान गायक मुकेश का नाम सम्मान से लिया जाता है। उनकी दर्द भरी आत्मीय आवाज ने लाखों दिलों को छुआ है, लेकिन एक महान कलाकार की विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता। इस चुनौती को स्वीकार किया उनके पुत्र नितिन मुकेश ने, जिन्होंने अपने सुरों से ये साबित किया कि प्रतिभा और मेहनत मिलकर नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकती है। आइए कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनाते हैं फिल्म नूरी से, जिसको गाया है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने।

27 जून 1950 को जन्मे नितिन मुकेश का बचपन संगीत के वातावरण में बीता। घर में हर समय रियाज, गीतों की चर्चा और बड़े बड़े संगीतकारों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे माहौल में संगीत उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गया। वे जानते थे कि लोग उनकी तुलना हमेशा उनके पिता से करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने का निश्चय किया। संगीत की दुनिया में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी उनसे। हर कोई अपने पिता जैसी आवाज़ और वही जादू देखने की उम्मीद करता था, लेकिन नितिन मुकेश ने कभी इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वर्षों तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और अपनी गायकी को निखारने के लिए निरंतर मेहनत की। आइए उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बेवफा सनम से।

श्रोता, 1970 और 1980 के दशक में नितिन मुकेश ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी आवाज़ में मिठास और भावनाओं में गहराई थी, जिसने श्रोताओं को प्रभावित किया। उनके लोकप्रिय गीत जैसे जिंदगी की न टूटे लड़ी, वो कहता है मैं भी हूँ, आज भी लोगों की यादों में बसे हैं। उनकी गायकी में एक सादगी थी जो सीधे दिल को छूती थी। यही कारण है कि उन्होंने धीरे धीरे हिंदी फिल्म संगीत में अपनी जगह बना ली। नितिन मुकेश को उनके संगीत योगदान के लिए कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें 2008 में लता मंगेशकर पुरस्कार और 2025 में लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं। भारतीय संगीत में उनके महान योगदान के लिए उन्हें 2025 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आईना।

श्रोताओं, नितिन मुकेश अक्सर कहते थे कि उनके पिता ने उन्हें संगीत नहीं बल्कि विनम्रता, अनुशासन और मेहनत का महत्व भी सिखाया है। नितिन मुकेश ने केवल अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि इसे अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाया है। उनके पुत्र नील नितिन मुकेश ने अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। इस प्रकार ये परिवार भारतीय कला और मनोरंजन जगत में तीन पीढ़ियों से योगदान दे रहा है। नितिन मुकेश भारतीय जगत के उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने ये साबित किया कि विरासत केवल जन्म से नहीं मिलती बल्कि उसे मेहनत, समर्पण और प्रतिभा से जीवित रखा जाता है। आइए अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाते हैं। फिल्म का नाम है खून भरी मांग, जिसे गाया है नितिन मुकेश और साधना सरगम ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आज के हमारे कलाकार थे पार्श्व गायक नितिन मुकेश। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब हमारे श्रोता सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी है, अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते।

राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं।

पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1450 हो गई है, हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और

0: पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्र ने कहा कि इस तरह की बातचीत न तो नहीं है और न ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे रजनीश कुमार त्रिवेदी की हिंदी वार्ता। विषय रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभरती हिंदी पत्रकारिता। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम ज्ञान दर्पण का समय रहेगा साय 7:50 पर। अब से कुछ ही पलों में 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम विववाणी, जिसके ठीक बाद संध्या 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जयंती वल्लभ मलासी की कविता पाठ। मोहम्मद रफी की सुर में गाए गीत आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर। साय 7 बजे किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान का समय रहेगा साय 7:40 पर। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सुनेंगे अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। कल सुबह 6:10 पर प्रसारित किया जाएगा भक्तिभाव से परिपूर्ण कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। लोकधुनों पर आधारित कार्यक्रम लोकरसधार का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। सौरभ मेठाणी के सुर में गाए गढ़वाली लोकगीत सुनिएगा कार्यक्रम शैल संगीत में सवेरे 7:30 पर और लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 10:35 पर सुनिएगा विविध कलाकारों के सुर में गाए गुजराती लोकगीत। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में कल आप सुनेंगे निर्मला नेगी की वार्ता। विषय रहेगा सोशल मीडिया महिलाओं के लिए सशक्त डिजिटल क्रांति। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 4:02 पर सुनिएगा राशि पंत का ख्याल गायन, आप प्रस्तुत करेंगे राग मुल्तानी। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर और दोपहर 3:02 पर सुनिएगा फिल्म संगीत गाने नई तराने। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं सक्षम पंत
1: और मैं रितिका बंजोला आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ।
0: दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो चैंपियन होते हैं ना, वो मैदान में अभ्यास के दौरान ही बनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही एक खिलाड़ी को सफलता दिला सकती है?
1: मेहनत तो सबसे जरूरी है सक्षम, लेकिन उसके साथ चाहिए बेहतर कोचिंग, आधुनिक सुविधाएं और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जब खिलाड़ियों को सही माहौल मिलता है, तभी वे अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि आज उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ही यहाँ पर अब आधुनिक स्टेडियम, खेल अकेडमीज और प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित हो रहे हैं।
1: तो आइए आज जानते हैं कि उत्तराखंड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है।
0: दोस्तों, उत्तराखंड में खेलों के विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है देहरादून में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का। ये राज्य का प्रमुख खेल प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पर एथलेटिक, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, तैराकी, शूटिंग, बैडमिंटन और अन्य कई खेलों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
1: बिल्कुल सक्षम, और इसी परिसर में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड की एक बड़ी पहचान बन चुका है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित हो चुके हैं और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट अभ्यास सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
0: अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार हल्द्वानी भी खेल गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक और अन्य कई खेलों के लिए आधुनिक मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
1: इसके अलावा हरिद्वार, रुद्रपुर, श्रीनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और अन्य जिलों में भी इंडोर स्टेडियम, बहुउद्देशीय खेल मैदान और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को अपने जिले में ही बेहतर प्रशिक्षण मिल सके।
0: साथ ही साथ दोस्तों, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो भी खेल के लिए इसे बहुत ज़्यादा खास बनाती है। यहाँ औली देश के प्रमुख स्कीइंग केंद्रों में से एक है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर की शीतकालीन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।
1: वहीं ऋषिकेश अपनी विश्व स्तरीय रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ टिहरी झील कायाकिंग, कनोइंग, रोइंग जैसे क्रीड़ा खेलों के लिए नई संभावनाएं खोल रही है। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी उत्तराखंड की विशेष पहचान है।
0: दोस्तों, आज के समय में खेल केवल शौक नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक करियर भी बन चुका है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार और विभिन्न खेल संस्थाएं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं, साथ ही साथ उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी बेहद प्रोत्साहित कर रही हैं।
1: यही कारण है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये साबित करता है कि प्रतिभा अगर सही दिशा और संसाधन पाए तो सफलता निश्चित है।
0: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों एक बात और है कि खेल अवसंरचनाएं केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है। इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना, खेलों में भाग लेना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, ये हम युवाओं की भी जिम्मेदारी है।
1: अगर आपके आसपास कोई खेल मैदान, स्टेडियम या प्रशिक्षण केंद्र है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए। हो सकता है आपकी मेहनत और लगन आपको राज्य, देश और एक दिन ओलंपिक तक पहुंचा दे।
0: याद रखिए दोस्तों कि हर बड़ा खिलाड़ी कभी ना कभी अपनी शुरुआत एक छोटे से मैदान से ही करता है।
1: और हर मजबूत खेल संस्कृति की नींव होती है।
0: तो आइए दोस्तों, खेलों को अपनाएं, फिट रहें और उत्तराखंड में खेलों के क्षेत्र में और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म दंगल से।

0: दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कविशा वर्मा द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही खूबसूरत काव्य पाठ। तो चलिए, इसी के साथ आइए सुनते हैं हम ये काव्य पाठ। लेकिन उससे पहले सुनिए ये जरूरी जानकारी।
1: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
5: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
6: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
7: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
6: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
8: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
9: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
8: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
9: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
8: और परिणाम?
9: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
8: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
10: UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
11: नमस्कार, आज मैं आपको अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। ये शब्द हैं, बड़ी दूर तक जाते हैं। एक बार किसी से कह दिए तो फिर लौट कर नहीं आते हैं। सारा खेल इन्हीं ने रचाया है, हर मेल इन्हीं ने मिलाया है। इतनी ताकत रखते हैं कि इंसान की कीमत लगा दें, इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दुनिया को घुमा दें। हर कदम अगर फूंक फूंक के ना भी रखो तो भी हर शब्द सोच विचार कर ही बोलना। वेशभूषा का ध्यान अगर ना भी रखो तो भी शब्दों की कमान खींच के रखना। ऐसा तीर है जो छूट गया तो निशाने तक ही जाएगा, ऐसा जहर है जो घुल गया तो जान लेकर ही आएगा। ये वही शब्द हैं जो भाईचारा बढ़ाते हैं, ये वही शब्द हैं जो घर घर बंटवारा कराते हैं। इन शब्दों का मूल समझना ही होगा, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो मुर्दे को जिंदा कर जाते हैं। इसलिए ध्यान ये रखो कि अपने शब्दों की पहचान रखो, इसलिए बात ये समझो कि अपने शब्दों की तलवार मयान में रखो। मैं आपको अपनी कविता जिसका शीर्षक है शिक्षा सुनाना चाह रही हूँ। मस्तिष्क के विचारों की फसल में सिंचाई की पहली धार है शिक्षा। अज्ञान के सूखे आंगन में जीवन का हरित विस्तार है शिक्षा। रूढ़िवादी सामाजिक बुराइयों पर वैज्ञानिक विकास का प्रहार है शिक्षा। भ्रम और अंधविश्वास के विरुद्ध तर्क का सशक्त हथियार है शिक्षा। बुराई के अंधियारे पथ में सहायता की उजली राह है शिक्षा। दुर्घटना से बचना सिखाए जो जीवन ज्योति की चाह है शिक्षा। भेदभाव की ऊंची दीवारों को ढाने वाली पुकार है शिक्षा। जाति धर्म और वर्ग से ऊपर मानवता का व्यवहार है शिक्षा। नारी को उसके अधिकार दिलाए स्वाभिमान का श्रृंगार है शिक्षा। हर बंधन को तोड़ आगे बढ़ने का अटल और दृढ़ विचार है शिक्षा। केवल अक्षर ज्ञान नहीं, उज्जवल भविष्य का द्वार है शिक्षा। राष्ट्र की उन्नति के पथ पर प्रगति का सशक्त आधार है शिक्षा। मस्तिष्क के विचारों की फसल में सिंचाई की पहली धार है शिक्षा। मानव को मानवता सिखाने वाला ईश्वर का अनुपम आहार है शिक्षा। अब मैं आपको दूसरी कविता जिसका शीर्षक है नारी हिंदी और तुम सुनाने जा रही हूँ। तो नारी के सम्मान में जब लड़ने को तैयार हो जाता है बच्चा बच्चा हिंदुस्तान में, उठाओ कलम और सभ्यता को ढाल बना करो प्रहार रण के मैदान में। दुशासन सा हो गया है जो पश्चिमी लहजा हिंदुस्तान में, द्रौपदी सी हिंदी को करने दो जंग अपने सम्मान में। पांडव सा शासन लड़ रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर, बंटवारा करते कौरव हैवान से जैसे उतर आई हो इंसानियत शमशान में। नारी बैठ गई है बेलन के पीछे चूड़ियों की जंजीर में, स्वतंत्रता की उड़ान में काट दो सारे बंधन शिक्षा की शमशीर से। कूटनीति कर रहे कई शकुनी आज भी, तुम अज्ञात युधिष्ठिर मत बन जाना, रखना शब्दों की तलवार को संयम की मयान में। महाभारत की एक ही सीख, याद करो गीता की बात, कायरता के युद्ध के अंत में जीतने वाले ने भी करा अत्यंत त्याग। कर्म करते चलो बिना फल की चिंता किए सफर में, कृष्ण जैसे हैं बसे हृदय में स्वयं के। एक जंग हो रही है सीमा पर, वक्त आ गया है एक जंग अब खत्म करो तुम, सदियों से चल रही जो भीतर मन के। कर्ण सा दान करो लालसा का तुम, एकलव्य सा सीखने का जज्बा रखो, हुनर की चप्पल से करना सफर तय, मंजिल जरूर मिलेगी तू एक बार कर तो सत्याग्रह, मंजिल जरूर मिलेगी तू एक बार कर तो सत्याग्रह। और अंततः मैं आपको अपनी कविता प्रेम एक सफर सुनाने जा रही हूँ। प्यार वो तलाश है जिसमें महबूब को ढूंढते हुए हम खुद खो जाते, क्या बताऊं मैं दुनिया को मेरा क्या हाल हुआ, जब से नजरें मिली उससे जो हुआ कमाल हुआ। मेरे पास आओ तो बताऊं तुम्हें इश्क क्या होता है सिखाऊं तुम्हें, चाहतों में मशरूफ रहने से फुर्सत मिले तो मोहब्बत क्या होती है दिखाऊं तुम्हें, और ना आने का इरादा हो तो भी बता दो, अब तक तो याद रखा था फिर भुलाऊं तुम्हें। तुम भी कमाल करते हो खुद ही जवाब देकर खुद ही सवाल करते हो, तुम्हारी तस्वीर से अब शिकायतें हैं मुझे, ये तुम्हारी तरह मुझे मनाती नहीं है, मैं इसकी आंखों में देखता हूँ दीवानों सा, ये तुम्हारी तरह शर्माती नहीं है। कितने अरसे से मुझे तुमसे बातें करनी है कई सारी, गुरूर है इसको मैं पूछता रोज हूँ, ये तुम्हारा पता बताती नहीं है। अब जब वो शहर ही छोड़ दिया तो फिर वहां का फसाना कैसा, जब तूने बस रोने के कारण दिए तो फिर हंसना हंसाना कैसा, और मेरी गमे हयात की शराफत देखो, जख्म गहरा तो बहुत है पर छोड़ो बताना कैसा। कुछ वक्त लगेगा समझने में तुमको, हर वक्त तुम्हारा नहीं होता, और अगर चलते चलते खो दो तुम कुछ तो जिंदगी में सब कुछ पाना नहीं होता। तू त्याग दे उसे जो दूर है तुझसे, भिखारी जैसे हर बार आगे कटोरा खिसकाना नहीं होता, और अपनी मेहनत से बन जा तू कुछ इस भीड़ में, भिक्षाम देही बोल के यहाँ सबका गुजारा नहीं होता। किसी को हंसाते हंसाते खुद को रुला मत लेना, उनकी यादों के लिए खुद को भुला मत लेना, और हंसी तो तेरे होठों पर भी खूब जचती है, उनके चैन के लिए इसे मिटा मत लेना। महबूब मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, इश्क अपने आप आए तो रहमत, मांगना पड़े तो भीख। रास्तों से मंजिल का पता नहीं पूछा करते, मंजिल से पूछो तुझ तक कौन से रास्ते से आया जाए, और आओ एक शाम बिताएं हमारे साथ, तुम्हें खुद से मिलाते हैं, खो गए थे तुम कहीं कितनी सुंदर है जिंदगी तुम्हें याद दिलाते हैं, और बहुत सारी बातें कर लेना तुम मुझसे, कह देना हर बात जहन की, टूट गए थे तुम कहीं आओ टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर तुम्हें दोबारा हंसाते हैं। पर ये दिल तो तोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ता है, नहीं मिलती मंजिल चैन से बैठे बैठे, टुकड़ा टुकड़ा हौसले को जोड़ना पड़ता है। लहरों जैसा हो गया हूँ मैं, एक समंदर है जो मुझे पाना चाहता है, और एक रेत का किनारा है जो मुझे ठहरने को नहीं मिलता, एक आसमान है जो मैं छूना चाहता हूँ, एक जमीन है जिसे छोड़ने को मैं तैयार नहीं, एक डर है जो आगे बढ़ने नहीं देता, एक हौसला है जो मैं हारने को तैयार नहीं।
12: दोस्तों अभी आपने सुना कविशा वर्मा द्वारा ये खूबसूरत काव्य पाठ, अब आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
10: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
8: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
9: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
8: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
9: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
8: और परिणाम?
9: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
8: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
0: So, dosto.
12: एक छोटा सा सवाल, अगर दो लोगों के पास समान प्रतिभा हो, समान अवसर हो और दोनों ही मेहनती हो, तो आखिर सफलता किसे मिलेगी?
0: शायद उसे जिसका मन मजबूत होगा, क्योंकि कई बार इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन से हार जाता है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें सभी के हिस्से में आती हैं। किसी के लिए परीक्षा का दबाव, किसी के लिए करियर की चिंता, किसी के लिए असफलता का डर, तो किसी के लिए रिश्तों की उलझने। लेकिन इस बीच जो चीज़ हमें संभालने रखती है वो है हमारा मजबूत मन,
12: क्योंकि शरीर की फिटनेस जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है मन की फिटनेस।
0: दोस्तों, हम हर रोज़ अपने फ़ोन की बैटरी तो चार्ज करते ही हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने मन की बैटरी को रिचार्ज करने के बारे में भी सोचते हैं?
12: आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम हर काम के लिए समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी नहीं। लगातार पढ़ाई, ऑफिस का काम, सोशल मीडिया और दूसरों से तुलना, ये सब धीरे धीरे हमारे मन पर असर डालते हैं।
0: याद रखिए दोस्तों, मन को मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कभी दुख,

0: तनाव या फिर निराशा महसूस ही ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर गिरावट के बाद हमें उठने की हिम्मत हो हमारे अंदर।
1: बिल्कुल, सोचिए अगर कोई खिलाड़ी एक हार के बाद खेल नहीं छोड़ दे, या कोई वैज्ञानिक पहली असफलता के बाद प्रयोग करना ही बंद कर दे, तो शायद दुनिया को कभी भी बड़े बड़े आविष्कार और महान खिलाड़ी नहीं मिलेंगे।
0: यानी सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मजबूत मन वाले लोग असफलता को अपनी मंजिल नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखते हैं।
1: तो सवाल ये है, आखिर मन को मजबूत कैसे बनाया जाए?
0: शुरुआत कीजिए दोस्तों खुद से दोस्ती करके। अपनी कमियों को आप स्वीकार कीजिए, लेकिन उन्हें आप अपनी पहचान मत बनने दीजिए।
1: हर दिन कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से ना दूर ही रहिए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से बात कीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए या प्रकृति के बीच कुछ अच्छे पल बिताइए।
0: योग, ध्यान और नियमित व्यायाम ना केवल शरीर को बल्कि हमारे मन को भी शांत और संतुलित बनाए रखता है। अच्छी नींद और संतुलित भोजन भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं।
1: और अगर कभी आपको लगे ना कि तनाव और चिंता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो बिल्कुल चुप मत रहिए। अपने माता पिता, शिक्षक, किसी दोस्त या भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। याद रखिए, अपनी बात साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है।
0: हाँ, और एक और ज़रूरी बात कि दोस्तों आप अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत कीजिए। आपकी अपनी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि उसी इंसान से है जो कल आप थे।
1: बिल्कुल, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी सफलताओं की खुशी मनाइए और हर अनुभव से कुछ नया सीखिए।
0: क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी जीतने में नहीं बल्कि हर मुश्किल के बाद मुस्कुराकर दोबारा आगे बढ़ने में है।
1: याद रखिए दोस्तों, मजबूत शरीर आपको मंजिल तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन मजबूत मन आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है।
0: तो दोस्तों अपने मन का ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर आगे कदम बढ़ाइए। चलिए दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं फिल्म वेकअप सिट से यह गीत जिसे लिया गया है क्लिंटन कैजो के आवाज़ में।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: वेलकम बैक दोस्तों, और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ यानी फीफा विश्व कप 2026 की। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हर मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है। अब जरा सी चूक भी किसी टीम का विश्व कप जीतने का सपना पूरी तरह तोड़ सकती है।
3: बिल्कुल, पिछले दो दिनों में हमें कई शानदार मुकाबले देखने को मिले। 28 जून को अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर अपनी शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से मात देकर अपनी अभियान को और ज्यादा मजबूत किया।
2: इसके अलावा क्रोएशिया ने घाना के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं डीआर कांगो और उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर सभी को चौंका दिया। दूसरी ओर पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जबकि अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच 3-3 का हाई स्कोरिंग मुकाबला दर्शकों के लिए किसी थ्रिलर से कम नहीं था।
3: नॉकआउट चरण में भी काफी अच्छी और रोमांचक शुरुआत हुई, जहां पे कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मैच में दोनों ही टीमों ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन कनाडा को मिले मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया।
2: और आज भी फुटबॉल प्रेमियों के लिए शानदार मुकाबले होने वाले हैं। सबसे ज्यादा नजरें ब्राजील और जापान के बीच होने वाले राउंड ऑफ 32 मैच पर रहेंगी। इसके अलावा जर्मनी और पैराग्वे, साथ ही नीदरलैंड और मोरक्को के बीच भी दिलचस्प मुकाबले खेले जाएंगे।
3: यानी फीफा विश्व कप अब आगे और ज्यादा रोमांच से भरा होने वाला है। हर जीत टीम को ट्रॉफी के और ज्यादा करीब लेके जाएगी, वहीं हर हार विश्व कप का सफर कई टीमों के लिए वहीं पे खत्म कर देगी। ऐसे में आने वाले दिन काफी रोमांच से भरपूर होने वाले हैं दोस्तों।
2: तो अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो इन मुकाबलों पर अपनी नजर बनाए रखिए, गड़ाई रखिए, क्योंकि अब हर मैच इतिहास लिख सकता है। फिलहाल सुनते हैं एक जरूरी संदेश और उसके बाद आपको सुनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक रॉक ऑन फिल्म से फरहान अख्तर और रमन महादेवन की आवाज में।
0: The UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: दोस्तों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का।
1: मगर जाने से पहले दोस्तों, आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, पिन कोड है 248001, यानी 248001। इसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731, यानी कि 7088000731।
0: साथ ही दोस्तों, आप ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश व सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com।
1: इसी के साथ मुझे यानी रितिका
0: और मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है पर्वतांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम सुनने द्वारा सभी भाई बंधु थे विनय ध्यानिक छोड़ बटकी नमस्कार से बसों
1: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाली मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ आशीष चौहान सबों का स्वागत करूं और स्वागत के साथ ही श्री महासु जी महाराज से ही प्रार्थना करूं कि हमारे जो इच्छे भी श्रोता है से सभी राज्य खुशी चाहिए रहे।
0: बिल्कुल हम भी कामना करदा कि हमारा सभी सुनदरा राज्य खुशी जख भी छिन्न आजकल चाहे छुट्टियों में ना उना दौड़ना छिन्न लेकिन अगर यात्रा में छिन्न तब भी क्योंकि यात्रा मंगलमय हो और घर बूण जख भी छिन्न स्वस्थ रहें सानंद रहे। आज एक खुशी की बात हम कौन भी
1: जी
0: आज हमारे स्थापना दिवस छे और ठीक 2017 दिन आज क्यों छे 29 जून आकाशवाणी देहरादून ना अपन प्रसारण की यात्रा शुरू करी और एक ही इनी अनंत यात्रा जखम के हम 9 साल का पुरानी नहीं पता नहीं चल।
1: जी बिल्कुल और या तो न पता चला काई की जो हमारे सुन दे वाले त्यों का जो अमुक प्यार मिला इचे सालों में जी सभी बजाई अनमोल है अमुक हेतु स्थापना दिवस है।
0: अच्छा आशीष जी,
1: जी
0: एक तरफ देखा यू एक कदा संयोग छे
1: जी
0: कि एक तरफ आकाशवाणी का 90 साल और एक तरफ आकाशवाणी देहरादून का 9 साल
1: जी बिल्कुल
0: है ना। तो एक बहुत बड़ो हमारे वास्ता एक बोले जब पड़ाव छे जखमा हम थे देखो कि हमन 9 सालों में क्या कही और अभी क्या करे जान छे। यू 9 सालों की उपलब्धि में अगर हम देख दें आशीष जी तो हमन अपना छक एक श्रोता कमा दे
1: जी बिल्कुल
0: चू जख ही रहा वो इन मोट मोट कही कि साल भर तू तो बताने में लाग क्या भाई आकाशवाणी देहरादून कार्यक्रम हूं बैठ गया लोग बोलते ग्राम जगह सुनता छाया बल अरे मिल बल छाया ना अभी भी छे पहला आकाशवाणी नजीबाद बटके और अब देहरादून बटके। और ये का अलावा हमन आकाशवाणी का ये पूरा 9 साल का अपन यात्रा काल में देखा हमन अपने आंचलिक बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी में समाचार बुलेटिन की भी शुरुआत कर है ना। ये सब हम बड़ू पड़ाव मंदा और ये का अलावा हमन अपना श्रोताओं से नजदीकी बनाने का खातिर कतेदा हमन बड़ा बड़ा कार्यक्रम श्रोताओं का आमंत्रित श्रोताओं का बीच में जाग भी करें।
1: जी बिल्कुल सही बात है और ऐसे दूर जाय करी हर क्षेत्र मुझ हम कोशिश करूँ कि हमारे जो बिल्कुल दूर दराज पिथौरागढ़ मुझोला बेटी या फिर हमसे जी बात बोलो जे जौनसार मुझोला बेटी हम तई की कोशिश करो कि हम तई के तब हर तसी आदमी स्टोक शोक में पहुंची जो बिल्कुल पहाड़ों में बेटी है जो बेट न सो पहले जसका तना रेडिया एला भी चुंगी तई के तो काम सोच पहुंचा एला भी
0: अभी देखा हम मोरी सांकरी तक पहुंच गए वही से पहले हम घेस देवाल क्षेत्र में पहुंचा हिमनी तक पहुंचा तो हम चो छोड़ी दौड़ना छुआ कोशिश करना छुआ कि अपन उत्तराखंड का हर कोण तक हम पहुंच जुआ और श्रोताओं तक पहुंच बनाने में सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही ना बल्कि हमारे अपनी उपस्थिति भी यानी हम स्थल रिकॉर्डिंग का जो भी कार्यक्रम आप तक पहुंचाना वो हमारे वास्ते एक इतिहास बन जान। अब तक हजारों गांव हजारों स्कूल और कुछ नहीं कतनाम मन की कुछ गांव का लोग सभीों से मिला और तो और इतना ही ना बल्कि हमने देखा कि जितना भी देवस्थान छन चाहे वो सुरकंडा हो कुंजापुरी हो धारी देवी हो बद्रीनाथ हो केदारनाथ है
1: जी जी
0: ये भी एक इतिहास कि यूं ही 9 सालों में आशीष जी हमन ये शुरुआत पिछले साल से शुरू कर कि हम चर धामों का सीधा प्रसारण अपना सुनदरों तक पहुंचाए हमन।
1: जी बिल्कुल और यही उपलब्धि अमुक तबशो की मिली काई की जो हमारे सुनने वाले त्यू ही अमुक ऐसा प्यार देना तो भी हमारे अंदर भी ऐसा जुनून हो कि हम जो कोई के शो को पहुंची और यूं के बिना यह संभव आती ना था।
0: बिल्कुल बिल्कुल और कतना ही हमारा इना कलाकार वार्ताकार साहित्यकार रहे जो उनके अपने सेवाओं अपनी रचनाओं से अपने साहित्य से हमारे कार्यक्रम और चार चांद लगे तो उस सभी कलाकार वार्ताकार भी बधाई का पात्र छन। इतना ही ना हमन ये केंद्र पर एक कम समय में जो अपना लोक कलाकारों का खातिर स्वर परीक्षाएं होंदी ना
1: जी
0: ऊंक भी आयोजन कर और कुजनी कतना चट लगा दिया हमन कलाकारों का
1: जी।
0: तो आज भी हमारे पास गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी रुहेलखंडी कुजनी कतना कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त छ जय मा की पुराना भी और नए कलाकार भी
1: जी
0: एथरेन। और आप तो क्या लगत कि यूं 9 सालों में हमन क्या क्या कर दिया बड़ा बड़ा आयोजन छ ना दादा
1: जी
0: चाहे वो हमारे ओली विंटर गेम्स हुई यूं था भी हमन कवरेज दिया
1: कवरेज
0: और ये का अलावा जन के मन बताया कि भाई चार धामों का कपाट खोलना पड़ता हम कर दाई छुआ भारतीय सैन्य अकादमी के जो पासिंग आउट परेड थी वो एक सीधो प्रसारण हम देना तो हम अपन छोड़ बटे तो पूरी कोशिश करना छुआ। और इतना ही ना प्रधानमंत्री हुई राष्ट्रपति हुई या कोई बड़ो व्यक्ति अगर उत्तराखंड आनो चाहे जदगदा आनो चाहे वो एक भी हमन सीधा सजीव प्रसारण करे
1: जी बिल्कुल। और दादा ये ब्लॉग जो बात ले थी सही करी हम संगीत की तो हम ऐसे रहो कि जो हमारे क्षेत्र में जैसे गाँव का कोई गीत गाँव था तो सिख व्याम आकाशवाणी के माध्यम से एक मंच देना कि भाई एत के आओ और जो है तुम जो दूर दूर तक लोग सुन दे, तो या भी एक जो कोई की सीमित अपने गाँव तक सब भी एत के आई करी जो हमसे बोलो कि जो संगीत की परीक्षाओं से ही तो तुम जो पास करो तो सिख जो है बजाई दूर दूर के लोग सुनो, या भी एक बजाई बड़ा प्लेटफॉर्म ही समझो
0: बिल्कुल बहुत बड़ो मंच। अच्छा एक बात और उपलब्धियों में जब हम देख दें तो मोबाइल ऐप पर जब बटक हम है ना तब बटक की आकाशवाणी देहरादून की पहुंच जो है वो एक सीमित दायरा छोड़ी की और पूरा अखिल ब्रह्मांड तक पहुंच है ना। आप जख नेट च इंटरनेट च आप लंदन में बैठे छन, स्विट्जरलैंड बैठे छन, जापान में बैठे छन, कखी भी बैठे आप हमारा कार्यक्रम सुनना छन, तो हमारे वास्ते ये भी एक नए तकनीक और सुविधाओं का दगड़ी, संचार क्रांति का दगड़ी, आकाशवाणी लगातार खुट से खुट मिलाणु छ और एथर बढ़नु छ। तो आज का दिन पर बहुत बहुत शुभकामना हमारा सभी श्रोताओं था और वहां पर कुटुंबदारी था तो चाहिए
1: पूरे परिवार।
0: आज एक कार्यक्रम बाबत भी बताऊंगा कि आज एक गढ़वेल कविता पाठ आप तक पहुंचोला हम कवि होला श्री जयंती वल्लभ मलासी ठीक। और ये के अलावा गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी गीत छन दगड़ में खारी हूं रंतर है बार शुरुआत कर मकान आपन
1: जी शुरुआत करो हम जौन सारी गीत से और आओ सुनो बहादुर सिंह के स्वर मुझे जौन सारी गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
3: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
3: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
3: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
5: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
6: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
7: श्रोताओं, अभी तो सुनिए आप लोगों भी बहादुर सिंह के स्वर मुझे चौन सारी गीत और तत की आगे त्रेबार
8: और रेबार आज और भी सुनो लो आप तक लगे खा रहे हूँ ना हमारे पास है। लेकिन अब बात गीत कविताओं की कर दें है ना, गीत तो होगी अब कब तक बात आनी चे। और आज का हमारा आमंत्रित जो कवि छन वो छन डॉक्टर जयंती बल्लभ मलासी, उनको कविता पाठ सुन ला हम घड़े में। लेकिन वैसे पहले दुई छुई अब मट मट के कि जन्म पहले भी बना चाहे स्कूल खोलने वाले है ना विद्यार्थियों को क्या बना आप झोला देखा बस था छिन धरे ओ ककरोच चलाया हूँ का आजकल
7: और स्कूल लाड़कोटी को ही ना लागू खुली बल्कि जो माता पिता है हमारे अभिभावक है त्यों को भी स्कूल खोली लागो त्यों के साथ जो है त्यों भी पूरी तैयारी पढ़ो करनी। हम जब देखो है तो जो हमारे इजी बाबा है सो आजकल छोटी मुझ को त्यों भी राहत थी पर जलाई लाड़कोटी के स्कूल शुरू हो तो सबसे जो आगाशी से हमारी माँ है सो रात ही की 4-5 बजे जो ही करी अमुक तैयार करो जो नौकरी वाले थे नौकरी का तो करो तैयार जो स्कूल वाले थे उनकी स्कूल आगे तो सब कहीं है स्कूल है।
8: और एक बात और छे अब जब दिन कम रहे दिन ने तो तब हूं खोजा खोज
7: जी
8: मामी मजू तू नीच है ना मी पेंशन नीच यार बस तो कुछ आने तो चिरे गया अब बेकार हो गए नए दिल आओ में था तो ये जिद अब शुरू हो गई है ना ये कैम कुर्ता नीच तो कैम सुला रही नीच है ना। उन तो आप देखा कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था चो उखमा किताब भी आप तक मुफ्त मिलना चन आप तक ड्रेस भी आप तक मुफ्त मिलनी च और खाना खुन तो आप भाप भी मिलत है ना। तो वे का बाद भी अगर ठस को लगना चाहो कि भाई कन खुलो लिया स्कूल तब तो भाई विद्यार्थियों ठीक बात नहीं है। आपन अपन छुट्टियों को भरपूर आनंद ले और हम पैथ निराह हम आपक दगड़ू कार च आप तक किलकारी बराबर यूं छुट्टियों में भी सुने हाँ हाँ इन नावला नहीं सुना तो जग जग गर्मियों की छुट्टी नहीं होना हम यही क्षेत्र में चल जाना कि जग स्कूल लगे रहने तो जनके के हमारे जो बच्चों कार्यक्रम से किलकारी वो बजन हो रहा बच्चा सुनना रहे अपने छुट्टियों में भी आनंद लेना रहे तो अब इन कर दें कि कार्यक्रम में गड़वल कविता पाठ सुन दा कवि छन श्री जयंती बल्लभ मलासी।
9: अपनी पहली रचना बचनो छो शीर्षक च बरख द महीना

धरती नहे की तरपंड बनी जांदी, धरती नहे की तरपंड बनी जांदी, हरियाली जगह जोगों चारे दिशों फैले रोंदी, हरियाली जगह जगों

0: குதரதன கனா ஹரியா ரங்கனா டாதி போட்டி சஜேனி, குதரதன கனா ஹரியா ரங்கனா டாதி போட்டி சஜேனி, சபி ஜீவோ கோ ஜீனா கா ஆசரா பணேனி, சபி ஜீவோ கோ ஜீனா கா ஆசரா பணேனி, ஆசரா பணேனி, டாதி போட்டியும் பச்சோலா அர கூப லகோலா, டாதி போட்டியும் பச்சோலா அர கூப லகோலா, ஏரா பாரு ஹரேக் மன் கித்தே பொச்சோலா, மன் கித்தே பொச்சோலா, ஏரே பாரு ஹரேக் மன் கித்தே பொச்சோலா, மன் கித்தே பொச்சோலா. மேரி ஹேங்கி ரச்சனா ரேவார் கரோமா, சீர்ஷக் ஜீவனோ ஆதார், பூணோ பாணி தர்த்தி தேந்த மனுக்கோ தே சாரோ, பூணோ பாணி தர்த்தி தேந்த மனுக்கோ தே சாரோ, முன்னமா சஜுணோ சோ ஹிமாலய பியாரோ ஹி பியாரோ, முன்னமா சஜுணோ சோ ஹிமாலய பியாரோ ஹி பியாரோ, பியாரோ ஹி பியாரோ, ஜிந்தகி ஜபர்தஸ்த் ஹர் டைம் சன் ஈ சபி ஜீவன் கி ஜரூரத் ஹர் டைம் பர் சன் ஈ சபி, ரயாம் பச்சா ராலா ஜப அன் பி மிலலோ தபி, ரயாம் பச்சா ராலா ஜப அன் பி மிலலோ தபி, அகர் ஜீவன் டீக் டாக் ரக்னத் போண் பாணி தர்த்தி அர் ஹிமாலய பச்சோண், அகர் ஜீவன் டீக் டாக் ரக்ன தோ போண் பாணி தர்த்தி அர் ஹிமாலய பச்சோண், ஜீவன் மா குஷி ஆந்தி ராவ பணே கி ரக்கோண் தோ, அக்னே கி சுவாலி தே பியா பாத் பத்தோண், அக்னே கி சுவாலி தே பியா பாத் பத்தோண், பாத் பத்தோண், போண் பாணி தர்த்தி தேந்தா மன்கு தே சாரோ, முன்னமா சஜுணோ சு ஹிமாலய பியாரோ ஹி பியாரோ, பியாரோ ஹி பியாரோ.
1: ஸ்ரோதாவும் இவ்வளோ தான் ஆப் லோகும் சுணி கவிதா பாட் கடவாடி மஞ்ச் ஸ்ரீ ஜெயந்தி வல்லப் மலாசி சே.
2: तो उम्मीद चुके आप थे यो गढ़वल कविता पाठ पसंद आया होलो, और एक दा फिर हम अपना तमाम साहित्यकारों थे, रचनाकारों थे, कलाकारों थे, गीतांग वादक कलाकार जितना भी हमारा आकाशवाणी से जुड़ा छिन लोग, ऊँ थे साधुवाद दूला, धन्यवाद दूला कि उनकी रचनाओं से, उनकी कहानियों से, उनकी वार्ताओं से, उनकी मुखाभेंट से हमारा जो लोक गायक छिन उनसे एक से एक भला गीत गाय के उन हमारे जो हमारे पछाण छिन कि हम अपने बोली भाषा का खातिर काम करना, हम अपने लोक संगीत का खातिर काम करना, वे माँ उनको भी बड़ो योगदान,
1: बिल्कुल सही बात.
2: और ये योगदान की अपेक्षा हम ये कहना कि भाई अगर आप भी गढ़वली कुमाऊनी जौनसारी में कविता पाठ लिख दिन, कविता कर दिन, कहानी लिख दिन, वार्ता लिख दिन, तो आप जरूर आकाशवाणी से संपर्क करा. ईमेल पर ही आप हमते अपना आलेख भेज सकते हैं. अगर ईमेल पर नहीं भेजना तो साधारण डाक से अपन जो आलेख वे तो हम तक पहुँचा दें. दुया पता हम आप तो बताना चाहूँ, लेकिन आप भी शामिल छन, हाँ आप था भी सादर आमंत्रण करना चाहूँ. जरे से एक प्रक्रिया च वही तो पार करी कि आप सीधा अपन कविता पाठ, अपन कहानी वार्ता प्रसारित कर सकते हैं. तो पहले तो जो हमार ईमेल को पता चो बता हमारे दगड़ा
1: से हमारा चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com.
2: और अगर साधारण डाक से आप भेजना चाहना छे तो हमारा पता छे कार्यक्रम ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001. तो भिंड शून्य तो नहीं लागे हो गए ना पूरा कते बढ़ा दिन, लेकिन हमारा श्रोता बहुत होशियार छे, तो आजकल जमन में खटो बार गूगल बड़े पूछ देने क्या देहरादून को पिन नंबर तो जितना सुविधा होना चाहिए उतना हम और स्वयं खुलेगी वहाँ. और अपन दिमाग को इस्तेमाल हम कम करना चाहूंगा
1: जी,
2: नहीं तो रचनात्मकता खत्म हो गया, सृजनता जो चाहे हमारे सृजनशीलता वो भी खत्म हो गया, कि जो सब कुछ ये लिखा ना हमारे गूगल बाडल तो हमन क्यों कान कुछ
1: जी. आजकल तो ध्यान जी एक चीज ऐसी रही फोन ले दी हमारे जो नरेंद्र भाई टोडे आजकल तीनों का इतवार दसवीं के एग्जाम थे, तब चैट जीपीटी नहीं पहुंचो कि चैट जीपीटी मेरे तुम्हारे कोई नंबर आ दे बताओ जी इसमें चीज है
2: क्या बात है. तो भाई सब कुछ नहीं, वो एक भरस रहे हैं हाँ, अब पर भी कुछ करुण च है ना, पढ़ुण तामन च। तो कार्यक्रम में आवा, अब एक हैं को गीत सुन दा
1: जी।
2: जी सुना
1: श्रोताओं अब सुनो हम जो है कड़वाली गीत नरेंद्र सिंह नेगी के स्वर मुझ।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेविड CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं शर्ते लागू
4: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25%

0: And Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at ubes.ac.in.
1: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
2: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
1: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
2: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
1: और परिणाम?
2: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
1: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
3: फ्रस्ट्रेशन बाइक के एक्सीलेटर पर क्यों?
4: यार, 12वीं के बाद एडमिशन कहाँ लें? ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ करियर सच में बने।
3: मैंने तो चुन लिया राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून। 40+ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी और शानदार अवसर। अप्लाई नाउ admission@rbbsu.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8043541070।
5: सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। सफलता के कदम सुभारती के साथ।
6: रैबारों का दगड़ी, आपन नरेंद्र सिंह नेगी का स्वरमा गीत सुन और आप मट मट कही की बस गाल का दिन शुरू होला। अगर पुड़ जाल बरखात तो डरायण तो खूब च है ना, भिड़भड़ाट गिड़भड़ाट तो ही ऊंचे गांव मचली ऊंचे बदल सड़क बदलनी ऊंचे, लेकिन लेकिन बरखा नहीं होनी चे भल कही के गर्म बिजा हुई
7: जी।
6: ये खुणी बना चुना जलवायु परिवर्तन, और अब 1 जुलाई बटे की और 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन करे जाला। किले वृक्षारोपण का खातिर सबसे भलो बगत चुबल।
7: बिल्कुल, और हम सब जो है जब हमारा जैसा वन महोत्सव मना हुआ है तो कोशिश चाहिए करूँ की सोबिया जो है एक बोट जम लाओ है और लाई की तत् की तो भी देखभाल भी करनी है। की महोत्सव तला मनाई देना लाई तो हम देख मई नाती
6: अगर तो बराबर लाखों लगा दे लोगों पर नहीं कहना तो हम डाल जरूर लगवा, एक लगवा पर वो एक देख रेख जरूर करा जिंदो रहने चाहिए ना डाल, तभी तो डाल बोले जा लेता
7: जी। बिल्कुल,
6: आवा कार्यक्रम में थोड़ा बढ़ना फिर आप तक गीत सुना
7: आओ। सुनो कुमाऊनी गीत जगत सिंह धपोला के स्वर मुझे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: रविंद्र ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी, अधिकार भी।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: श्रोताओं अभी लेते सुनिए आप लोगों रेबार और रेबार की आगे लो तो सुनिए कुमाऊनी गीत जगत सिंह दपोला के स्वर में।
7: तो रंत रबारों का दगड़ गीत भी हुई हमार छुईबद भी हुई और आज एक दिन हमार खातिर यादगार छ कि आज आकाशवाणी देहरादून को स्थापना दिवस छ। हमने आप तक पहले भी शुभकामना दी और आप अपन शुभकामनाओं का द्वार खुलिया छन अब बड़ेकरपुर में न तक आप शुभकामना भी देला तो हम बटोल देना। कार्यक्रम अजी बाकी छ आपन कखन जान सुनो रहन हमार कार्यक्रम ये बस सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
8: बड़े दिनों बाद।
9: हाँ यार।
8: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
9: अरे वही अपना 60 रुपया।
8: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
9: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
8: और दूसरा
9: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
8: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
9: एक काम कर फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
10: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
11: हर लेन देन अब है आसान।
12: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व

0: किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति के प्रावधानों से छूट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। कहा, सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कल अतिवृष्टि की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को उनकी असाधारण वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया। ये पुरस्कार आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्कृष्ट साहस का परिचय देने वाले जवानों के साथ साथ विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में उल्लेखनीय बहादुरी दिखाने वाले कर्मियों को भी प्रदान किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलर, मरामतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अस्पतालों का निर्माण करने के साथ ही उन्हें आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षित मानव संसाधन से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
3: मैं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहां लगाई गई है और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर बीमारी में भी अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास देखने से यहाँ पर आगे बढ़े।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज

0: अवत ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी। उन्होंने लोगों से सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा और गति मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता राज्य के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 30 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इको कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए 3 से 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ के देवकटिया ग्राउंड में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: अगस्त को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी, जबकि 5 से 8 अगस्त तक सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण और साक्षात्कार कराया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 69 पदों पर नामांकन किया जाएगा। इनमें सैनिक सामान्य ड्यूटी के 49 पद उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, कलर, कारपेंटर और हाउसकीपर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिनके लिए देश भर के पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी और ऑनलाइन नामांकन के लिए अभ्यर्थी www.130ta.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 99% से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि मतदाता विवरण के डिजिटाइजेशन का कार्य 92% से अधिक पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में यह कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य अधिकांश जिलों में भी 88 से 97% तक डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं का एक बार फिर सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिलों में डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वहां मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की तैयारी शुरू की जाए। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र में आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश ने कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। उन्होंने लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील की। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने रोगियों को आयुर्वेदिक परामर्श और उपचार प्रदान किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज दोपहर झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। वहीं कल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई के लिए देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वस्थ उत्तराखंड ही समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का मुख्य आधार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति के प्रावधानों से छूट देने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। कहा, सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कल अतिवृष्टि की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन अब अगले दिन देखा जाएगा। नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया। अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।

0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
1: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, ग्राम जगत के दूजे पारे मझाऊ आशीष चौहान आप लोगों का फिर स्वागत करूं। और जैसे कि अला देवरे लागी लाग दो कि जो बारिश भी है सही भी ठीक ठाक लगी पड़ी, कोई की बारिश तो कोई की गांव में। श्रोताओं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अला जो है 29 जून ये केवल एक तिथि ना थी, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, लोक जीवन और जनभाव नामक आवाज़ देने वाली एक गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। काई की अला के दोस्त आकाशवाणी देहरादून का स्थापना दिवस भी हमें मनाओ पाए। श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून ही अपने प्रसारण के माध्यम से ना केवल समाचारों के लोगों तक पहुँचा, बल्कि लोक भाषाओं, लोक संगीत, साहित्य, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, युवा प्रतिभाओं और सामाजिक सरोकारों को भी एक सशक्त मंच प्रदान करा। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और लोक कला के संरक्षण एवं संवर्धन में भी आकाशवाणी देहरादून की भूमिका हमेशा उल्लेखनीय रही। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक विश्वसनीय जानकारी पहुँचाणी, नई प्रतिभाओं को अवसर देना और सामाजिक जागरूक बढ़ने के वास्ते हेतु केंद्र पिछले कई वर्षों से अपनी विशिष्ट पहचान राखी बाणी। और ऐसे कारण है कि श्रोताओं के मनेदा आकाशवाणी एला भी विश्वास, आत्मीयता और आपड़ेपण का जो पर्याय है सा बणी है। श्रोताओं, हेतु गौरवपूर्ण अवसर है हमें त्यों सब अधिकारियों को, उद्घोषों को, समाचार वाचकों को और तकनीकी कर्मचारियों को, कलाकारों को और समर्पित श्रद्धाओं के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करो, ज्यों के अथक प्रयास ले आकाशवाणी देहरादून निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित लागी कर दी। श्रोताओं, हमें सभी कामना करो कि आकाशवाणी देहरादून अपनी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनसेवाओं की भावनाओं के साथ आकाशवाणी ज्ञान, संस्कृति, संगीत और सकारात्मक विचारों का प्रकाश हर घर तक पहुँचाऊंदा और उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति के धरोहर एक देश और दुनिया तक पहुँचाने का अपना अमूल्य दायित्व इतु ही प्रकार से निभाऊंदा। और हमें सभी ये जी कामना भी करूँ कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों से जन जन के हृदय तक पहुँचाने वाली सशक्त आवाज़ आकाशवाणी देहरादून अपने स्थापना दिवस नई ऊर्जा और नई उपलब्धियाँ और उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होली। श्रोताओं, समय रही 6:43 और आओ सुनो एक जौनसारी गीत जगत राम वर्मा के स्वर में।

श्रोताओं, इवलो तो सुनिए आप लोगों ही जौन सारे गीत जगत राम वर्मा व साथी के स्वर मुझ। श्रोताओं, हमारा जो आला का कार्यक्रम ग्राम जगत है, शायद ही कहीं समाप्त हो। हम भी दो इजाजत, नमस्कार।

0: पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बीटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में

0: प्रियंका। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन पौड़ी में सहकारिता सप्ताह को शुभारंभ करी। वेली सहकारिता का माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण ते और मजबूती मिलेली। पिथौरागढ़ में 3 अगस्त बिटिन पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिलाओं कर्मियों का वास्ता 6 दिवसीय भर्ती रैली को आयोजन किए जालू। और मौसम विभाग भोल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। ये अवसर पर उन बोली कि ये परियोजनाएं चंपावत का विकास में मील को पत्थर साबित होली।
1: सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहां लगाई गई है और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर बीमारी में भी अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास की गति से यहाँ पर आगे बढ़े।
0: मुख्यमंत्री ने बोली कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति ना बल्कि उत्तराखंड का भविष्य की राजनीति कर दी। उन बोली कि सरकार तुष्टिकरण ना बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर कार्य कर दी। अपना और वाली पीढ़ी को भविष्य सुरक्षित करना कोनी निर्णय लेनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन आज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का 5 वर्ष पूरा होने का अवसर पर राज्य में सहकारिता सप्ताह को शुभारंभ करी। पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम से संबोधित करती डॉ. रावतन बोली कि सहकारिता का माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास से मजबूती मिलेगी। उन लोगों से सहकारिता आंदोलन से जन जन तक पहुंचाने को आह्वान करी। डॉ. रावतन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र से नई दिशा की ओर गति मिली। उन विश्वास व्यक्त करी कि सहकारिता राज्य का विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते पर्यावरण संरक्षण का सतत विकास में नेतृत्व कुणी सेशल का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किए गए। सेशल्स का राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी ते यु प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करी। यु पहली बार जब कैप भारतीय प्रधानमंत्री ते यु सम्मान प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री ने यु सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों ते समर्पित करी। सेशल्स की नेशनल असेंबली ते संबोधित कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने बोली कि भारत इन हिंद महासागर की कल्पना कर दू जग समुद्री सुरक्षा का दगड़ा दगड़ी आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी करीनी। बोर्ड ने बोली कि कक्षा 10वीं का वर्तमान बैच ते नए भाषा नीति को पालन नहीं कन होलू। बोर्ड ने यू भी बोली कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं मां पण वाला वर्तमान बैच का छात्रों ते भी कक्षा 10वीं मां पहुंचने पर तीसरी भाषा मां बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होली। बोर्ड ने बोली कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करे जाली। हरिद्वार का भाद्राबाद स्थित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र में आज बिटिन 3 दिवसीय जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर को शुभारंभ हुए। उद्घाटन सत्र का संबोधित कर दी जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेशन बोली कि आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार की पद्धति नीचे बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को आधार च उन लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील करी। 30 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इको कुमाऊं की तरफा बटी पूर्व सैनिकों और पात्र भूत

0: पूर्व महिला कर्मियों का वास्ता 3/8 अगस्त तक पिथौरागढ़ का देवकटिया ग्राउंड में भर्ती रैली आयोजित किए जाली। एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम का अनुसार 3 अगस्त को अभ्यर्थियों का दस्तावेजों को सत्यापन करे जालू, 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होली, जबकि 5-8 अगस्त तक सफल अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय परीक्षण और साक्षात्कार करे जालू। ई भर्ती का माध्यम से कुल 69 पदों पर नामांकन करे जालू। ये माँ सैनिक सामान्य ड्यूटी का 49 पद उत्तराखण्ड का पूर्व सैनिकों को आरक्षित छन। ये का अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, कलर, कारपेंटर और हाउस कीपर का पदों पर भी भर्ती करे जाली। ये खुणी देश भर का पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सक दिन। भर्ती से संबंधित ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन नामांकन खुणी अभ्यर्थी www.130ta.com पर जानकारी प्राप्त कर सक दिन। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह।
0: चमोली जिला में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान संपन्न हुए गए। अभियान का दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की संयुक्त टीमन उच्च हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता, वनस्पतियों, वन्य जीवों और हिमनदों को अध्ययन कैरी की महत्वपूर्ण आंकड़ा जुटेनी। अध्ययन में हिमालयी थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, साइबेरियन वीजल और पाइको प्रत्यक्ष रूप से दिखेनी, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी रेड फॉक्स, सिरो और हिमालयी मार्टिन की मौजूदगी का अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिलनी। अभियान का दौरान हिमालयी मोनाल, स्नो वॉक, स्नो कॉक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेमर गायर सहित कई दुर्लभ पक्षियों की भी उपस्थिति दर्ज किए गए। ये का अलावा लाइकेन, औषधीय पौधों, कीट पतंगों और जलवायु परिवर्तन का प्रभावों को भी अध्ययन किए गए। अल्मोड़ा में आयोजित 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव को समापन भोल होलू। महोत्सव में राज्य का विभिन्न जिलों का स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प का दगड़ा ही अन्य राज्यों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी प्रदर्शनी लगेगी। कुमाऊं महोत्सव आयोजन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने बोली कि महोत्सव को उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण और प्रचार प्रसार करने का दगड़ा ही स्थानीय कलाकारों ते भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का वास्ता मंच उपलब्ध कराना चाहिए।
2: तो पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, उनको एक मंच प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको हमने जिंदा रखना है। तो इसके लिए छोटे बच्चों सबको भी हम सिखाते भी हैं, मंच भी देते हैं, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्पण के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं उनके क्षेत्र में हो।
0: अब एक नज़र आज का मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का कई हिस्सों में आज दोपहर में खूब जमी के बरखा हुए, जैसे लखू ते भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार औण वाला 2-3 दिनों का दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून का राज्य का कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना च। भोल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी बरखा हो सकती, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बरखा को अनुमान च। विभागन 1 और 2 जुलाई कुणी देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बरखा ते लेके ऑरेंज अलर्ट जारी कैरी, वही राज्य का अन्य सभी जिलों कुणी येलो अलर्ट जारी घोषित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक दो फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन पौड़ी मां सहकारिता सप्ताह को शुभारंभ कैरी। वेली सहकारिता का माध्यम से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण ते और मजबूती मिलेली। पिथौरागढ़ में 3 अगस्त बिटी पूर्व सैनिकों और पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों का वास्ता 6 दिवसीय भर्ती रैली आयोजित किए जाली। और मौसम विभागन भोल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी से बहुत भारी बरखा की संभावना जते। ये कई दगड़ा गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को संतोष फुलारा का नमस्कार। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नियमित रूप से मौसम के अनुसार बोई जाने वाली फसलों के अलावा कृषि और बागवानी सहित अन्य जानकारियां देते हैं। हमारा उद्देश्य किसान साथियों को सामाजिक गतिविधियों और अन्य जानकारियों से भी अवगत कराना है, इसीलिए हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को भी शामिल करते हैं। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में टीकाकरण और नींबू वर्गीय बागों के रोपण के विषय पर। और आज एक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता भी आपके लिए है, जिसमें वन्य जीव संरक्षण एवं उनके महत्व पर हम जानकारी देंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले सुनते हैं जागरूकता संदेश।
1: Yes, classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
6: सुनो, कस्टमर केयर का कॉल आया था, 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं, लिंक से APK डाउनलोड करना है।
7: रुको, ये सही नहीं, स्कैम हो सकता है। APK

0: आपकी कमाई चुराए।
1: अनजान लिंक पर ना करें क्लिक। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 याद रखें। SBI, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: किसान साथियों, संदेश के बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पशुओं में टीकाकरण से जुड़ी हुई जानकारी। देखिए, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बचपन से लेकर बड़े होने तक एक टीका लगाते हैं ना, जैसे पल्स पोलियो का या अन्य चीज़ों का, खसरे का, तो उसी तरीके से हमारे मवेशियों को भी टीकाकरण की आवश्यकता होती है। पशुओं में टीकाकरण होने से उन्हें घातक बीमारियां, जैसे उनमें जो बीमारियां होती हैं, खुरपका, मुंहपका, गलघोटू और लंगड़ी, बुखार जैसे कई समस्याओं और बीमारियों से बचाव और का ये सबसे सुरक्षित तरीका होता है। यह पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होता है। पशुओं को बीमारी फैलने की संभावना लगभग कब होती है? जब ये मौसम बदलता है, उससे 20 से 30 दिन पहले उनको टीका लगाना चाहिए। गाय भैंस के प्रमुख टीके की जानकारी आप अपने पशुओं की प्रजाति और उनकी आयु की जानकारी देकर पशुपालन विभाग से ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे अलग अलग नस्ल की हमारे पशुएं होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको अलग अलग टीके लगते हैं उनके शारीरिक बनावट, उनकी उम्र के हिसाब से। तो कोई टीके ऐसे लगते हैं कि बचपन में लग जाते हैं, एक या दो महीने में, छः महीने में, तो इस हिसाब से आप पशुपालन विभाग में जा करके पूरी जानकारी इकट्ठा करके उसके बाद आप टीका लगवा सकते हैं। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी, बुखार, थनैला रोग जो कई बार देखा जाता है अपने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के मवेशियों में, और ब्रुसेलोसिया, ऐसी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आपके पशुओं को बचाने की आवश्यकता है। देखिए, बचपन में आप इनको नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में स्थिति खतरनाक होगी। आपका पशु कई बार दिखने का अच्छा होगा लेकिन उसका जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है या कई अन्य जो मांस के रूप में जिन्हें आप पाल रहे हैं तो उनमें पर्याप्त मात्रा में चीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए याद रखिए, टीकाकरण आपको बेहद आवश्यक रूप से कराना है। और लेकिन टीकाकरण ही नहीं, हम किसान साथियों को बार बार कहते हैं कि हम जो जानकारी दे रहे हैं उस पर अमल कीजिए, लेकिन जो जानकारी कब लेनी है, उसका लाभ कैसे लेना है, तो आपको विभाग ही बताएगा। टीकाकरण से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान रख देना होगा। केवल पूरी तरीके से स्वस्थ पशुओं को ही टीका लगाना होगा आपको। अगर आपका पशु बीमार है पहले उसको ठीक करवा लीजिए, उसके बाद उसको टीका लगाइए। अगर आपके पशु में आपको लगता है कि कोई बीमारी है, वो गंभीर रूप से बीमारी या सामान्य रूप से उसको बुखार है या अन्य को जो भी बीमारियां हैं वो है, कमज़ोर है या तनावग्रस्त अगर वो किसी चीज़ को लेकर के है, उसका शारीरिक बनावट उसकी थोड़ा सा अस्पष्ट आपको लग रही है, तो उस पर ऐसे पशुओं पर टीके का असर नहीं होता है। तो आप पहले उसको स्वस्थ कर लीजिए, उसको बीमारियाँ क्या है, चोट तो नहीं लगी है, इस तरीके से अगर कोई सिम्टम्स उसको लगते हैं तो आप उसको पहले उसका उपचार कराइए। टीकों को जब आप टीके या तो आप खरीद के लाते हैं या आप पशुपालन से लेते हैं तो ये देख लीजिए कि ठंडे तापमान कोल्ड चेन में रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म में रखा गया है वो ख़राब हो सकते हैं, उसको ना लगाएं। अधिकांश टीके चमड़ी के नीचे लगाए जाते हैं ताकि मांस की गुणवत्ता पर असर न पड़े। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका मवेशी होगा वो स्वस्थ होगा और बचपन में जब समय के अनुसार उसकी उम्र के अनुसार जब टीके लगेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर भी होगा और बड़े होकर उसकी बीमारी भी नहीं होंगी। आपका जो अगर दुधारू पशु है तो उसका दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा, अगर आप मीट और अन्य से उसको पाल रहे हैं तो वो भी अच्छा होगा। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। किसान साथियों, इसी जानकारी के साथ अब समय हो चला एक अल्प विराम का। आइए सुनते हैं लोकगीत।

0: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे रागिनी। और जैसा कि हम कार्यक्रम के शुरुआत में आपको ये बता रहे थे कि आज हम आपके लिए एक विशेष भेंटवार्ता लाए हैं, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि वन्य जीव संरक्षण एवं उसके महत्व विषय पर। वन्य जीव क्यों आवश्यक हैं, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, हमें वन क्यों बचाने चाहिए, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और वन और जीव जंतु हम पर कितना निर्भर हैं और हम उन पर कितने निर्भर हैं, तो इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू पाल, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष फुलारा और आज हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण एवं उनका महत्व विषय पर। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू पाल, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और विषय की गंभीर समझ रखती हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे इस विषय पर, और जो जंगल में जंगली जानवर हैं और मानव के संघर्ष की कई घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है और हम कितने जिम्मेदार हैं संघर्ष के लिए, इस पर हम बात करेंगे। तो मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फुलारा जी आपका।
0: मैम, पहला सवाल आपसे ये है कि वन्य जीव संरक्षण से हम किस तरह से समझें, ये विषय क्या है और इसको हम आम जनता को हम कैसे समझा सकते हैं?
1: वन्य जीव संरक्षण से मतलब है कि स्वस्थ वन्य जीव प्रजातियों या उनकी आबादी को हम बना के रखें, और जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कि मनुष्य भी साथ में रह रहे हैं, जंगली जानवर भी रहेंगे, घास फूस भी रहेगा, वनस्पतियां भी रहेंगी, उन सबको संरक्षित करने या बढ़ाने के लिए और जंगली प्रजातियों और उनकी आवासों की रक्षा करने के लिए ही वन्य जीव संरक्षण को बनाया गया है। वन्य जीवों के लिए प्रमुख खतरे में जैसे कि आवास का, आजकल आप देख रहे हैं कि आवास का विनाश हो रहा है, अति दोहन की वजह से उनकी संख्या कम हो रही है, अवैध शिकार की वजह से उनकी संख्या कम हो रही है, अवैध कटान हो रहा है पेड़ पौधों का, जंगलों का, तो उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, और अवैध वन्य जीव व्यापार भी इसमें शामिल हो रखा है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें वन्य जीव संरक्षण को संरक्षित करना और वन्य प्रजातियों को संरक्षित करना, वनस्पतियों को संरक्षित करना बहुत आवश्यक हो गया, ताकि हम उनके साथ मिलजुल के एक अच्छे इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से बनाते हुए रह सके।
0: हम इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से बना के रख सके, ये आपका कहना है। और किसान साथियों, ये हम लगातार आपको अपने कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि वन्य जीव संरक्षण, जब वन्य जीव होंगे तभी हम होंगे, तभी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते हैं। मैडम, आपसे दूसरा सवाल हमारा ये है कि मानव और वन्य जीव के संबंध को हम किस रूप में दे सकते हैं, आज इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पहले से तो हम रहते थे, साथ रहते थे, सब कुछ था, तो आज ऐसा क्या हो गया कि हम इनके संरक्षण के लिए हमें अभियान चलाने पड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर?
1: देखिए, हम लोग शुरुआत से ही, जब से मानव का अस्तित्व जागृत हुआ है, शुरू हुआ है, तब से ही मानव और वन्य जीव साथ में रहते आए हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी डेली नीड बढ़ती जा रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, वैसे ही मनुष्यों ने अब क्या किया है कि अपने घर परिवार बसाने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए जंगलों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे जंगलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत सारी प्रजातियों का हमने बहुत ज्यादा अति दोहन कर दिया है, बहुत सारी प्रजातियों को हमने उनके घर का जो उनके नेचुरल होम थे उनको हमने तोड़ दिया है, उनको खंडित कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो पशु जो है वो हमारी तरफ को आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले से ही फलदार पौधे बहुत ज्यादा होते थे, खासतौर से हमारे उत्तराखंड में और जगह पे भी ऐसा हो रहा है कि कृषि की जो भूमि है वो कम होती जा रही है और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही आपने देखा होगा कि जंगलों का कटान बहुत ज्यादा हो रहा है, अंधाधुंध तरीके से हो रहा है, बहुत सारी वनस्पतियां भी लुप्त होती जा रही हैं। उसी के साथ जैसे जैसे वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं, घास की संख्या कम हो रही है जंगलों में, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम हो रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी जो जंगली प्रजातियां थी पशुओं की वो भी कम होती जा रही हैं, और जो जानवर है जो उसको जब नहीं मिल रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा आसानी की तरफ को बढ़ते हुए मानव बस्ती की तरफ आ रहा है। तो हम लोगों को यह है कि हमारा तंत्र जो है एक बैलेंस बना रहे, मनुष्य अपनी तरक्की भी करे, उसके साथ साथ मनुष्य को इकोलॉजी को भी साथ में लेते हुए चलना पड़ेगा।
0: हमें इकोलॉजी को बचाते हुए जो मानव है और वन्य जीव है इनको साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा, इनके संरक्षण के लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेगी। डॉक्टर मंजूपाल जी, कई बार हमें ये देखते हैं कि जो आपने कहा हम आवास अपने जंगलों की ओर को जा रहे हैं, हम शहरीकरण कर रहे हैं, तो इसलिए वन्य जीव हमारे वहां आ रहे हैं, हम उनके वहां गए उसके बाद हमारे वो हमारे वहां, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। और ये सच भी है किसान साथियों, हम जब खेती बाती की बात करते हैं या अपने गाँव के विकास की बात करते हैं, तो वाकई में हम कई जगह देखते हैं तो हमने पर्यटन के नाम पर या किसी और काम के नाम पर हमने जंगलों में अपना आवास बना दिया है। तो जैसे गुफाओं में पहले शेर रहता था या गुलदार रहते थे या बाघ रहता था, आज उन गुफाओं को पर्यटन के नाम पर गांव में जो है विकास कर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं जो उस गुफा में रहता था वो गुलदार जो है गांव की ओर आ रहा है। अगला सवाल हमारे लिए है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीव संघर्ष मानव के लिए कितना खतरनाक है, और अगर कोई जंगली जानवर गांव में आकर के नुकसान करता है तो उसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं?
1: देखिए, हमारा 71% भूभाग उत्तराखंड में जो है वो वन का है, तो जैसे बाघ, गुलदार, हाथी, भालू, सांप, ये वन्य जीव पहले से ही खतरे का सबब बने हुए थे। और बंदर, लंगूर, सुअर, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से आर्थिकी की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो आर्थिकी को भी प्रभावित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उससे किसानों की आर्थिकी भी कम हो रही है। हमने अपनी कृषि की भूमि को बढ़ाने के लिए एक तरह से हमने पहले तो बहुत ज्यादा विदोहन किया है, जंगलों का भी, जंगल काटे हैं, उसकी वजह से जो शाकाहारी पशु था वो कम हो गया है, उसकी संख्या भी कम होती जा रही है, पशुपालन भी थोड़ा सा कम हो गया है, लोगों ने पलायन बहुत ज्यादा कर दिया, हमारे उत्तराखंड में पलायन की समस्या बहुत ज्यादा है। जब पलायन हो गया है तो जो कृषि भूमि थी वो बहुत सारी बंजर पड़ी हुई है, और अब क्या है, एक आपने देखा होगा कि लेंटाना बहुत ज्यादा हो गया है, और लोगों में सामूहिक, मैं तो ये भी कहूंगी कि लोगों में सामूहिक कार्य के लिए थोड़ा सा उदासीनता आ गई है। पहले लोग क्या करते थे, अपने घर के आसपास तक सारे में खेती करके रखते थे, तो उस वजह से क्या होता था ना, जो जंगल के जो जानवर थे जैसे लंगूर, बंदर या सुअर और जो हिरन वगैरह भी होते थे, वो अंदर जो जंगल, घना जंगल था, उसी में रहते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या हुआ कि खेती होनी कम हो गई है, जो घर के आसपास भी, लोगों के घरों के आसपास भी, रास्तों में, ग्रामीण क्षेत्रों के रास्तों में सब जगह लेंटाना बना हुआ है, जंगली जानवरों के, शाकाहारी जंगली जानवरों की संख्या कम हो रही है, गुलदार को आसानी से शिकार मिल रहा है, तो क्या हुआ है कि गुलदार इसलिए नजदीक में आ रहा है, नजदीक जब आ रहा है गुलदार को आसान शिकार मिल रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि पालतू पशुओं को भी उत्पादकता उनकी कम हो जा रही है या वो दूध देना बंद कर दे रही है, तो लोग सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं, जंगलों में छोड़ दे रहे हैं, वो भी उसके लिए एक आसान शिकार है, उस वजह से भी जो गुलदार है या फिर बाघ है वो गांव की तरफ आ रहा है, और जब वो गांव की तरफ आ रहा है तो फिर मानव और वन्य जीव का संघर्ष भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अगर हम इस पारिस्थितिकी तंत्र को पहले से ही बना के चलते तो आज इतनी समस्या नहीं आती।
0: कुल मिलाकर के अभी तक की जो चर्चा है उसमें ये समझ में आया है कि वन्य जीव हमारे क्षेत्र में आने के लिए और हमें नुकसान पहुंचाने कम जिम्मेदार है, जबकि उसके लिए हम अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि हम उसके क्षेत्र में गए हैं, हम जंगल में गए हैं, क्योंकि वो तो अपने ही क्षेत्र में घूम रहा है ना। तो ये इसमें हमें समझने की आवश्यकता होगी कि हम जो है जंगल में अतिक्रमण न करें, वन्य जीव संघर्ष तभी रुकेगा जब हम उसके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप वन्य जीव संरक्षण का नियम का पालन नहीं करते हैं, किसी तरीके से उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है?
1: देखिए, वन्य जीव संरक्षण एक नैतिक और व्यवहारिक आवश्यकता हो गई है, और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो सबसे पहले हमारा दायित्व ये होता है कि हम पर्यावरण को स्वस्थ रखें, जैव विविधता को बनाए रखें और भविष्य के लिए भी वन जीवों के आवासों को सुरक्षित करें। इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था, और इसी के साथ साथ अब जो सरकार जो बना रही है, बहुत सारे सरकार ने प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट चला रखा है, बहुत सारे इसी वजह से रामसर साइट्स बनाई गई हैं ताकि लोग जागरूक हों, और सरकार वन्य

0: लोगों की, खासतौर से बाघ के लिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें कहा जा रहा है लिविंग विद लिपर्ड, है ना, बाघ रक्षक ऐसे कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हम बाघ के साथ साथ हम रहना भी सीखें कि किस तरीके से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसी के साथ भी ही रहना भी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि अवैध शिकार और तस्करी को हमें रोकना होगा, वनों का संरक्षण करना होगा ताकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संतुलन बनाए रखे। अवैध शिकार को और व्यापार को रोकने से हम बचेंगे। हमें कानून का पालन सख्ती से करवाना होगा। कानून के पालन का मतलब यह है कि अगर सुअर आ रहा है आपके खेतों में तो आप बायोफेंसिंग लगवाइए, ना कि उसका शिकार कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बायोफेंसिंग है जिस वजह से कि जंगली जानवर या फिर जो ऐसे जानवर जो आपको आर्थिक रूप से या आपकी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, आप उनको रोक सकते हो। जैसे बंदरों का आतंक हो रहा है तो बंदर को मारने की जगह या बंदर को पीड़ित करने की जगह आप उनको पकड़वा सकते हैं आसानी से। वन विभाग जगह ज्यादातर जगहों पे शहरों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि पकड़ के उनका बध्याकरण किया जा रहा है ताकि उनकी हम पॉपुलेशन एक लिमिट तक कंट्रोल कर सके। और वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे आजकल बंदरों के काटने की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है शहरों में, तो वो सब चीजों को हम रोक सके। इसके साथ साथ हमको वनों को भी संरक्षित करना पड़ेगा। वनों को संरक्षित करेंगे, नई प्रजातियों का हम रोपण करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आजकल आपदा आ रही है वो आपदाएं भी थोड़ी कम होंगी, फ्लड भी कम होगा, बारिश का फ्लो भी जो एकदम से जो भूस्खलन हो रहा है कहीं ना कहीं उसका कारण भी वनों का कटान है, तो हम उसको भी रोक पाएंगे। उसको रोकेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनमें पशुओं को भी हानि नहीं होगी। जब उनको जंगल में सब कुछ मिलता रहेगा तो वो हमें शहरों की तरफ को या हमारे गाँव की तरफ को नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो गाँव जंगलों के निकट है वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना कूड़ा प्रबंधन, जो उनका जो अवशिष्ट है और कचरा, तो वो सब भी आप वो जंगल की तरफ को डाल रहे हैं, तो उससे भी पशु बहुत बार जंगली पशु अट्रैक्ट होता है उसको खाने की वजह से और ज्यादा नजदीक आता जाता है। तो हमको वो सब चीजों को भी रोकना होगा। वो सब चीजें हमको अपनी आदत में लाना होगा कि किस तरीके से हमें अपने कचरे का भी प्रबंधन करना है। और इसी के साथ साथ हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना होगा कि किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत है ये हमारी, इसको हमें सहेजना है ताकि हम वन्य जीवों के साथ हमारी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत का हम हिस्सा बनाए रखें और आने वाली अपनी पीढ़ी को एक अच्छी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में रहने के लिए दें।
1: तो किसान साथियों, आज हम बात कर रहे थे वन्य जीव संरक्षण एवं उसका महत्व। आपने चर्चा के दौरान कई बार महत्वपूर्ण बातें सुनी और कुल मिला के हम ये भी समझे कि जो हम पहले से वन्य जीव के साथ रहते थे, हमें पता था कि गुलदार ऐसा होता है या कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अब हमें इस पीढ़ी को नहीं दिख रही हैं। हो सकता है अगर हम लापरवाही बरतेंगे अगली पीढ़ी गुलदार भी ना देखे, तो इसलिए हमें आवश्यक है कि हमारे जो जंगल है उनका संरक्षण करें। वन विभाग द्वारा, तमाम विभागों के द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, औषधि पौधे लगाए जाते हैं, उसमें आप सहभागिता करें। कभी कोई हमला होता है आपके पास जो गुलदार का या अन्य किसी जीव का, उसको करने के बजाय उसके विकल्प पर विचार करें, वन विभाग को सूचित करें उसको, ताकि उसको पकड़ के दोबारा जो है जंगल में छोड़ दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी जो जानकारी है पसंद आई होगी और आप इसका पालन करेंगे। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फुलारा जी।
1: किसान साथियों, ये थे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू पाल। इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी कि कैसे हम एक सामंजस्य बैठा करके वन्य जीवों के साथ अपना जो जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनको उनके संरक्षण की दिशा में हम आगे आ सकते हैं। जब जंगल रहेंगे तभी वन्य जीव भी रहेंगे और तभी हम भी रहेंगे, क्योंकि ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे लिए काम करता है। तो उम्मीद है कि आप जानकारी समझे होंगे और इस पर अमल करेंगे। अब समय हो चला है कि चर्चा को आगे बढ़ाने का। अब बात करते हैं नींबू वर्गी यानी कि साइटस बागों का सफल रोपण। देखिए, उचित मौसम में रोपण किया जाना बेहद आवश्यक है। या तो आप फरवरी मार्च में इसका रोपण करें, या तो फिर अभी अगर उसमें नहीं किया है तो अभी अगर आप करते हैं तो ये भी अच्छा है। जुलाई और अगस्त का महीना, ये दो महीने ऐसे हैं कि जब आप नींबू प्रजाति के जो वर्गी पौधे हैं उनको लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 5x5 मीटर की दूरी पर और 1x1 मीटर के गड्ढे खोद करके उन्हें जैविक खाद और मिट्टी से उसको भर लें। हमेशा प्रमाणित नर्सरी से स्वस्थ एवं अच्छी किस्म के पौधे, जैसे कि आप कागजी पौध को ले सकते हैं, बारहमासी ले सकते हैं। देखिए, सबसे बेहद महत्वपूर्ण क्या होती है बात कि आप जो भी पौधे लगा रहे हैं वो अच्छी नर्सरी से लें, और जहाँ से नर्सरी से नहीं खरीद रहे हैं तो जहाँ से आप ले रहे हैं, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र से ले रहे हैं, चाहे ये नर्सरी से ले रहे हैं छोटी या बड़ी, जो है पौधे अच्छी किस्म के होने चाहिए और उसका चुनाव सही तरीके से करें। नींबू गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह पनपता है, इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि आपका जो क्षेत्र है वो कैसा है। इसके लिए जो है 15°C से 35° तापमान होना आवश्यक है और भरपूर धूप इसको चाहिए। अच्छी जल निकासी होनी चाहिए। और देखिए कोई भी चीज़ लगभग हम करते हैं तो उसमें निकासी, जो पानी निकासी है उसका बेहद खास ध्यान रखना चाहिए। हल्की दोमट मिट्टी हो जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक हो, ये उपयुक्त रहेगा। और जुलाई और अगस्त के महीने में ये महीना सही है, अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। पौधों और कतारों के बीच की दूरी ये बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि जब पौधे बड़े होंगे तो आपस में टकराएंगे और उनकी ग्रोथ, उनकी जो वृद्धि है वो सही तरीके से नहीं होगी। 5 मीटर और 5×5 मीटर की दूरी उसमें अवश्य रखें, ताकि पौधे को फैलने के लिए, हम बार बार कह रहे हैं कि उसको जगह तो दीजिए ना फैलने के लिए, तभी वो फैलेंगे। और कीटों की सुरक्षा और धूप से सुरक्षा, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, तो इसका अगर आप बात का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से जो इस महीने में अगर ये रोपण करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए इसी के साथ अब समय हो चला एक अल्प विराम का, आइए सुनते हैं रागिनी।

किसान साथियों, हमारे कार्यक्रम को आज समाप्त करने का समय हो चला है। आज हमने आपको जानकारी दी कि आपको नींबू वर्गीय पौधों की कैसे लगा सकते हैं, कब आप लगा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में हमने आपको टीकाकरण की जानकारी दी, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप उस पर अमल करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ और आपके सवाल हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 2480001। हम कल फिर नई जानकारियों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए और संतोष पुलारे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए लागत 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करो। कोई सहकारिता के माध्यम किसानों श्रेणियों और गांव क्षेत्रों का आर्थिक विकास सशक्तिकरण के और ही मजबूती मिलल। पिथौरगढ़ में 3 अगस्त है पहली सैनिकों और पात्र भूतपूर्व श्रेणिया कर्मियों के लिए 6 दिनों की भर्ती रैली आयोजित करी जैली। और मौसम विभाग भोर पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिला में कैं बहुत भारी द्योग संभावना जताई छू। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए लागतल 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। यह मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं चंपावतक विकास में मीलक ढूंग साबित होल।
2: योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहां लगाई गई है और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर बीमारी में भी अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास तेजी से यहाँ पर आगे बढ़े।
1: मुख्यमंत्री कहो की उनर सरकार वोट बैंकक राजनीति ना बल्कि उत्तराखंडक भविष्यक राजनीति करे। उन्होंने कहो की सरकार तुष्टिकरणक ना बल्कि संतुष्टिकरणक नीति में काम करबे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करणक लीजिए निर्णय लेने। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल आज सहकारिता मंत्रालय स्थापना 5 साल पूर्व होनक मौके पर राज्य में सहकारिता सप्ताह शुभारंभ करो। पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करण बगत डॉक्टर रावतल कह की सहकारिता के माध्यम किसानों श्रेणियों और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के मजबूती मिलल। उन्होंने मैसो थे सहकारिता आंदोलन के जन जन तक पहुँचने का आह्वान करो। डॉक्टर रावतल कह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र के नई दिशा और गति मिलना। उन्होंने विश्वास जता कि सहकारिता राज्यक विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त बनुण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व लीजी सेसेल्स सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित करी गए। सेसेल्स राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनील प्रधानमंत्री मोदी के यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करी। यह पहली बारी छू जब कैले भारतीय प्रधानमंत्री के यह सम्मान प्रदान करी गई। प्रधानमंत्री यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन है संघर्षरत देशों के समर्पित करी। सेसेल्सक नेशनल असेंबली के संबोधित करण बगत प्रधानमंत्री कहो कि भारत यश हिंद महासागर कल्पना करूं जहां समुद्री सुरक्षा दगड़ आर्थिक समृद्धि ल सुरक्षित हो।
3: मेरी सेसेल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति पर निर्देश जारी करी। बोर्ड कह के कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच के नई भाषा नीति का पालन नहीं करण होल। बोर्ड यौले कह के कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले वर्तमान बैच के छात्रों के कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसर भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहाती। बोर्ड कह के कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीका उपलब्ध कराई जाए। हरिद्वारक बहादराबाद स्थित आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र में आज बटी तीन दिनों के जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविरक शुभारंभ हो। उद्घाटन सत्र के संबोधित करंदा जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी स्वास्तिक सुरेशल को कि आयुर्वेद केवल रोगों के उपचारक पद्धति नाती बल्कि स्वास्थ्य

0: सैनिकों, अर्पात्र, भूतपूर्व श्रेणियां, कर्मियों के लिए जी 3/8 अगस्त तक पिथौरागढ़ देवकटिया मैदान में भर्ती रैली आयोजित करी जाने। एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम के अनुसार 3 अगस्त के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापन करी जाए, 4 अगस्त के शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होली, जबकि 5/8 अगस्त जाने सफल अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण और साक्षात्कार करी जाए। यो भर्ती माध्यम कुल 59 पदों पर नामांकन करी जाए। यह में सैनिक सामान्य ड्यूटी 49 पद, उत्तराखंड पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित छन। यह के अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, क्लर्क, कारपेंटर और हाउस कीपर पदों पर ले भर्ती करी जाली। जैक लीजिए देश भर पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकनन। भर्ती है संबंधित अधिक जानकारी और ऑनलाइन नामांकन के लिए अभ्यर्थी www.130ta.com पर जानकारी प्राप्त कर सकनन। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: चमोली जिला में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित चतुर्थ नंदा देवी जैव विविधता अनुश्रवण दशकीय अभियान संपन्न है गई। अभियान के दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों संयुक्त टीपल उच्च हिमालयी क्षेत्रों की जैव विविधता, वनस्पतियों, वन्य जीवों और हिमनदों का अध्ययन करी महत्वपूर्ण आंकड़ा लय जुटाई। अध्ययन में हिमालयी थार, भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, साइबेरियन वीजर, पाइका प्रत्यक्ष रूप दिखाई दी, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी रेड फॉक्स और हिमालयी मार्टिनक मौजूदगी अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिली। अभियानक दौरान हिमालयी मोनाल, स्नो काक, स्नो पार्टीज, गोल्डन ईगल और लेमर गायर सहित और दुर्लभ पुथिलों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। यह अलावा लाइकेन, औषधीय पौध, कीट पतंगों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ले अध्ययन करी गई। अल्मोड़ में आयोजित 10 दिनों कुमाऊं महोत्सव का समापन भूल हॉल। महोत्सव में राज्य अलग अलग जिलों के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक खाने वाली चीजों और हस्तशिल्पक दगड़ ही अन्य राज्यों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी ले लगाई गई। कुमाऊं महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी को की महोत्सव उद्देश्य प्रदेशक समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण प्रचार प्रसार करना दगड़ ही स्थानीय कलाकारों के अपूर्ण प्रतिभा प्रदर्शित करना के लिए मंच उपलब्ध करूँ छू।
2: कुमाऊं महोत्सव पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, अपने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, उनको एक मंच प्रदान करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी कला संस्कृति, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, उनको हमने जिंदा रखना है। तो इसके लिए छोटे बच्चों सबको भी हम सिखाते भी हैं, मंच भी देते हैं, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्पण के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं उनके क्षेत्र में हो।
0: और अब एक नज़र आजक मौसम पर। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज दोपहर झमाझम द्योलागो जेल मैसों के बहुत ज्यादा गर्मेल राहत मिले। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना छू। भोल, पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं भारी द्यो लाग सकें, जबकि अन्य जिलों में हल्की है मध्यम द्यो अनुमान छू। विभाग 1 और 2 जुलाई के लिए देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी द्यो को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी करी छू। वे राज्य अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित करी गई छू। अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत पौड़ी में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करो। कोई सहकारिता के माध्यम किसानों, श्रेणियों और ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण के और मजबूती मिलल। पिथौरगढ़ में 3 अगस्त है पहली सैनिकों और पात्र भूतपूर्व श्रेणियां कर्मियों के लिए 6 दिवसीय भर्ती रैली आयोजित करी जल। और मौसम विभाग भोल, पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिले में कह बहुत ज्यादा द्योग संभावना जताई छू। यकदगढ़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त हुनी। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान।
4: नमस्कार। देखिए, साधारण भाषा में हम कहें तो हमारी पेशाब की जो नली होती है, जिसको यूरेथ्रा भी कहा जाता है,

0: पाइप की तरह होती है। जब इस नली में किसी चोट या इन्फेक्शन के कारण सिकुड़न आ जाती है तो उसे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहा जाता है, या पेशाब के बहाव को रोक देती है जो आगे चल के किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ICMR और वैश्विक डाटा को देखें तो पुरुषों में मूत्र संबंधी समस्याओं में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक बड़ा कारण है। भारत में हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। वृद्धों में यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है लापरवाही के कारण, या युवाओं में नपुंसकता और क्रोनिक किडनी डिजीज का भी कारण बन जाती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में दो तरह के कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो आंतरिक होता है। इसमें पेशाब के समय पेशाब का प्रेशर रोकना, RO के पानी का प्रयोग करना, अत्यधिक शराब या मिर्च मसालेदार खाने का सेवन करना, इन कारणों से जो हमारा पेशाब रहता है उसका pH जो है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे वो जब बाहर निकलता है शरीर से तो यूरेथ्रा में निरंतर सूजन करता है, जिससे कुछ ही समय में ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो बाहरी रहता है, जिसमें मुख्य जो है पेशाब के मार्ग पे कभी अगर चोट लग गई हो, या किसी कारण से जो हमारा पेशाब का रास्ता है उसमें बार बार कैथेटर डालना पड़े। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जैसे TURP आदि है, और इसके अलावा कुछ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहती हैं जैसे क्लेमाइडिया आदि है, उनकी वजह से बाहरी कारणों से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। हम लक्षणों की बात करें तो पेशाब करते समय दर्द होता है, धार का पतला होना ये एक लक्षण होता है, या फिर पेशाब पूरी तरीके से रुक जाना किसी किसी पेशेंट में ये भी देखने को मिलता है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा रोगी को होती है, और कई बार जो है पेशाब में या फिर वीर्य में खून तक आ जाता है। अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण हो तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आयुर्वेद में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को बिना किसी सर्जरी के केवल दवाओं और परहेज से ठीक कर पाना संभव है। हमारे पास हाल ही में एक स्विट्जरलैंड का पेशेंट आया जो स्वयं में एक मेल नर्सिंग ऑफिसर है। उसने अपने यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए विगत 15 वर्षों में अनेक ऑपरेशन करवाए, किंतु उसकी दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी। पेशाब के लिए दिन में 3 से 4 बार उसे कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे वो काफ़ी परेशान था। उसने इंटरनेट के माध्यम से हमारी वेबसाइट देखकर हमें संपर्क किया और हमने फिर उसका इलाज शुरू किया। आज 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने के इलाज के बाद उसकी सारी दवाएं बंद हो गई हैं। साथ ही साथ उसका पेशाब का फ्लो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। एक दूसरा पहलू ऐसा है कि अक्सर लोग इंटरनेट पढ़ के ये समझते हैं कि आयुर्वेद में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का बहुचर्चित जो कर्म है उत्तर बस्ती इसका एकमात्र उपाय है, लेकिन ये सच नहीं है। उत्तर बस्ती में जो दवा पेशाब की नली से दी जाती है वो बहुत कम समय के लिए यूरेथ्रा में रुकती है, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा कारगर नहीं है। इसके उलट हमारे यहाँ आयुर्वेद औषधियों के जरिए पेशाब की गुणवत्ता को सुधारा जाता है, क्योंकि यूरेथ्रा हमेशा पेशाब के संपर्क में रहती है, तो पेशाब से निकलने वाली आयुर्वेद दवाएं यूरेथ्रा के स्कार टिश्यू या जो घाव का निशान होता है उसको धीरे धीरे रिपेयर कर देती है, और यूरेथ्रा का जो लचीलापन है वो वापस होके नॉर्मल हो जाता है। ज़रूर पीने के पानी को उबाल कर आधा करें, फिर उसे प्रयोग में लाएं। उबला हुआ जो पानी होता है वो रात को धनिया के बीज को भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में लाभ मिलता है। इसके अलावा खस, जो घास रहती है जो हम कूलर में भी लगाते हैं, उसका शरबत अवेलेबल रहता है, तो गर्मी में खस का शरबत अगर लेते हैं तो उससे पेशाब में होने वाली जलन और पेशाब के मार्ग से होने वाला खून, ये दोनों चीज़ बंद हो सकती है।
1: प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत बचना ए हसीनो। फिल्म से आइए सुनते हैं ये गीत। लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ में विशाल शेखर का संगीत है, अन्विता दत्त के बोल।

लकी आलिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं योशिता पांडे। श्रोताओं, आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्येक सोमवार को प्रसारित किया जाने वाला समसामयिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण, जिसमें हम बात करते हैं राज्य की तमाम समसामयिक घटनाओं की जो आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पूर्ण साक्षरता राज्य बन चुका है। उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य अर्थात फुल्ली लिटरेट स्टेट

0: घोषित किया है और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का छठा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया है। आपको बताते चलें श्रोताओं कि उत्तराखंड से पहले 5 अन्य राज्य हैं जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य होने का दर्जा देश भर में मिजोरम को वर्ष 2025 में मिला। इसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। इसके साथ ही पूर्ण साक्षरता राज्य के रूप में उत्तराखंड छठा राज्य बना। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने के लिए केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किसी राज्य की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक होना आवश्यक है। उत्तराखंड ने इस मानक को पार करते हुए 98.7% साक्षरता दर हासिल की है जो उपलब्धि का आधार बनी। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की साक्षरता दर 83.8% थी जो निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप बढ़कर 2025 में 98.7% हो गई। मात्र 2 वर्षों में लगभग 14.9% की वृद्धि देश में शिक्षा के क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियों में गिनी जा रही है और इस सफलता का श्रेय नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे वयस्कों को पढ़ना लिखना सिखाया गया जो कभी औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़ पाए थे। अभियान में शिक्षा विभाग, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा हजारों स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सरकार के अनुसार राज्य की लगभग 1.23 करोड़ पात्र आबादी में अब केवल लगभग 1.31 लाख लोग ही निरक्षण की श्रेणी में हैं। वृद्धावस्था, गंभीर बीमारी अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण 100% साक्षरता व्यावहारिक रूप से संभव नहीं मानी जाती, इसलिए केंद्र सरकार ने 95% को पूर्ण साक्षरता का मानक निर्धारित किया है। राज्य सरकार का कहना है कि अब अगला लक्ष्य केवल साक्षरता बनाए रखना ही नहीं बल्कि डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि शिक्षा का लाभ सामाजिक और आर्थिक विकास तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि आखिर साक्षरता क्या है। साक्षरता का अर्थ है किसी व्यक्ति की पढ़ने लिखने और सरल गणना, जिसे हम कहते हैं बेसिक न्यूमरेसी, करने की क्षमता। केवल अपना नाम लिख लेना साक्षरता नहीं माना जाता बल्कि व्यक्ति को दैनिक जीवन में आवश्यक लिखित जानकारी को समझने और उसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार साक्षरता के प्रमुख मानक, बुनियादी साक्षरता जिसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी कहते हैं, वो है सरल भाषा पढ़ना, अपना नाम, पता आदि लिखना, सामान्य लिखित जानकारी को समझना, जोड़ घटाव, गुणा और भाग जैसी सरल गणनाएं करना, दैनिक जीवन में पैसों और संख्याओं का उपयोग करना, जीवन कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय और डिजिटल जानकारी का बुनियादी ज्ञान, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, मोबाइल एवं डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाओं का सामान्य उपयोग, सतत शिक्षा जिसे हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं, जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना, पूर्ण साक्षर राज्य फुल लिटरेट स्टेट का मानक कहा जाता है। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार यदि किसी राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की 95% या अधिक आबादी कार्यात्मक रूप से साक्षर हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा सकता है। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आपको बताते चलते हैं कि उत्तराखंड ने मत्स्य पालन, कृषि निर्यात और पर्वतीय आजीविका के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार हिमालयी रेनबो ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक निर्यात नेपाल को किया है। राज्य से 5 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की पहली खेप नेपाल भेजी गई, जो उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र की पहली अंतर्राष्ट्रीय निर्यात उपलब्धि है। रेनबो ट्राउट विश्व की सबसे लोकप्रिय शीत जल मछलियों में से एक है। इसका उत्पादन केवल उन क्षेत्रों में संभव है जहां वर्ष भर स्वच्छ, ठंडा और ऑक्सीजन युक्त जल उपलब्ध हो। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों की प्राकृतिक जलवायु इस मछली के पालन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस पहले निर्यात खेप के लिए ट्राउट मछली का उत्पादन पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र की 3 मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा किया गया। इन क्षेत्रों के मत्स्य पालकों ने आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप मछलियों का उत्पादन किया। निर्यात से पहले मछलियों को अत्याधुनिक कोल्ड चेन व्यवस्था के माध्यम से गुजरात के वेरावल स्थित प्रसंस्करण केंद्र भेजा गया, जहाँ उनका गुणवत्ता परीक्षण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा निर्यात मानकों के अनुसार संरक्षण किया गया। इसके बाद 23 जून 2026 को पहली व्यवसायिक खेप नेपाल के लिए रवाना की गई। राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के मत्स्य पालन इतिहास का स्वर्णिम क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल निर्यात की शुरुआत नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्रों के किसानों और मत्स्य पालकों की मेहनत का सम्मान भी है। उन्होंने बताया कि पहली खेप के निर्यात से 33 स्थानीय मत्स्य पालकों को 23,50,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए कटाई, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन तथा अन्य व्यवस्थाओं हेतु 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई। सरकार आने वाले समय में अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को आधुनिक प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इस सफलता की नींव दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान रखी गई। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उत्तराखंड की ट्राउट मछली को विदेशी खरीदारों के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां इसकी गुणवत्ता और स्वाद को सराहा गया। इसके बाद नेपाल के आयातकों के साथ व्यवसायिक संपर्क स्थापित हुए और पहले निर्यात खेप भेजने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब राज्य सरकार यूरोप, मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी ट्राउट मछली के निर्यात की संभावनाओं पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। अगले चरण में लगभग 30 मीट्रिक टन ट्राउट मछली निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड में मत्स्य पालन क्षेत्र के आंकड़े भी इसकी तेज प्रगति को दर्शाते हैं। वर्ष 2022 में जहां राज्य में 10,011 मत्स्य पालक पंजीकृत थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2026 से 27 में राज्य में कुल 11,805 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 165 करोड़ रुपए आका गया। उत्तराखंड सरकार मत्स्य पालन को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उत्पादन से बाजार तक की पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, मत्स्य बीज, आधुनिक उपकरण, हैचरी विकास, फीड, कोल्ड चेन नेटवर्क, प्रसंस्करण इकाइयों तथा विपणन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड की जलवायु, हिमालयी जल स्रोत और प्राकृतिक वातावरण उच्च गुणवत्ता वाली ट्राउट मछली उत्पादन के लिए देश के सबसे उपयुक्त क्षेत्रों में से एक है और इसके साथ ही साथ इससे स्थानीय किसानों और मत्स्य पालकों की आय बढ़ने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षमता को भी नई गति मिलेगी। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये ज्ञान दर्पण का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
1: ये थी क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं रजनीश कुमार त्रिवेदी की हिंदी वार्ता, जिसका विषय है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभरती हिंदी पत्रकारिता।
2: भारतीय त्योहारों का वैज्ञानिक और भावनात्मक महत्व। हमारे देश में विविध भाषाभाषी और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हर धर्म के अपने अपने पर्व और त्योहार हैं। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान है और हर उत्सव की अपनी विशेषताएं होती हैं। महाकवि कालिदास ने भी माना है कि मनुष्य स्वभाव से ही उत्सव प्रिय होते हैं। हमारी विशेषता रही है कि हम सारे पर्व और त्यौहार भेदभाव भूलकर उत्साहपूर्वक मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाते हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। भारत में त्योहारों और पर्वों को मनाने की एक बड़ी परंपरा है जो देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं और ऐसे प्रमुख त्यौहारों में शामिल है होली, दीपावली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, पोंगल, ओणम, बैसाखी, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, गुरुपर्व, बिहू, हरेला, गणगौर, नुआखाई जैसे त्यौहार, जबकि कुंभ मेला, माघ मेला, छठ पूजा जैसे सांस्कृतिक पर्वों का अपना अलग ही महत्व है। अधिकतर पर्व और त्यौहार किसी न किसी रूप में किसी धर्म और कृषि से संबंधित हैं और भावना के स्तर पर भी हम उनसे गहरे जुड़े होते हैं। उनका भावनात्मक महत्व किसी से छिपा नहीं है। हमारी आस्था और विश्वास भी इन त्यौहारों से जुड़ी हैं। ये पर्व और त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ और उल्लास लाते हैं, इसीलिए हम वर्ष भर इनके आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इनका हमारे जीवन में भावनात्मक और वैज्ञानिक रूप में क्या महत्व है, इस पर हम संक्षेप में विचार करेंगे। होली राग, आग और फाग का त्यौहार है। अपनी दीर्घ परंपरा समेटे होली वासंतिक पर्व है और इसे मदनोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस त्यौहार का संबंध वसंत ऋतु से है, जिसमें प्रकृति का उमंग, उल्लास और उत्साह जनमानस में प्रतिबिंबित होने लगता है। होली विभिन्न आख्यानों और किंवदंतियों से जुड़ी है। मुख्य रूप से होली का संबंध एक पौराणिक घटना से जुड़ा है, जिसमें प्रमुख पात्र भक्त प्रहलाद, दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका हैं। होलिका दहन की कथा से सभी भली भांति अवगत ही हैं। होली जाति और वर्ण निरपेक्ष सार्वजनिक यज्ञ के समान है और गीता के अनुसार यज्ञार्पित करने के बाद जो अन्न बचता है उसे खाने वाले सर्वविध पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक विद्वान के अनुसार होली का पर्व सर्वजन हिताय व्यावहारिक संदेश देता है। होली लोक पर्व है जिसमें सभी की भागीदारी अनिवार्य है। उनके अनुसार होली एक दहन का पर्व है जिसमें धीरे धीरे इकट्ठी की गई सूखी लकड़ियों को जला दिया जाता है। हमारे अंतःकरण और दैनंदिन जीवन व्यवहार में भी जड़ता घर बना लेती है। होली का संदेश है कि वर्ष भर संचित इस प्रकार की जड़ता को राग द्वेष के साथ सूखी लकड़ियों की भांति जला देना चाहिए। होली की ज्वाला में समस्त राग द्वेष वैमनस्य को फूंक कर गले मिलने की आवश्यकता होती है। साथ ही होली मिलन के अवसर पर उम्र में हर छोटे को अपने से बड़े के यहाँ शिष्टाचार पूर्वक मिलने का संस्कार भी देती है। होली रंग का पर्व है और रंग पर्व कहता है कि हृदय को दरिद्र न होने दिया जाए। लोक जीवन की मस्ती का नाम ही होली है। होली रंग और तरंग का पर्व तो है ही, लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व भी है। माना जाता है कि सर्दियों से वसंत ऋतु के संक्रमण काल में पनपने वाले बैक्टीरिया होलिका दहन की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं और होली में जिन हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाता है उनसे शरीर में रक्त संचार और त्वचा को पुनर्जीवित करने में सहायक होते हैं। होली हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। सुगंध और रंग मिलकर शरीर को नवीनता प्रदान करते हैं। माना तो ये भी जाता है कि होली के रंगों से खेलना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक।

0: हो सकता है। रंग अपना प्रभाव डालते हैं और उनका अपना महत्व है। लाल रंग को ऊर्जा और आत्मविश्वास का रंग माना जाता है, जबकि पीले रंग को सकारात्मक और बुद्धिमत्ता का प्रतीक, हरे रंग को आंतरिक शांति का प्रतीक माना गया है, वहीं नीले रंग को सुकून देने वाला रंग कहा गया है। यह तनाव को भी दूर करता है। दीपावली। होली के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है दिवाली या दीपावली। इस त्यौहार के साथ भारतीयों का भावनात्मक, धार्मिक और आस्था का संबंध है। यह हमारा सांस्कृतिक पर्व है। यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का पर्व है। जनमानस में यह लोकोत्सव और धान्योत्सव के रूप में प्रतिष्ठित है। दीपावली ज्योति का पर्व है, लक्ष्मी और गणेश की अर्चना का त्यौहार है, जिसमें मिट्टी का सम्मान और श्रृंगार किया जाता है। दीपावली वह त्यौहार है जो महलों से लेकर झोपड़ी तक समान रूप से सुख समृद्धि का उजाला फैलाता है। वास्तव में ये प्रकाश का पर्व है। जीवन में यदि प्रकाश न हो तो हम अज्ञानता के अंधकार में ही भटकने को विवश हो जाएंगे। दीपावली का अर्थ ही होता है दीपों की पंक्ति। आबाल वृद्ध दीपकों को घर के कोने कोने में रखकर सजाते हैं। मिट्टी से निर्मित दीयों में जो तेल भरा जाता है वह भी मिट्टी की ही उपज होता है। जलते हुए दीप जब इठलाते हैं तब उसका अप्रतिम सौंदर्य सामने आता है। दीपावली हमें वह संदेश देती है जो हमारा सनातन संदेश है। भारत का सनातन संदेश है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, हम अंधकार के पार पहुँचें। इसी अभिप्राय से तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना की जाती है। भगवान राम अंधकार, अन्याय, अत्याचार और अहंकार के प्रतीक लंकापति रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या आगमन की खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या में प्रकाश पुरुष राम का भव्य स्वागत किया गया था। दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाते हैं और कार्तिक की अमावस्या में जलाए गए दीपक अपनी प्रकाशमयी भाषा में कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी लौ है, सुबह जाकर गेहूँ, जौ और चना आदि के खेतों में देखना, उनके नवांकुर हमारी इसी लौ के सहोदर मुस्कराते हुए मिलेंगे। दीपावली में लक्ष्मी पूजन का अपना अलग महत्व है। लक्ष्मी आराधना का पर्व है। किसानों, उद्यमियों में नवीन संचार का करता है उत्साह। साधना के लिए भी कार्तिक अमावस्या की रात बहुत उपयुक्त मानी गई है। हम कह सकते हैं कि दीपावली केवल दीप प्रज्वलन का ही पर्व नहीं है, बल्कि लोकप्रिय संस्कृति, आस्था, कला, लोकगीत, सामाजिक समरसता और जीवन मूल्यों का उत्सव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि त्योहारों के बिना लोक जीवन निरंतर शुष्क हो जाता है। दीपावली लोकप्रिय संस्कृति का जीवंत उत्सव है। वास्तव में दीपावली हमें संकीर्णता, संवादहीनता और विद्वेष की भावनाओं को तिरोहित करना सिखाती है। दीपावली पर्व से पूर्व मृत्यु के देवता यम की पूजा अर्चना की जाती है और उनके नाम का दीपक जलाकर अकाल मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना तथा जीवन प्राप्ति की कामना करने की हमारे यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा रही है। दीपावली का पर्व पांच पर्वों को अपने में समाहित किए हुए है। इसका शुभारंभ धन त्रयोदशी से होता है। जो स्वच्छता का संदेश देता है, इसमें घरों को लीपते पोतते हैं ताकि घरों को कीटाणु मुक्त बनाया जा सके। लेकिन समय के साथ त्रयोदशी का पर्व अब वैभव सूचक बन गया है। इसके बाद नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में भगवान कृष्ण द्वारा किया गया नरकासुर का वध है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व अन्नकूट मनाने की परंपरा चली आ रही है। भैया दूज भी इसी श्रृंखला की कड़ी का पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। दीपावली से पहले विजयादशमी का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रावण पर राम की विजय का पर्व माना जाता है। इस पर्व में रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का देश भर में दहन किया जाता है, अर्थात बुराइयों का दहन किया जाता है। यह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व है। इस पर्व को आयुध पूजन का पर्व भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में सीमोल्लंघन के रूप में मनाने का उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति भी हमारा एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व पूरे भारत में और नेपाल में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में यह पर्व जनवरी माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य दक्षिण से उत्तर दिशा अर्थात उत्तरायण की ओर बढ़ने लगता है। ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार यह अवधि पावन मानी जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से इस पर्व को संपन्नता को समर्पित कहा गया है। समृद्धि लाने के लिए जल, सूर्य और खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। वास्तव में पोंगल किसानों का त्यौहार है और इसे अच्छी फसल की खुशी में मनाया जाता है। पोंगल का भावनात्मक महत्व किसानों के लिए बहुत ज़्यादा है। भारतीय त्यौहारों पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि इनमें भावनात्मक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार भी निहित है। हमारे भारतीय ऋषियों ने जीवन के विविध आयामों को प्रकृति और ब्रह्मांड की गति के साथ जोड़ते हुए ऐसे पर्वों की रचना की जो शरीर, मन, समाज और प्रकृति चारों के संतुलन का साधन बने। यह व्रत पर्व त्यौहार न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, अपितु हमारे जीवन में सकारात्मकता, एकता और समरसता लाते हैं। हमारे जितने भी त्यौहार हैं उनमें एक समान बात मिलती है कि वे उल्लास, प्रसन्नता और खुशियां प्रदान करने वाले हैं। ये पर्व त्यौहार हमें अपने समाज, समुदाय और परिवार से जोड़ते हैं, लोक संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, उसके कारण जीवन में नीरसता आ जाती है, लेकिन ये त्यौहार उस नीरसता से मुक्ति दिलाकर सरसता और उत्साह का संचार करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकतर पर्व और त्यौहार धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, आस्था, विश्वास और परंपरा से जुड़े हैं, तथापि उनके वैज्ञानिक महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसा माना जाता है कि भारतीय पर्व आत्मशुद्धि और ईश्वर साक्षात्कार के साधन हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का सेवन शरीर को उष्मा प्रदान करते हैं। होली मन के विकारों को जलाकर समरसता का प्रतीक बनती है और होली में प्रयुक्त प्राकृतिक रंग त्वचा रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और वहीं दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का महत्व दर्शाती है। इनके अलावा भगवान राम के उच्च आदर्शों और मर्यादा को अपनाने का पाठ भी पढ़ाती है दीपावली। पर्वों और त्यौहारों के अवसर पर रखे जाने वाले करवा चौथ, सावन आदि के व्रत केवल कर्मकांड के प्रतीक नहीं हैं, अपितु उनका वैज्ञानिक आधार और महत्व भी है। ऐसा माना गया है कि संपूर्ण जीवन विज्ञान है। व्रत या उपवास के माध्यम से शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को उपवास का नाम दिया गया है। इसी श्रृंखला में नवरात्रि पर्व में लोग आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों को संचित करने के उद्देश्य से 9 दिनों तक व्रत, संयम, नियम, भजन, पूजन और योग साधना करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे रजनीश कुमार त्रिवेदी की हिंदी वार्ता, जिसका विषय था भारतीय त्योहारों का वैज्ञानिक भावनात्मक महत्व। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाए गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में गाए गीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: सनम रे फिल्म से आप सुन रहे थे गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, संगीत और बोल थे मिथुन के। आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाज़ों में अगला गीत आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी संदेश।
1: Yes, classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's

0: AI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: आइए सुनते हैं अगला गीत आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाज में। संगीत और बोल हैं आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली के।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जॉइन द यूपीएस क्लासरूम बिल्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हार्वर्ड, ओपनएआई, सेल्सफोर्स एंड मोर। चूज फ्रॉम 100+ एआई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एट यूपीएस, इंडियाज एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी। 25% उत्तराखंड डोमिसाइल स्कॉलरशिप। एप्लीकेशंस क्लोज 30th June। अप्लाई नाउ एट upes.ac.in।
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June.

0: Apply now at ubes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: वो लम्हे फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत केके की आवाज़ में। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

0: केके के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
4: Applications launch is going to play a very important role.
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
4: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
6: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
7: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
6: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
9: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
10: On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeen, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
9: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. According to the Finance Ministry, the additional investment will be used for setting up of NIIF's second infrastructure-focused fund, which shall be the successor to its first flagship fund with this mandate. NIIF is India's sovereign anchored fund, professionally run and managed by National Investment and Infrastructure Fund Limited. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved nearly three-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan through three underground pipelines from the next month to October. Mr. Shah noted that the framework of this agreement will stand as a dispute-free agreement for many decades to come. Defence Minister Rajnath Singh today released the Delegation of Financial Powers to DRDO DFP 2026 to enhance efficiency, accountability and timely execution of strategic research and development projects in New Delhi. On the occasion, Mr. Singh said that the DFP 2026 will facilitate faster production and induction of systems, platforms and technologies emerging from the research and development ecosystem into the defence forces. The Defence Minister said the new framework will strengthen collaboration between industry and academia, boost self-reliance in defence technologies and enhance national defence preparedness. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, DRDO Chairman Samir B. Kamath and other senior officials were present at the event. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda today launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarthi chatbot, Ayushman app, eSushrut clinic, National Health Claims Exchange and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. The Health Minister addressed the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today.
4: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country. And incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare.
9: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly today. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for anti-social activities, which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. In the Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972 has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. Offences under these two bills have been brought under Bharatiya Nyaya Samhita and Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. The Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle or EV policy. Set for a phased four-year rollout starting from the 1st of next month, the ambitious framework commits a massive fiscal outlay of 15,000 crore rupees to completely transition the national capital towards zero-emission transit by 31st of March 2030. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the policy focuses entirely on electric vehicles, specifically zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city for the benefit of its residents.
11: We are very optimistic that Delhi's EV policy 2026 will prove to be a transformative and revolutionary policy. It will not only provide the state with a cleaner mode of transportation, but will also position Delhi as the nation's leader in sustainable, affordable and future-ready transportation.
9: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom. Mr. Goyal met the Development Minister of Greece, Takis Theodorikakos, today. Mr. Goyal said they discussed strengthening the India-Greece economic partnership through greater trade, investment, industrial cooperation and resilient supply chains. They also explored opportunities to deepen collaboration in manufacturing, startups and emerging technologies. An Indian Army field hospital deployed in earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad has become fully operational. It is providing free round-clock medical services to the people of Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela said an Indian medical team comprising experienced doctors has established a camp at the International La Rinconada racetrack in Caracas. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar tomorrow. Mr. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting and that it would take place in Doha without providing further details on the agenda or level of representation. Iran reacted by shooting down the claim, with Deputy Foreign Minister Qasim Gharibabadi saying that while Tehran's consultations with Qatar are ongoing as usual, reports of technical talks in Doha are not confirmed. Meanwhile, direct passenger flights between the UAE and Iran have resumed after a suspension of several months following the regional conflict that began on 28th of February, signaling the gradual restoration of air links between the two countries. India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Orissa, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Europe continues to experience a record-breaking heat wave, with several countries including Italy, Germany, Poland, Hungary and the Czech Republic recording new temperature highs over the weekend. More than 191 million people in Europe have had to face temperatures of at least 35 degrees Celsius with extreme heat alerts. In Italy, the number of red alert cities in the country continues to increase, with 22 cities put on maximum alert today. Germany, the Czech Republic, Poland and Hungary have also reached record temperatures above 40 degrees Celsius. According to WHO, more than 1,300 deaths across Europe have been linked to extreme heat since June 21st. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% during the last month. Manufacturing as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. Benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. Sensex fell 372 points to close at 76,728. Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. On to sports now. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest ranked side in the ICC Men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. India's under-19 boys team defeated Hong Kong 3-1 in the quarterfinals of the Asian Youth Championships in Bangkok today. This win has assured team of at least a bronze medal and a direct berth in the next year's World Youth Table Tennis Championships. The Indian boys will now take on top seeds China in the semi-final. In US Open badminton, Indian shuttler Kidambi Srikanth secured the silver in the men's singles after facing defeat in the final against Su Li Yang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
12: Spotlight.
13: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on Prime Minister's visit to Seychelles, strengthening maritime and bilateral ties. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs expert, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent.
14: Prime Minister Narendra Modi was on a three-day visit to Seychelles. At the invitation of Dr. Patrick Helmini, President of Republic of Seychelles, Prime Minister participated in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister is the first Indian Prime Minister to attend the Independence Day celebrations in Seychelles. This year also marks the 50 years of the establishment of diplomatic ties between India and Seychelles. To talk more on this, we are now delighted to be joined by Professor Rahul Mishra, International Affairs Expert. Professor Mishra, welcome to Akashvani News.
15: Thank you.
14: Professor Mishra, before we get into the nitty-gritties of the entire visit and the importance of it, I would like to understand from you, how do you see this visit of Prime Minister to Seychelles, and that too at a very crucial time when India and Seychelles, both the countries, are completing 50 years of the diplomatic ties?
15: A crucial time indeed, because India and Seychelles have completed 50 years of their diplomatic relationship and also 50 years of independence of Seychelles. And the very fact that Prime Minister Modi was invited as the guest of honor is a manifestation of fact as to how much trust Seychelles puts in India and how strong and deep-rooted this relationship is. The meeting and Prime Minister's visit happened at a very critical juncture where they not only talked about past 50 years, the glorious 50 years, I would say, in terms of building trust and partnership based on mutual cooperation and sharing of capacities and capabilities benefiting Seychelles in the process, but also the agenda for next 50 years.
14: Prime Minister, in his joint statement with the President of Seychelles, said that both the countries believe that Indian Ocean is a shared home. Its security, sustainability and prosperity are the shared vision and responsibilities of both the countries. And this spirit forms the foundation of Mahasagar vision. So first of all, I would like you to briefly explain this to us and take us through what exactly Vision Mahasagar is. And when we talk about strategy, how important is strategically Seychelles for India?
15: Right, so in 2015, when Sagar Vision was launched, the idea was to ensure security and growth for all in the region. In 2025, after 10 years, when Sagar was upgraded to Mahasagar Vision, it included objectives and the vision of including each every member of Indian Ocean region and wider Indo-Pacific region as a contributor in ensuring a peaceful, inclusive, rules-based order in the region, which is premised on robust cooperation, economic security, non-traditional infrastructure and people-to-people connectivity. So as part of the Mahasagar vision, Seychelles fits very well in India's overall vision for the region. When it comes to security and defense relations, Seychelles, of course, is one of the very important partners for India. Over past few years, we have also developed since 2001 the bilateral exercise, which is called Exercise Lamitier, which means friendship in Creole. begin in 2001, and just this year in March 2026, for the first time, all three wings of Indian Armed Forces and Seychelles Armed Forces participated in that joint exercise. So the overall idea is to enhance the maritime domain awareness of India and its partners, including Seychelles, in the Indian Ocean region, which we know is still infested by many unknowns in the region. Unknown security challenges, non-traditional security challenges, as well as the issues that pertain to day-to-day life of people, which includes piracy, which includes gun running, human trafficking, narcotics. So IUU, which is illegal and underreported fishing, island development program with Seychelles, where India and Seychelles are developing a port facility which will be jointly manned by both India and Seychelles, and that would contribute to enhancing security preparedness and greater maritime domain awareness in the Indian Ocean region.
14: So before we proceed any further, let's first listen to what Prime Minister had to say about maritime security and cooperation between India and Seychelles.
12: Our cooperation in maritime security, capacity building, hydrography and maritime domain awareness reflect our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Albany. We also discussed our shared vision for the future. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
14: Moving ahead, Professor Mishra, I would now like to bring your attention to Prime Minister Narendra Modi was honored with the Guardian of the Blue Horizon Presidential Distinction. The honor has been conferred upon Prime Minister for his green leadership and efforts towards advancing the interests of developing countries and his long-standing commitment towards promoting the blue economy. So this is for the first time that this distinguished honor has also been bestowed. So what are your thoughts on this?
15: I think this is a manifestation of Seychelles. This is a very good example of how Seychelles perceives India and its contribution in ensuring a sustainable region premised on the ideas of blue economy. And blue economy essentially means that we make use of natural resources, sea and maritime resources, in such a way that while our economic growth and infrastructure development takes its usual course, it does not substantially damage the resources, oceanic resources that the region has, and it also contributes to making sure that our carbon footprints and our climate responsibility are also met. So for small island states like Seychelles, carbon justice or climate justice is something that is of great significance. India's contribution in working and partnering with countries in the region on renewable energy resources, on making good, prudent use of oceanic resources through advanced technology and use of new and emerging technologies, is something that has been noticed, acknowledged and appreciated by countries across the region. So giving Prime Minister Modi the award Guardian of the Blue Horizon is really a great example in that regard, which appreciates the contribution that India is making on climate front, on while making these countries, small island nations of Indian Ocean, more advanced economically as well as in terms of infrastructure.
14: Also, the another important gesture by Seychelles for Prime Minister Narendra Modi was an invitation to speak to address the National Assembly. So while speaking in the Seychelles National Assembly, the Prime Minister talked about Seychelles' blue economy and India's technological collaboration with Seychelles. So before moving any further, let's first listen to his words.
12: Long before the blue economy became a part of global discussions, Seychelles was already leading the way. Whether in protecting marine ecosystem or in advancing innovations like blue bonds, your country has helped shape important global conversations. Together, we can build partnership in fisheries, marine science, coastal management, renewable energy and sustainable tourism. India's digital public infrastructure, DPI, had demonstrated how technology can expand opportunity, improve governance, boost financial inclusion and deliver services for hundreds of millions of people. We would be happy to share our experiences and expertise as you pursue your own digital transformation. I am confident that the young people of Seychelles will embrace this opportunity.
14: Professor Mishra, moving ahead, I would now like to draw your attention towards the number of MOUs and agreements that have taken place during this visit by Prime Minister to Seychelles. MOU to implement UPI in Seychelles. So how does it show India's growing digital power?
15: So the MOU between National Payments Corporation of India, NPCI, and International Payments Limited and Central Bank of Seychelles, this will facilitate the deployment of UPI system, the digital payment infrastructure in Seychelles, and which of course will contribute to the ease of doing business and for people to make their payments and to conduct their day-to-day business in a more efficient, in a more hassle-free way. So this indeed is another example of how India's DPI system has come as a major boon to countries in the developing world. And even countries in the developed world are increasingly showing interest in implementing or using India's DPI technology. So I think it is something that will facilitate greater economic cooperation. It will streamline the payment ecosystems. And it also will contribute to making the lives of common people easier, and particularly the tourists who visit Seychelles, Indian tourists who visit Seychelles, or people from Seychelles who intend to visit India.
14: Before moving any further, let's first listen to President of Seychelles' words when he spoke about the special economic package during the joint press statement with Prime Minister Narendra Modi. Let's first listen to what he had to say.
16: On the announcement of the special economic package of $175 million from the government of India, comprising of $125 million in a rupee-denominated line of credit and $50 million in grant assistance. This package will support critical projects in social housing, e-mobility, vocational training, health, defense, and maritime security. These initiatives will create new employment and skill opportunities for our people, especially for our youth.
14: So under this package, the work is underway in different areas. How important is this?
15: See, over past few years, Seychelles has taken a number of developmental initiatives in partnership with India. So priority there is to focus on infrastructure projects that are of great importance, that are urgent in nature, considering the requirements, national development requirements and growth requirements of the country, also in terms of connectivity. So I think umbrella line of credit given to Seychelles, which was announced in February 2026, is a great move. It will contribute to making Seychelles more connected in terms of infrastructure, more advanced in those terms, and also it will facilitate greater coordination between India and Seychelles on not only on

0: फिल्म संगीत में अय्यार अय्यारी फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे सुनिधि चौहान की आवाज में, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
0: अय्यारे फिल्म से ये अगला गीत आप सबकी और संदीप चौहान की आवाज में, रोचक कोहली का संगीत है, मनोज मुंतशर की बोल।

कमीने फिल्म से आप सुन रहे थे गीत रेखा भारद्वाज, सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज़ में। गुलजार की शब्द रचना थी, विशाल भारद्वाज का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एयरलिफ्ट फिल्म से, आवाज़ है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की। अमाल मलिक का संगीत है, गीतकार हैं कुमार।

फिल्म संगीत में टशन फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत। आवाज़ है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विविध कलाकारों के स्वर में गाए भजन। पहला भजन आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के स्वर में गाए भजन। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिव्यानगी का प्यार भरा नमस्कार आदाब। श्रोताओं, अपना पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088-0000-731 पर। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7088-0000-731 पर। तो लिख भेजिए मैसेज में अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश हम तक पहुंची है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, यूपी से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मोताला, महाराष्ट्र से ये मैसेज हम तक पहुंचा है विजय सुरलकर, रतनमाला और गौरी सुरलकर का। इसी के साथ अगला मैसेज है ओसा जिला लातूर से, आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। खैल बाजार पानीपत से ये फरमाइश है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी नानक।

चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। झज्जर हरियाणा से ये फरमाइश है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। आकोट से आप हैं विनायक, श्रीमती मंगला, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबेराव, अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री। बलहा शाह से ये फरमाइश सूरज, प्राची और एकलव्य की। गांव चौलादा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव हरिडू चांडिल झारखंड से ये फरमाइश है तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा, मनमोहिनी, दीनबंधु। और जलालाबाद वेस्ट से ये मैसेज हम तक पहुंचा है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। सुल्तानपुर यूपी से आप हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्य सिंह और अविरल सिंह। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आन मिलो सजना फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से आप हैं, महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। बीजना मुरादाबाद से ये फरमाइश है। राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान की। एकता कॉलोनी रोहतक से अगला मैसेज सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का। अस्तुपुरा जिला मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आप हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। गाँव गाला ज़िला अम्बाला हरियाणा से ये फरमाइश राजेंद्र कुमार, मलगीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन की। और गांव कुम्हार हिड़ा सहारनपुर से आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। मोहल्ला हलवायान शेरकोट ज़िला बिजनौर से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की। करोला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सिंधौली बरेली से ये फरमाइश है जिशान वारसी की। गाँव जाखौत राजस्थान से अगला मैसेज शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की। और अनारकली बाज़ार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये मैसेज है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान का। और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां का। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी। गाँव फरा से ज़िला हिसार से ये फरमाइश है राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी की। तो आइए सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत कुदरत फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है जिला झारखंड से सुपाईसा गांव से देवेंद्र ताती, राकेश ताती और प्रकाश ताती की। सनावत से ये फरमाइश है शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बौड़ाना की। उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से। हमसे जुड़े हैं कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े। वरिंगखेड़ा से ये फरमाइश है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की। मोहल्ला बरादरी महमूद खां रामपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। लक्सर रोड गांव सुवाहेडी कस्बा पुरकाजी से ये फरमाइश है शाहनवाज़, मोहम्मद शाहरुख, शोहेब कहकशां और इनका पूरा परिवार। रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से अगली फरमाइश संगीता, सरिता, सुमन, महाजन और किशो की। कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं उत्तम नगर दिल्ली से और ये मैसेज राजगांव कंब अमरावती महाराष्ट्र से। आप हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार। दतरंगी से अगला मैसेज है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम जीने की राह।

गांव नथाना पंजाब से अगली फरमाइश हम तक पहुंची है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता की। पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबीसगंज बिहार से ये फरमाइश। प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल, नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से आप हैं। ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी। जनकपुरी सहारनपुर से आप हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। पटियाला रोड गंज डंडवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फाजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन। और अगली फरमाइश मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब और पलक लुबना, और इनके साथ हैं यश मंसूरी। ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से आप हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया आदिशा सिद्दीकी और नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी और सुदेश चौहान। बीरशहर महाराष्ट्र से अगला मैसेज नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। कनेर मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार हमसे जुड़ा है, आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। और शेरकोट बिजनौर से आप हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल रानी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल। खालापार मुजफ्फरनगर से आप हैं साहिना, परवीन, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। छत्तीसगढ़ पलारी से ये फरमाइश प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी की। ऐशबाग लखनऊ से ये मैसेज हम तक पहुंचा है रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम और रूपा इलाहाबादी की। राजनगर कांति निकेतन से आप हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सिलसिला फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: सर फिरोजी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक